एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आज सोमवार है, सक्षमवत सन 1948 के आषाढ़ मास की पहली तिथि, तदनुसार 22 जून सन 2026 है। इस समय सुबह के 5:56 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

FM बैंड 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। कुछ क्षणों में सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल है।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे

0: अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वन कर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में है। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच सम्पन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। इस समय सुबह के 6:05 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदन पार।

लीजिए सुनिए आज का चिंतन। खुद को जानना ही इस जीवन का सबसे बड़ा अध्यात्म है और यही ज्ञान सारी चिंताओं का एकमात्र समाधान है।

आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं झरोखा के अंतर्गत आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस। इसका भाग 227 आज प्रसारित किया जाएगा। छह बजकर 45 पर संगीत सरिता, जिसके अंतर्गत आप सुन रहे हैं श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार वायलिन वादक

पंडित एस एल कंडारा, इसका भाग 5 आज प्रसारित होगा, जिसे आप पुनः शाम 6:45 पर सुन सकते हैं, प्रस्तुति मनीषा जैन की। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 पर और पुनः दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे त्रिवेणी। कार्यक्रम चित्रलोक सुबह 8:30 पर और रात्रि 8:15 पर। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेता अमरीश पुरी पर। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे सुबह 9:30 पर और पुनः रात 9:30 पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। पिटारा के अंतर्गत आज सुबह 10 बजे सुनिएगा उजाले उनकी यादों के, रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत का भाग 1 आज प्रसारित होगा, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। रंग तरंगे कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 11 बजे, 12:05 पर यादों की महफिल सजाई जाएगी और 1 बजे आप सुनेंगे सुरीला सफर। सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर। सखी सहेली दोपहर 3 बजे, 4 बजे आज शाम को पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा सेहतनामा, जिसमें डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का भाग 1 आज आप सुनेंगे, संपादन सहयोग रीमा जोशी का, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। छाया गीत ये आप सुनेंगे शाम 5 बजे, 5:30 पर, तराने नए पुराने कार्यक्रम। संध्या रंजन का समय होता है शाम 6:35 पर। शाम 7 बजे सुनिएगा फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। सात 7:45 पर आप सुनेंगे इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे फिल्म खिलौना के गीत। रात्रि 8 बजे हवा महल में सुनिएगा नाटिका वो आए घर में हमारे, लेखन राजकुमार डाक का है, निर्देशन सत्येंद्र शरद का। कार्यक्रम आपके लिए 9 बजे, रात्रि 10 बजे छाया गीत, आलेख एवं स्वर जयंत पात्रीकर का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात्रि 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण। तो श्रोताओं, ये थी रूपरेखा हमारे आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आप सुन रहे थे झरोखा। लीजिए प्रस्तुत है रामचरित मानस गान का भाग 227।

मुनि याज्ञवल्क ने महाराज जनक की पत्नी रानी सुनैना को ये भविष्यवाणी सुना दी थी कि श्री राम अपने वनवास की अवधि में देवताओं का कार्य करके अवधपुरी वापस लौटकर अचल राज्य करेंगे। अतः सुनैना ने महाराज दशरथ के रनिवास में महारानी कौशल्या तथा अन्य रानियों से मिलकर उन्हें हर प्रकार से धीरज बंधाया और फिर अपने डेरे वापस लौट आईं। कौशल्या से उन्होंने कहा, मुनि का वचन व्यर्थ नहीं हो सकता। माता सुनैना के साथ पुत्री सीता भी अपने प्रिय कुटुंबियों से मिलने डेरे आईं। उनका तापस वेश देखकर सभी शोकमग्न हो गए। पुत्री को राजा जनक ने छाती से लगा लिया। पिता के हृदय में प्रेम का सागर उमड़ रहा था, किंतु उनका विवेक मोह के सागर में डूबते डूबते बच गया। पुत्री को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष गर्व और संतोष हुआ। उनकी पुत्री ने अपने आचरण से दोनों कुल पवित्र कर दिए थे।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी।
1: संगीत सरिता के सुधी श्रोताओं का स्वागत है। पंडित जी, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से फिल्म संसार से जुड़ते जुड़ते आप अपने गुरुजी के मार्गदर्शन में और संगीतकार जयदेव जी के कहने पर शास्त्रीय संगीत की ओर फिर मुड़े
2: जी।
1: तो शास्त्रीय संगीत की बात हमें करनी है, तो जितने भी समकालीन कलाकार हैं
2: जी,
1: उनमें से कौन से मुख्य कलाकार है जिनका नाम आप लेना चाहेंगे और उनके बारे में बताना चाहेंगे कि जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को महत्वपूर्ण योगदान दिया है?
2: शास्त्रीय संगीत के एरिना में जब आते हैं हम लोग, तो मुझे ये देखने में आता है कि

0: जी,
1: तो शास्त्रीय संगीत की बात हमें करनी है, तो जितने भी समकालीन कलाकार हैं
0: जी,
1: उनमें से कौन से मुख्य कलाकार हैं जिनका नाम आप लेना चाहेंगे और उनके बारे में बताना चाहेंगे कि जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को महत्वपूर्ण योगदान दिया है?
0: शास्त्रीय संगीत के एरिना में जब आते हैं हम लोग, तो मुझे ये देखने में आता है कि नॉर्थ इंडिया में कम आर्टिस्ट हुए, और कम आर्टिस्टों में गिने चुने, जैसे जोग साहब का जिक्र कर चुके हैं, जगजन राव जोशी जी का कर चुके हैं, डी के दातार और एन राजम जी, और शिशिर कणादर चौधरी, ये भी लेडी आर्टिस्ट थी और अली अकबर खान साहब की बहुत अच्छी शागिर्द थी, इन्होंने भी अच्छा बजाया। तो समकालीन लोगों में एन राजम जी का वायलिन योगदान बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि उन्होंने हर जगह बजाया। अच्छा, टेक्निकली बात करें तो राजम जी के वायलिन में साउथ की टेक्निक है, क्योंकि साउथ में ये बाजा बहुत पहले पहुंचा हुआ था, और उनकी टेक्निक में पूरा साउथ इंडियन कर्नाटक म्यूजिक की जितनी खूबियाँ हैं वो आती हैं। और जब वो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी की शिष्या हुई, तो वो नॉर्थ इंडियन म्यूजिक उन्होंने सीखा, और बाद में और एक महापुरुष की शिष्या हुई वो, जिनका नाम था पंडित महादेव प्रसाद मिश्रा बनारस वाले, जो बहुत अच्छी ठुमरी दादरा गाते थे, उनके साथ मैंने भी बजाया महादेव मिश्रा साहब के पास। मैंने दो तीन लोगों की संगत की जिसमें महादेव प्रसाद मिश्रा जी, गजानन राव जोशी जी के साथ भी मैंने बजाया।
1: वाह,
0: इंदौर में एक रिकॉर्डिंग में उन्होंने मुझे जबरदस्ती बिठाया, और पंडित रामाश्रय झा जी के साथ। तो मेरा ये कहना है कि कम बैक टू बनारस, तो बनारस के संगीत को एन राजम जी ने बहुत अच्छे से ग्रहण किया, और ग्रहण करके ठुमरी दादरा भी उन्होंने बहुत अच्छा बजाया।
1: एन राजम जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत विभाग की प्रमुख थी, और उन दिनों आप भी इलाहाबाद में पहुंचे थे
0: जी।
1: तो कैसे थे वो दिन, वो रिकॉर्डिंग के लिए जब आकाशवाणी आया करती थी?
0: बड़ा मेमोरेबल टाइम था वो
1: जी। जी,
0: एन राजम जी, किशन महाराज, गुदई महाराज, महादेव प्रसाद मिश्रा जी,
1: जी
0: कई सारे, एम आर गौतम, मतलब बहुत सारे म्यूजिशियन थे जो इलाहाबाद से ब्रॉडकास्ट करते थे। अच्छा, राजम जी उन दिनों में, मुझे वायलिन तो उनका पसंद था, इसमें कोई शक की बात नहीं।
1: हाँ।
0: तो वो आती थी और मैं हर एक आर्टिस्ट के प्रोग्राम में मौजूद रहता था व्यक्तिगत रूप से। आजकल ये परंपरा खत्म हो गई, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव जो होता है वो कहीं होता है और आर्टिस्ट बेचारा कहीं रिकॉर्ड कर रहा है। तो एनीवे, ये समय की बात, समय परिवर्तनशील है। तो राजन जी की एक खूबी ये रही कि उन्होंने साउथ इंडियन टेक्निक को नॉर्थ इंडियन म्यूजिक बजाने में बड़ी दक्षता हासिल की, बहुत अच्छा बजाया। अब उनके घर में तो उनके भाई साहब टी एन कृष्णन साहब,
1: हाँ,
0: वो भी बहुत अच्छे वायलिनिस्ट, इनके पिताजी भी बहुत अच्छे वायलिनिस्ट, और अभी इनकी बेटियां और नातिन वगैरह सब वायलिनिस्ट
1: बजाती हैं।
0: मैं चाहता हूं कि आप इनकी कोई रिकॉर्डिंग बजाएं राजम जी की, और इनका वायलिन वादन श्रोताओं को सुनवाएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही मौका है पंडित जी। हम विदुषी एन राजम जी का बजाया राग यमन की झलक सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को।
0: अच्छी बात है।

0: सकता हूं। पंडित जी, लगे हाथों राग यमन की चर्चा कर लेते हैं, इसके आरोह आरोह के बारे में हमें बताइए।
1: देखिए, राग यमन पहला राग है जो स्टूडेंट्स भी सीखते हैं
0: जी,
1: और मास्टर्स भी बजाते हैं। जो बड़े लोग हैं उन्होंने भी राग यमन को बजाया और इसका कोई था नहीं पाई उन्होंने, और स्टूडेंट्स को भी हम लोग शुरुआत
0: राग जो राग सिखाया
1: जाए राग से सिखाते हैं
0: जी।
1: तो इसमें वादी संवाद मतलब शुद्ध स्वर के अलावा एक तीव्र मध्यम लगता है, सारे गा मा तीव्र लगता है, और पाधा निसा ये सब शुद्ध स्वर हैं, और वादी संवादी इसके जो हैं गंधार और निषाद हैं, ये दो सुर इसके वादी और संवादी हैं। अब मैं आपको मतलब थोड़ा सा बजा के इसके आरोह अवरोह या इसका एक स्वरूप कोशिश करता हूँ, ठीक है।

0: हम लोग केवल आरोह अवरोह से राग का बहुत स्केलेटन मालूम पड़ता है
1: जी।
0: स्केलेटन में और एक शक्ल में पूरे व्यक्ति में बहुत फर्क होता है। आप और मैं बैठे हैं, हड्डियों का ढांचा अंदर है हमारे, लेकिन हम हड्डियों के ढांचे से नहीं पहचाने जाते हैं
1: जी।
0: हम अपनी अपनी शक्ल से पहचाने जाते हैं। तो राग एमन की शक्ल है।

0: ये इस राग की शक्ल बनती है।
1: वाह।
0: तो मुझे लगता है कि श्रोताओं को ज्यादा आप इंतजार मत कराइए।
1: जी जी। और इस शक्ल को और थोड़ा साफ दिखाई दे इसके लिए।
0: देखिए थोड़ा सा बजा के बताता हूँ।
1: जी।

0: फिल्म का गीत याद आ रहा है।
1: कौन सा?
0: ले गए जी मोरा सावरिया।
1: अरे बहुत अच्छा गीत है
0: जी, लता जी की आवाज है
1: बिल्कुल।
0: और ये राजा मेहदी अली खां का लिखा गाना है, संगीतकार इसके हैं मदन मोहन साहब।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आइए सुनते हैं।

0: राग यमन पर आधारित अनपढ़ फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया श्रोताओं, लता जी की आवाज में, संगीतकार मदन मोहन।
1: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की पांचवीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने।
0: विविध भारती के संग्रह
2: FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। इस समय सुबह के 7 बजे हैं। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम नमस्कार अलवर। तो हेलो जी, नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने प्रिय कार्यक्रम नमस्कार अलवर में। और देखिए, हमेशा की तरह मैं आप सभी का अपना दोस्त सावन कुमार लेकर हाजिर हूँ आज कार्यक्रम नमस्कार अलवर का ये एक नया अंक। तो साथियों, आज नया दिन, नया अंक, और बात करने वाले हैं फिर से किसी एक नए विषय के ऊपर। तो आज किस विषय पर बात करने वाले हैं ये अब खुलासा कर देते हैं। साथियों, देखिए, हमारे देश में स्वच्छता हमेशा से ही एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे वो हमारी समाज की स्वच्छता हो, चाहे वो हमारे आसपास की स्वच्छता हो। हमारे देश में अमूमन एक प्रवृत्ति देखी जाती है कि हम आंतरिक सुरक्षा को तो बहुत महत्व देते हैं। आंतरिक सुरक्षा से मतलब है अपने शरीर की स्वच्छता, अपने घर की स्वच्छता। लेकिन जब भी बात आती है कि हम अपने सामाजिक स्वच्छता के बारे में बात करते हैं, तो सामाजिक स्वच्छता हो, हमारी सार्वजनिक स्वच्छता हो, वहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा भयावह होती हैं। तो इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बात की जानी चाहिए। हम सभी को इस विषय के ऊपर सोचना चाहिए, और सोचना चाहिए कि क्यों ऐसा है और क्या क्या इस चीज़ के कारण हैं, और इन कारणों को किस प्रकार से हम निदान कर सकते हैं। तो चलिए इसी बारे में बात करते हैं। साथियों, स्वच्छता ही परम धर्म है, ये वाक्य केवल एक नारा नहीं है बल्कि मानव सभ्यता के विकास, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का मूल मंत्र है। सनातन काल से ही भारतीय संस्कृति में शुचिता और स्वच्छता को ईश्वर की भक्ति के समान ही दर्जा दिया गया है। हमारे शास्त्रों में अगर हम आपको बताएं तो कोट

एक दो लाइनें आती हैं, न जातु निर्मलः कश्चित् शुद्धो भवति मानवः अन्तः शुद्धस्तथा बाह्य स्वच्छता परमं तपः। यानी कि केवल आंतरिक विचारों की शुद्धि ही काफ़ी नहीं है, बल्कि बाह्य शरीर और पर्यावरण की स्वच्छता भी एक महान तपस्या है। वैसे भी महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण स्वच्छता है। जी हाँ, जब तक स्वच्छता को अपने जीवन का परम धर्म यानी कि सर्वोच्च कर्तव्य हम नहीं मान लेते हैं, तब तक केवल कचरा साफ करने तक ये सीमित रहता है। ये हमारे आचार विचार, व्यवहार और पूरे अस्तित्व का हिस्सा नहीं बन पाता है। अब स्वच्छता के विभिन्न आयाम कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए इसके कई सारे रूपों में बांट सकते हैं, क्योंकि स्वच्छता एक व्यापक अवधारणा है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इसे हम तीन चार कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं। उनके बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो व्यक्तिगत स्वच्छता सबसे नंबर वन पर आती है। ये स्वच्छता की पहली सीढ़ी होती है। इसके अंतर्गत दैनिक रूप से स्नान करना, दांतों की सफाई, स्वच्छ कपड़ों को पहनना, नाखूनों को काटना, भोजन करने से पहले और बाद में हाथों को अच्छी तरह से धोना, ये सारी चीज़ें शामिल होती है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता हमें संक्रामक रोगों, बैक्टीरिया और वायरस से भी बचाती है। वहीं घरेलू स्वच्छता के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारा घर एक मंदिर के समान है। घर की नियमित साफ सफाई, रसोई को कीटाणु रहित रखना, पीने के पानी को ढक करके रखना और घर से निकलने वाले कूड़े कचरे का सही निस्तारण करना घरेलू स्वच्छता के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती है। घर में सीलन, धूल, गंदगी होने से मच्छरों और मक्खियों का प्रकोप बढ़ता जाता है, जो मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड जैसी बीमारियों का कारण बनता है। अब साथियों, अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने घर को तो साफ कर लेते हैं, लेकिन कचरा जो है वो सड़क पर या पड़ोस में फेंक देते हैं। सच्चा धर्म तभी प्रकट होता है जब हम सार्वजनिक स्थानों जैसे कि सड़कों, पार्कों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और धार्मिक स्थलों को भी उतना ही साफ रखें जितना कि हम अपने घर को रखना चाहते हैं और रखते हैं। सार्वजनिक स्वच्छता सामूहिक जिम्मेदारी है। और हाँ, इसका जो चौथा नंबर का पॉइंट है वो आ जाता है, देखिए, हमारे जल स्रोत, वायुमंडल और वनों की रक्षा करना इसके अंदर शामिल होता है। प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, पेड़ लगाएं, कचरे का पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग करना और पर्यावरण स्वच्छता के ये कुछ ऐसे मुख्य हिस्से हैं कि यदि हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा तो हम कभी भी पूरी तरीके से स्वच्छ नहीं रह सकते हैं, स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को हम लोगों को अपनाना चाहिए। स्वच्छता केवल बाहरी आवरण तक ही सीमित नहीं है। विचारों की शुद्धता, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और नकारात्मकता का त्याग ही मानसिक स्वच्छता है। जब तक हमारा मन स्वच्छ नहीं होगा, हमारी तब तक बाहरी स्वच्छता के प्रति चेतना जागृत नहीं हो सकती है। अब हमारे मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि स्वच्छता ही परम धर्म क्यों होना चाहिए। तो देखिए, धर्म शब्द जो है वो संस्कृत की एक ध्रुव धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करने के योग्य, यानी कि जो समाज और व्यक्ति के कल्याण के लिए उचित हो। स्वच्छता को परमो धर्म मानने के पीछे अगर हम सामाजिक और वैज्ञानिक और इसके साथ ही आध्यात्मिक कारणों को देखें तो हम पाते हैं कि गंदगी जो है वो बीमारियों की जननी है। डायरिया, हैजा, पीलिया, डेंगू और हाल ही में पूरी दुनिया को हिला देने वाली बीमारी यानी कि COVID-19 जैसी जो महामारी है, ये गंदगी और असावधानियों के कारण ही फैलती हैं। स्वच्छता को अपनाकर हम बिना किसी खर्च के आधी से ज्यादा बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अगर देखा जाए तो स्वच्छता ही सबसे बड़ा धर्म है। एक बीमार परिवार या राष्ट्र कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। जब लोग बीमार पड़ते हैं तो उनकी गाड़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दवाओं और अस्पतालों में खर्च हो जाता है। कार्यक्षमता घटने से उत्पादकता जो होती है वो भी कम होती है। इसके विपरीत स्वच्छ वातावरण पर्यटन को बढ़ावा देता है, जिससे रोजगार और विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। एक बिखरे और गंदे कमरे में बैठकर काम करने और साफ सुथरे सुगंधित वातावरण में काम करने के अनुभव में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है, जिसे आप अनुभव से समझ सकते हैं। स्वच्छता हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाती है, जिससे तनाव कम होता है, रचनात्मकता को जो स्तर है वो बढ़ जाता है। संसार के सभी धर्मों में पूजा पाठ हो या प्रार्थना से पहले शरीर और स्थान की शुद्धि को हमेशा से ही अनिवार्य माना जाता रहा है। हिंदू धर्म में स्नान और शुद्धि के बिना सभी प्रकार के देव कार्यों को वर्जित माना जाता है। स्वच्छता ईश्वर की भक्ति के बाद में दूसरी सबसे पवित्र चीज है, ऐसा हमें मानना चाहिए।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: तो साथियों, हम लोग बात कर रहे थे स्वच्छता परम धर्म के विषय में, स्वच्छता को किस प्रकार से अपनाया जाए, स्वच्छता क्यों आवश्यक है। अब देखिए, ऐतिहासिक संदर्भ में देखते हैं, भारतीय दर्शन में देखते हैं, तब भी हमें स्वच्छता के बारे में बातें मिलती है। स्वच्छता कितना बड़ा टॉपिक है, कितना महत्वपूर्ण है, इस चीज़ के बारे में जब इतनी पुराने समय से चली आ रही है, तो हम में ऐसी क्या कमी है कि हम इसके बारे में ना बात करना चाहते हैं, ना इस चीज़ से कभी अपने आप को रिलेट करना चाहते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो तकरीबन 5000 वर्ष पूर्व की ये सभ्यता है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की जो संस्कृति है उसमें उन्नत जल निकासी, ढकी हुई नालियाँ और सामूहिक स्नानागार पाए गए, जो ये दर्शाते हैं कि हमारे पूर्वज स्वच्छता के प्रति बहुत अधिक सजग थे। वहीं वेदांत और आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता जैसे जो प्राचीन ग्रंथ है, इनके अंदर व्यक्तिगत स्वच्छता, ऋतुचर्या यानी कि मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या को ढालना और शुद्ध आहार पर विशेष जो बल है वो दिया गया है, इनके बारे में विशेष बातें बताई गई है। इनसे संबंधित बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हम लोगों को बताई गई है ताकि हम लोग स्वस्थ रह सकें। और गांधी जी के बारे में जब हम बात करते हैं तो देखिए, साबरमती आश्रम में सबसे पहले वो खुद ही शौचालय को साफ किया करते थे ताकि श्रम की गरिमा स्थापित हो सके और छुआछूत का अंत हो सके। उनका मानना था कि अस्वच्छता गुलामी की मानसिकता का प्रतीक होती है। वहीं साथियों, अब हम बात कर लेते हैं आधुनिक भारत में स्वच्छता आंदोलन, स्वच्छ भारत अभियान के विषय में। आज़ादी के दशकों बाद भी स्वच्छता भारत की एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई थी और ये बात तो हमेशा से रही और कहीं ना कहीं आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को, इस समस्या को आज भी बनाए हुए हैं। भारत सरकार के द्वारा लेकिन जो शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान है, ये देश के इतिहास में सबसे बड़ा जन आंदोलन सिद्ध हुआ इस समस्या से निपटने के लिए। अभियान के प्रमुख उद्देश्य और

उपलब्धियों के बारे में जब हम जानते हैं तो देखिए, देश के करोड़ों ग्रामीण और शहरी घरों में शौचालयों का निर्माण करके महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान दिया गया। इस अभियान के द्वारा गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करने की संस्कृति जो है उसे विकसित किया गया, यानी कि ठोस कचरा प्रबंधन जो है उस चीज़ के बारे में हमें जागरूक किया गया, उस चीज़ के बारे में बात की गई और आज हम इन चीज़ों को कर रहे हैं। और इसके अलावा इस अभियान ने स्वच्छता को सरकारी फाइलों से निकालकर आम आदमी की, आम जनता की आदत बना दिया। आज आप सभी लोग जानते हैं कि इंदौर जैसे शहर जो हैं लगातार देश के सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभर रहे हैं, जो नागरिक जागरूकता का अप्रतिम उदाहरण है। अब कचरा प्रबंधन और 3R के सिद्धांत के बारे में आपको बताते हैं। बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के कारण कचरा प्रबंधन आज की सबसे बड़ी चुनौती है। इसके समाधान के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में 3R के सिद्धांत को अनिवार्य रूप से लागू करना होगा, यानी कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, कम करना, पुनः उपयोग करना और पुनः चक्रण करना। स्वच्छता के मार्ग में जब चुनौतियों को देखते हैं साथियों, तो हमारे सामने बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ होती हैं जो आज भी इस अभियान को कहीं ना कहीं रोके रखने का काम करती हैं। इस अभियान के रास्ते में बहुत सारे कंकड़ बिछाने का काम करती है और हम अपने स्वच्छता के पूरे लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अनेक प्रयासों के बाद भी समाज में पूर्णतः स्वच्छता जो है वो प्राप्त नहीं हो पाती है। इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ आती है वो है मानसिकता और उदासीनता, यानी कि मेरा क्या जाता है या सरकार का काम है साफ सफाई करना। ये संकीर्ण सोच जो है वो सबसे बड़ी बाधा बनती है इस स्वच्छता के, हमारे गोल को पाने के लिए। इसके अलावा प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग जो है वो आप सभी जानते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक नालियों को जाम कर रहा है, पशुओं को मार रहा है, मिट्टी को बंजर बना रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसका जो इस्तेमाल है कर रहे हैं, तो ये अपने आप में जो हमारे स्वच्छता के गोल है उसको प्राप्त करने में एक बहुत बड़ा हर्डल है। अब छोटे नगर निकायों के पास में आधुनिक कचरा जो निस्तारण का प्लांट होता है और डंपिंग यार्ड्स होते हैं उनकी कमी है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। ग्रामीण और झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में आज भी अस्वच्छता और स्वास्थ्य के अंतर संबंध को लेकर शिक्षा की कमी है। वहीं साथियों, जब हम ये सोचते हैं कि अब हमने स्वच्छता के बारे में बात कर ली, स्वच्छता के बारे में सीख लिया, स्वच्छता क्या है, किस तरीके से क्या चीज़ें इसमें हम लोग कर सकते हैं, तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन कहीं ना कहीं उठ जाते हैं कि स्वच्छता को जीवन में किस प्रकार से उतारा जा सकता है। तो अगर हम अपने जीवन के अंदर स्वच्छता को उतारना चाहते हैं तो देखिए, परम धर्म बनाने के लिए इस चीज़ को अपने स्तर पर छोटे छोटे लेकिन प्रभावी कदम तो आप लोगों को उठाने होंगे, हम सभी को उठाने होंगे। इसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होता है कि कचरे को सही स्थान पर डालें, सड़क पर चलते हुए रैपर्स, बोतलें फेंकने की आदत को पूरी तरह से बंद कर दें। इसके अलावा बाजार जाते समय हमेशा अपने साथ कपड़े का या जूट का जो थैला है उसको कैरी करके रखें और प्लास्टिक को अधिक से अधिक ना बोलने की कोशिश करें। पानी को व्यर्थ नहीं बहने दें, क्योंकि जल का संचय भी पर्यावरण की स्वच्छता और सुरक्षा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आने वाली पीढ़ी को बचपन से ही स्वच्छता के महत्व और आदतों से परिचित कराएं, ताकि वो इस चीज से कभी भी अपने आप को अछूत ना पाएं, बल्कि इस चीज़ से अपने आप को रिलेट कर सकें और समाज की प्रगति जो है उसके अंदर एक योगदान दे सकें। तो आइए इससे संबंधित और भी बातें करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं ये गीत।

तो साथियों देखिए, बात हम लोग कर रहे थे स्वच्छता के विषय में, और जब भी स्वच्छता की बात होती है तो हम सभी लोगों की जो भागीदारी है उसका उल्लेख किया जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ सरकार पर नहीं छोड़ी जा सकती है, सिर्फ अन्य किसी व्यक्ति पर नहीं छोड़ी जा सकती है, किसी विभाग पर छोड़ी नहीं जा सकती है। इसके अंदर हर व्यक्ति को अपना अपना योगदान देना होगा, भागीदारी निभानी होगी, तब जाकर के हम बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। जब आप बड़े लक्ष्यों को बनाते हैं तो सभी के सम्मिलित प्रयास ही जो हैं वो कहीं ना कहीं कुछ चेंज ला पाते हैं। वरना एक आपने सुनी ही होगी कहावत कि अकेला चना तो भाड़ नहीं फोड़ सकता भैया, तो हम सभी लोगों को प्रयास, साझा प्रयास करने की आवश्यकता है। देखिए स्वच्छता क्योंकि केवल एक दिन का उत्सव या फिर औपचारिकता भर नहीं है, ये निरंतर चलने वाली एक जीवन शैली है। जब तक देश का प्रत्येक नागरिक स्वच्छता को अपना व्यक्तिगत और नैतिक उत्तरदायित्व नहीं समझेगा, तब तक एक आदर्श समाज की जो कल्पना है वो अधूरी ही है। स्वच्छता ही वो माध्यम है जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ, मन को शांत, समाज को सुसंस्कृत और राष्ट्र को समृद्ध बना सकते हैं। हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना होगा कि हम ना तो गंदगी फैलाएंगे ना किसी को फैलाने देंगे, क्योंकि जब स्वच्छता हमारा परम धर्म बनेगी तभी हमारा भारत जो है वो वैश्विक पटल पर एक आदर्श और गौरवशाली राष्ट्र के रूप में पूर्ण रूप से स्थापित हो पाएगा। अब देखिए श्रोताओं, ये तो सब बातें हुई और लास्टली अब बस यही है कि आप सभी लोग इस चीज़ में अपना योगदान दीजिए। और देखिए बातें करते करते समय का पता ही नहीं चलता है, बातें आपसे सभी से करने का बहुत ज़्यादा मन है कि लगातार करते रहें बातें और अपने विचारों का आदान प्रदान करें, लेकिन अब देखिए घड़ी कितनी तेज़ी के साथ समय बता रही है और इस चीज़ की चेतावनी दे रही है कि अब समय हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। तो जा रहे हैं एक बार फिर से इसी वादे के साथ में कि फिर से किसी और दिन किसी और नए टॉपिक के साथ किसी और विषय पर बात करेंगे, आप सभी के साथ में अपने विचारों को साझा करेंगे और कुछ चीज़ें जो है उनको आपस में बांटेंगे। और तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपने जीवन को बहुत अच्छे से जीते रहिए। और बस इसके बाद यही कहना है कि स्वच्छता को अपने जीवन में ज़रूर ज़रूर अपनाइए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, अलवर। अभी आपने सुना कार्यक्रम नमस्कार अलवर, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। इस समय सुबह के 7:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

0: महालक्ष्मी अय्यर, उदित नारायण और साथियों की आवाज़ में ये गीत आपने सुना फिल्म टशन से। शब्द रचना रही कौसर मुनीर की और संगीत दिया विशाल शेखर ने।
1: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे
2: जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
1: तो लेन देन
2: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
1: ओ,
2: जैसे UPI से।
1: अच्छा,
2: हाँ। और सुनो, एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
2: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।

0: में लखपति दीदी बनी है। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: खट्टा मीठा फिल्म से ये गीत आपने सुना, के सुनिधि चौहान और साथियों की आवाज में, शब्द रचना रही इरशाद कामिल की और संगीत से सवारने का काम किया प्रीतम ने।
1: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश

0: प्रीतम का संगीतबद्ध किया अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा और अरिजीत सिंह अंतरा मित्रा और साथियों का गाया हुआ ये गीत आपने सुना फिल्म दिलवाले से।
1: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा और विशाल शेखर का संगीत से सजाया ये गीत तो आपने सुना फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से। आवाजें रही चिन्मय श्रीपदा और गोपी सुंदर और साथियों की। अलीजिए फिल्म संगीत का ये अगला और आखिरी नगमा आपको सुनवा रहे हैं शफकत अमानत अली खान और शंकर महादेवन और कार्लिसा और साथियों की आवाज में। फिल्म का नाम है कभी अलविदा ना कहना। शब्द रचना है जावेद अख्तर की। संगीत से सवारने का काम किया है शंकर एहसान और लॉय ने।

अभी आपने सुना फिल्म संगीत एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरस्वती चैनल है। कुछ क्षणों में सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार प्रभात। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रह को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का

0: सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि आईएनएस विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: आईएनएस विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
1: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता होगे ना उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कूनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कूनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कूनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा

0: की परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
1: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला, वही स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। दी ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत वंदे मातरम के 150 वर्ष भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ मिफ 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
2: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
3: हम लिख के गया ऐसे करते करते लेखक का दर्जा मिल गया।
4: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
5: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
6: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल,

0: के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2 लाख कम अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है। इस समय सुबह के 8:15 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनवाते हैं आपको सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आप सुन रहे हैं जगजीत सिंह की गाई हुई गजलें।

0: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

अभी आपने सुना सुगम संगीत एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। इस समय सुबह के 8:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओं, प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है वन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तामुरिया, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता।

ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है, जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? इसका उत्तर है, लोकटक झील में द्वीप मिट्टी, घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं, जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? तो श्रोताओं, इसका उत्तर है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन, साइबेरिया, रूस और मंगोलिया से आते हैं। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न, जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? तो इसका उत्तर है, डल का अर्थ होता है जलाशय या झील। तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताजा जानकारी के लिए CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा की स्वरमालिका, आरोह, अवरोह, थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं, संगीत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम सामान्य श्रोता वर्ग के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग सिंदूरा।

राग सिंदूरा। राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसे राग सैंधवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है, संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

अब प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका, जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, कल कल नदिया बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। श्रोताओ, ये कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सीमित कर देती है और इसी कारण हम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है। सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
1: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई

0: लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
1: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई, वो उसे अपने घर ले गया।
0: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
1: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
0: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही, लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
1: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
0: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
1: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
0: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं, तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं, तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं।

0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीमित मत रहिए, और अब इसी के साथ अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग,
4: उमंग। अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM बैंड 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है। कुछ क्षणों में सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे, माफ कीजिएगा, कुछ क्षणों में सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में सिजेरियन के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी, विशेषज्ञों की टीम अलर्ट मोड पर। राज्य स्तरीय सीएसआर कॉन्क्लेव का आयोजन आज से सवाई माधोपुर में किया जा रहा है। और राज्य में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज से 7 जिलों में 3 दिनों तक आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ, और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी से जुड़े सुरक्षित उपायों के मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल उदयपुर की महत्वाकांक्षी देवास 3 और 4 पेयजल परियोजनाओं का हवाई निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन बांधों के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के सभी काम उच्च गुणवत्ता और पूर्ण सुरक्षा मानकों के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से उदयपुर शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों की वर्तमान तथा भविष्य की पेयजल आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी। इस मौके पर वरिष्ठ प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बांध, टनल निर्माण और पुनर्वास से जुड़े कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। राज्य सरकार प्रदेश में डेयरी सेक्टर को मजबूत करने और युवाओं को रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। पशुपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कल पाली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि राजस्थान का डेयरी क्षेत्र बेहद मजबूत है।

0: और इस पर गुजरात डेयरी या अन्य किसी बाहरी का हस्तक्षेप का कोई असर नहीं पड़ेगा।
1: हमारा डेयरी सेक्टर इतना मजबूत है कि यहाँ पर उन नियमों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा गांव-गांव तक, हर किसान तक हमारा डेयरी सेक्टर फैला हुआ है। हम किसानों को फैट के आधार पर, दूध पालकों को फैट के आधार पर तो पैसा देते हैं, लेकिन 5 रुपए सरकार की तरफ से पर लीटर उनको अनुदान भी देते हैं। इसलिए जो लोग, जो किसान, जो पशुपालक हमारी डेयरी से जुड़े हुए, निश्चित रूप से वो हमारी डेयरी से जुड़े रहेंगे। उनके नियमों से हमारे यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं।
0: रोजगार के मोर्चे पर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए श्री कुमावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में 4.25 लाख सरकारी नौकरियां देने के बजट घोषणा पर तेजी से अमल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने अलवर जिले को विकास की 2 बड़ी सौगातें दी है। उन्होंने 42.80 करोड़ रुपए की लागत से कल नटनी का 12 से जैसमन बांध नहर को पक्की करने के काम का शिलान्यास किया। साथ ही 3.34 करोड़ रुपए से निर्मित भाखेड़ा एनिकेट का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन दोनों परियोजनाओं से क्षेत्र का भूजल स्तर रिचार्ज होगा, जिससे वन्य जीवों, किसानों और आमजन की पानी की जरूरतें पूरी होंगी। जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में डिलीवरी के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। इनमें से 2 महिलाओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। इन सभी महिलाओं की शनिवार को सिजेरियन डिलीवरी कराई गई थी। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि ऑपरेशन के बाद प्रसूताओं को स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं होने लगी, जिसके बाद उनका उपचार शुरू किया गया।
2: पावटा अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर कुलबीर चोपड़ा ने बताया कि शनिवार को अस्पताल में 8 सिजेरियन ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन के बाद भी सभी का ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव होने लगा। इनमें से 2 महिलाओं की स्थिति अत्यंत गंभीर होने पर उन्हें तत्काल मथुरादास माथुर अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उन्हें आईसीयू में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। दोनों मरीजों की किडनी भी प्रभावित हुई है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो सकेगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। सवाईमाधोपुर में आज से राज्य स्तरीय कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान वन विभाग की ओर से हो रहे 2 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य CSR के माध्यम से वन और वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन तथा स्थानीय समुदायों के सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री होंगे। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता।
3: राजस्थान वन विभाग द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के माध्यम से वन और वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन तथा स्थानीय समुदायों के सतत विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आज से राज्य स्तरीय CSR कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्क्लेव में विभिन्न कॉरपोरेट संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों, उद्योग समूहों, गैर सरकारी संगठनों, वन अधिकारियों, संरक्षण विशेषज्ञों तथा नीति निर्माताओं की सहभागिता रहेगी। कार्यक्रम का उद्देश्य वन विभाग और कॉरपोरेट क्षेत्र के मध्य प्रभावी साझेदारी स्थापित कर वन और वन्य जीवों का संरक्षण प्रभावी बनाना है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में राजस्थान की पहली सफेद बाघ सफारी शुरू हो गई है। यहां सफेद बाघ भीम और सुनहरी बाघिन सस्कंधी को टाइगर सफारी क्षेत्र में छोड़ दिया गया है। रविवार को पर्यटकों ने सफारी के दौरान इन दोनों बाघों को नजदीक से देखा। इससे पहले ये बाघ केवल जैविक उद्यान क्षेत्र में रखे गए थे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा शुरू करेगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में इस महीने की 30 तारीख तक प्रतिदिन 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो JRF सहायक प्रोफेसर पदों तथा PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। NTA ने अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड करने और परीक्षा से

0: संबंधित सभी विवरणों का सावधानी पूर्वक सत्यापन करने की सलाह दी है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कल कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेशों के 14 केंद्रों पर कुल 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इधर प्रदेश के विभिन्न जिलों में नीट परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इसी कड़ी में राजधानी जयपुर में भी रविवार को नीट यूजी की पुनः परीक्षा कड़े सुरक्षा प्रबंधों और प्रशासनिक निगरानी के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। राज्य में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली है। प्रदेश में सक्रिय हुए एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में कल सर्वाधिक अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस तापमान फलोदी में दर्ज किया गया। आज 7 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। जोधपुर और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में 25 जून तक आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। इस बीच विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि खुले में रखी तैयार फसलों और अनाज को सुरक्षित स्थानों पर ढक कर रखें ताकि उन्हें भीगने से बचाया जा सके। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में सिजेरियन के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी, विशेषज्ञों की टीम अलर्ट मोड पर। राज्य स्तरीय सीएसआर कॉन्क्लेव का आयोजन आज से सवाईमाधोपुर में किया जा रहा है। और राज्य में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज से 7 जिलों में 3 दिनों तक आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का सर्स का चैनल है। इस समय सुबह के 9:10 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले विशेष कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत डॉक्टर बुधरी ताती से बातचीत।

0: रोज पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं सामाजिक सेवा कार्यों में विशिष्ट योगदान के लिए छत्तीसगढ़ से पद्मश्री के लिए चुनी गई बुधरी ताती के साथ खास बातचीत। नरेश मिश्रा के सहयोग से इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
2: बुधरी ताती जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बधाई, सरकार ने आपको पद्मश्री सम्मान के लिए चुना है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा महसूस हो रहा है आपको, कैसा लग रहा है?
3: हम जैसे जंगल में गांव में रहने वालों को चयनित करना बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमें खुश है। हमारे जो समाज के लोग भी संकुचित रहते थे, बिना उनको कोई पूछताछ नहीं, ऐसे व्यक्ति को प्रतिष्ठा जो मिल रहा है, उसके लिए मैं सभी के लिए बहुत खुश हूँ।
2: आपका बचपन कैसा था और समाज सेवा की भावना आप में कब जागी, इसके बारे में हमें बताएं।
3: गांव ईरानार में ही मेरा जन्म है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे तातीपारा में है। और बालकाल में हमने माँ के साथ रहते रहे, हम किसान के परिवार की हूँ और गरीब घर की हूँ, तो उस समय लगभग 8-9 साल के थे, तब से माँ बाप के साथ में माँ के साथ काम करते थे। फिर 8-9 साल के और छोटे थे तभी एक ही दिव्य जीवन संघ घूमर गुंडा, वहाँ पर पैदल पैदल जाते थे, वहाँ काम करते थे सेवा भाव पे। ऐसा ही कई दिनों से बीता है। फिर माँ भी हमको एकदम, हम लोग दो भाई दो बहन, ऐसे 4 भाई बहन थे, बड़े भाई तो नहीं है अभी, हम लोग अभी 2 बहन 1 भाई है। और बचपना में मेरा ऐसा ही आम लोग जैसा है ऐसा ही जीवन बीता है। फिर 15 साल का आयु था, मेरे मन में ऐसी पता नहीं कैसा आया, और हमारे जो गुरुदेव का आशीर्वाद है कि ये सब बचपना में जैसा गुजरे और आज यहाँ तक की पहुँच गए।
2: आप पिछले करीब 40 वर्षों से आदिवासी

0: सड़कों में और वन क्षेत्रों में नशा मुक्ति तथा सामाजिक जागरूकता के लिए काम कर रही है। ये सब आपने कब, कैसे और क्यों शुरू किया?
1: ये 1984 में मैंने नागपुर चले गई और महिलाओं के बीच में काम देखी, व्यवहारिकता 2-3 महीना सीखने के बाद, देखने के बाद मैं वापस आई और हमें भी मन में आया कि मेरे दक्षिण बस्तर हो, बस्तर हो, जहाँ भी हो, हजारों बहने अनविज्ञता, कभी शिक्षा नहीं पाए, स्कूल को पता नहीं है, ऐसी बहनों के बीच में जाके काम करना चाहिए। उसी समय से मेरा 84 से मन में आया है और मैं इस क्षेत्र में 1986 में ही काम शुरू की और विशेष करके अबुझमाड़ को पहले चुई हूँ, मैं वहाँ गई हूँ और वहाँ देखने के बाद ऐसा लगा कि इस क्षेत्र में काम करना है तो एक आदमी से नहीं होगा, यहाँ के लोकल लोगों को साथ लेना पड़ेगा, इनके साथ में काम होगा। 1986 से ही निरंतर साल भर का पूरे 500 गांवों को संपर्क में ली हूँ, एक लक्ष्य रखी हूँ, सबसे पहले मैं 500 गांवों को संपर्क करूंगी और इसी समाज से जो बहनें मिलेंगे तो उनके साथ में मुझे काम करना होगा, उनको प्रशिक्षित देना है और कार्य काम कैसा करना है, मैं उन्हीं से स्टार्ट की हूँ। 15-20 साल से 30-35 साल की बहनों को हमने यहाँ पर वापस उनको लाते थे, लाने के बाद उनको साक्षरता सिखाए, उनको एकदम बच्चे जैसा पकड़ पकड़ के उनकी बड़ी बहनों को सिखाना, मन तो तकलीफ तो है, जैसा गिल्ली मिट्टी को आकर देना सरल होता है पर वैसे बड़े लोगों को कठिन परिस्थिति में भी सीखे हैं, तो मैं उनको साक्षरता सिखाने के बाद ही ये सब कार्य शुरू किए हैं और उनके कारण से सब बहुत अच्छा सफल भी मिला है और कार्य करने में गति हो गया कि क्योंकि एक साल हमने पूरे गांव को देखे हैं, परिस्थिति देखे हैं कि इनको कैसा किस टाइप के काम करना है, क्योंकि हम लोगों को देखने से हमारे समाज के लोग हैं जंगल इलाका में रहने वाले, हम लोगों को देखने के बाद ही दोबारा हमारे सामने आना पसंद नहीं करते थे। ये सारे कठिनाई देखने के बाद जो है हम लोगों के मन में ऐसा एक तो काम हुआ कि इनके बीच में हमको बड़े ठोस रूप से काम करना चाहिए। करीबन 150 तक कैसी बहने, पूर्ण टाइम काम करने वाले बहने भी साथ दिए और साथ मिले कि हम काम को पहलाए ऐसा है।
0: आपने बस्तर संभाग के 500 से अधिक गांवों में पैदल यात्रा करते हुए लोगों को जागरूक बनाया, अपनी इस यात्रा के अनुभव के बारे में हमें बताएं।
1: इसमें तो उनको जागरूकता लाना है तो हमने पैदल इसलिए घूमे हैं कि जब तक हम उनके पास नहीं जाएंगे, हम उनके समस्या से लेकर उनका शिक्षा से लेकर जो भी करना चाहते हैं जब तक उनके पास नहीं जाएंगे, हमको समझ में नहीं आता है, हम उनके पास जाना है, उनके पास उठना बैठना, उन लोग जैसा रहते हैं उनके साथ रहना, जो खाते हैं उनके साथ खाना, और जैसे कभी ठंड में है तो बिना कपड़ा के सोते रहे, अभी तो विकास हुआ, उस समय उनको पहनने के लिए एक साड़ी होता था, ओढ़ने के लिए कोई कपड़ा नहीं होता था, किसी के पास एक कंबल होना मैंने बहुत बड़ी बात समझते थे। उनके साथ घूमते हुए ये सब परिस्थिति देखने के बाद बहुत कठिनाई भी आया है, तकलीफ हुआ है, तब हमको समझ में आया कि इनके बीच में काम करना है तो क्या क्या चीज हो सकता पड़ेगा, सब यात्रा में देखने को मिला है। उनके साथ काम नहीं करती तो उनके बीच में नहीं जाती तो शायद काम करने का मुझे भी इतना अनुभव नहीं होता कि हम क्या करेंगे कैसा करेंगे, उनके पास टारगेट जाने के कारण, इतना घूमने के कारण, ये सभी उस समय रास्ता नहीं होता था, कभी साइकिल जाने के लिए रास्ता भी नहीं मिलता था, जैसे गाय बैल जाता है ऐसी रास्ता से हम लोग पूरे समय में उनके पास पहुंचे गए।
0: आपने अनेक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है तो ये विचार आपके मन में कब और कैसे आया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप उन्हें किस तरह से प्रशिक्षण देती थीं या अभी भी किस तरह से उन्हें प्रशिक्षण देती हैं?
1: इस समय तो ये महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए इसलिए मन में आया कि हमारे एक तो ऐसा गरीब स्थिति रहा तो उस समय सबसे पहले तो मेरे मन में आया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है, शिक्षा के साथ साथ व्यवहार भी देना है, संस्कार भी देना है, जागरूकता लाना है, तो ये मन में आया कि हम लोग उनको साक्षरता भी बनाए। साक्षरता लगभग 400-500 बहने उसमें साक्षरता ली है, 5वीं, 8वीं, 10वीं कभी स्कूल नहीं गए, ऐसी बहनों को हमने साक्षरता बनाए, आत्मनिर्भर किए। दूसरा है कि हम लोग उनके पास जाते थे, कभी 1-2 पैसा होता था, उस समय तो सीट का घर नहीं होता था, घास भूसा का घर होता रहा, वहाँ पैसा छुपा के रखना, फिर जमीन में गाड़ के रखना, कभी दिमाग पकड़ता रहा, कभी चूहा कतरता रहा, तो ऐसी लोगों को हमने आत्मनिर्भर करना, उनको आर्थिक स्थिति सुधारना है तो कैसा करना होगा, उनको हम लोग उनको सिखाए, पास में लाए, समझाए, और बैंक को कभी नहीं जानते थे, अब वहाँ तक उनको ले जाके 10-12 हजार खाता खोले उस समय, उनके पास

0: पैसा नहीं होता था, 500 रुपये 50 रुपये में हमने खाता खोले। बैंक मैनेजर से भी बात की है कि इनका आर्थिक स्थिति सुधारना है, इनको निर्भर करना है, उनको स्वयं पर स्वावलंबन बनाना है, तो आप भी इनको मदद करिए, 10 रुपया भी लाएंगे तो उनको खाता में जमा करिए। फिर सिलाई का प्रशिक्षण दिए, साथ साथ में कढ़ाई बुनाई का काम किए, ऐसा आत्मनिर्भर उनको किए हैं, स्वयं सक्षम खड़े हो गए। और आज जो है 1-2 लाख हर महिलाओं में जरूर होगा।
1: महिलाओं के अलावा आपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की दिशा में काफी अच्छा काम किया है, तो इसके बारे में भी हमें बताएं।
0: क्यों, कुछ समय बच्चे लोग स्कूल नहीं जाते थे, माँ के साथ मजदूरी करना या फिर मामा इकट्ठा करना, आप जान रहे हैं ऐसा उनका जीवन व्यतीत होता था। हमने सोचे कि इनको इनके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में उन्हीं का नागरिकता है, ये गांव के होते हैं, और आने वाले समय में उन्हीं लोगों के भविष्य कैसा बनाना है। हम लोग सोच के एक बाल संस्कार केंद्र के नाम से हमने शुरू किए हैं, कई स्थानों में बाल संस्कार शुरू किए, 4 साल से 5 साल तक की हमने उनको साक्षरता खेल कूद से हंसते हंसते कई प्रकार का करते हुए उनको आगे बढ़ाए हैं। 6 साल होने से हम लोग सीधा स्कूल में उनको भेजने का कोशिश किए हैं, तो ऐसी कई जगह में हमने बाल संस्कार केंद्र के रूप में किए हैं, कई बच्चों का आज ही भविष्य बहुत बना है, हजारों बालक बालिका है शिक्षा पाए हैं और स्कूल जाते हैं, जहाँ नहीं जाते वहाँ तक भी हमने इस सब किए हैं। आप स्मार चित्र जैसा हम लोग को देख के भागने वाले माता बहने आज बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, आज कोई घर में रखवाली करने के लिए भी कोई नहीं, ऐसा बच्चों को भेज रहे हैं। बहुत अच्छा सफल हुआ इसमें भी बच्चों का, आज ही अच्छे अच्छे पद में उन्होंने पहुंचाए, और अभी मिलते भी है तो बोलते हैं कि धन्यवाद दीदी, आपने हमको बहुत आगे किए हैं, बड़े बड़े पोस्ट में है, उनका जिंदगी अच्छा बन रहा है। वैसा कई बच्चों के लिए हमने काम किए शिक्षा के रूप में।
1: बुद्री जी, आपको इस इलाके के लोग बड़ी दीदी कहकर बुलाते हैं, तो आपको ये सुनकर कैसा लगता है, और ये नाम आपका कब और कैसे पड़ा था?
0: ये तो मैं 1986 में जब जाने लगी हूँ, तभी से लोग ही ये हमारे लिए पूरा चिंता करती है। एक हमारे घर में कोई बड़े होते हैं तो हम अच्छा लगता है, जैसे कि परिवार में कोई बड़ा होता है, लोग आदर से उसको नाम नहीं लेते, बड़े दीदी के नाम से जाना जाता है। ये नाम 1986 में जब मैं गाँव में जाती थी, लोगों के साथ बैठना उठना, हम तो बड़े को बड़े आदर करते हैं, माँ है तो माँ बोलते हैं, बच्चे हैं तो बच्चों को प्यार से नाम लेते हैं, वो हम लोग अपने आप उन्होंने चुने हैं कि ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम सबका चिंता करते हमारे बड़े दीदी हैं। वैसा इस नाम से लोग अधिकतर लोग बोलते हैं, और आजकल तो माँ कह के भी पुकारना चालू किए। इस परिवार का हम लोग यहाँ का सब परिवार के एक सदस्य के समान है, और इससे मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो लोग हमको बड़े दीदी के नाम से छोटे से लेकर बड़े तक नाम लेते हैं, तो अच्छा लगता है समाज में जाके, क्योंकि हम उस समाज से घुल मिल होके रहते हैं, समरसता एक मिलाते हैं, तो सबको एक समान होता है।
1: आपने जड़ी बूटियों के माध्यम से लोगों का उपचार भी किया है, तो ये आपने कब कहाँ और कैसे सीखा?
0: जड़ी बूटी का क्या है, हमारे अकेले ने हमारे साथ में 7-8 बहने लोग हैं, तो हमारे बहनों में भी बहुत कुछ ही इस बारे में ज्ञान है। जैसे जड़ी बूटी इसलिए हम लोग ये करते हैं कि जंगल में जितना भी रहने वाला हमको बचपन से नॉलेज है, और एकदम कमजोरी हो जाते हैं, 6 महीना तक साल भर तक लोग ऐसी कमजोरी में रहते हैं, हम उन ऐसी लोगों को हम यहाँ का ही जो वस्तु मिलता है तो उसको इकट्ठा करके हम लोग उसका पूरा बना के कभी सुरन के नाम से बनाते, कभी लड्डू बना के देते हैं जड़ी बूटी का। तो इस प्रकार से हम लोग पूरे गांव-गांव में जा करके इसका भी करते हैं, कुपोषित है सभी है, ये सभी दवा हम लोग उनको मने दवा मने यहाँ हमारे जो हमारे आँख में जो खेती करते हैं उसी में से हम लोग इसको बना के खा सकते हैं, तो कितना हम लोगों का तंदुरुस्त होता है। हम लोग तो ये तो हमारा परंपरा है, आदिवासियों में तो जुड़ा हुआ रहता, प्रकृति से जुड़े हैं, इसका सब मालूम रहता है, सूजन आने से कैसे उसको करते हैं, उबाल के कैसे नहलाते हैं, सूजन कैसे उतरता है, घाव होने से ये दवा लगाने से घाव बढ़ता है, ये सारे जानकारी हम तो इंसान के गाय बैल से लेके सभी का सेवा करते हैं।
1: और अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अब आप दूर दराज के इलाकों में काम करने वाले लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, तो आपका योगदान देश और दुनिया जाने और सरकार की ये जो पहल है ये आपको किस तरह से लगती है?
0: हम लोग तो अभी तक की 1984 से आज तक

0: काम किए हैं जो हम चाहते हैं कि इस काम को गुप्त रूप से रहे, काम करते रहे, लेकिन ये ऐसा एक काम होता है कि इसको छुपा नहीं सकते हैं। जन जन में पहुंचने वाला काम है, हर व्यक्ति का पुकार है, इस गांव से लेकर नगर से लेकर बड़े बड़े शहर से लेकर केंद्र तक का ये अपने आप ही होने वाला चीज है। तो आगे फोकस हो गया, आगे चला गया, और आज हम जैसे कि धूल में मिले हुए कंकड़ को परसमणि बनाने की कोशिश करने वाली सरकार है उनके हाथ में, और इसने बड़ा समाज है, ये समाज का बल है, समाज का ऋणी है। तो आज तक हमने जो किए हैं कि हमने भी नहीं कभी सोचे नहीं थे कि इतना बड़ा अवार्ड जो है कभी होगा और सम्मानित करने का कभी मौका हमको भी मिलेगा, ऐसा कभी हम लोग को पता भी नहीं था। लेकिन आज ही आप सभी का सहयोग है, हमारे दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिला और पूरे बस्तर संभाग, हमेशा लोग सोचते थे कि लोग ही अबूझ है, आप जान रहे हैं, तो ऐसा क्षेत्र में भी आज ही उभर कर काम सामने आया। ये कार्य का परिणाम है, ये सब करने के लिए है, और ये सब आज जो पिछड़े समाज भी चाहता है कि हमारे बीच में कोई सम्मानित है, वो उनका सम्मानित है ये सब।
1: कार्यक्रम में शामिल होने, हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी सामाजिक सेवा कार्यों में विशिष्ट योगदान के लिए छत्तीसगढ़ से पद्मश्री के लिए चुनी गई बुधरी ताती के साथ खास बातचीत। नरेश मिश्रा के सहयोग से इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
4: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। इस समय सुबह के 9:25 हुए हैं। लीजिए आप सुनिए विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले प्रसारण।
5: धूम 3 से आपको सुनवा रहे हैं मोहित चौहान की आवाज में कौसे मुनिर का लिखा गीत, जूलियस पैकम का संगीत।

0: उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाली उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। डीजे आ गया पूजा नरानिया को नमस्कार।

ये है विविध भारती। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

आज का कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता अमरीश पुरी पर।

0: अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को हुआ था। वे अपने जमाने के जाने माने चरित्र अभिनेता मदन पुरी के छोटे भाई थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमरीश पुरी ने केंद्रीय श्रम मंत्रालय में नौकरी कर ली थी, लेकिन सन 1961 से उन्होंने शौकिया तौर पर रंगमंच शुरू किया था। यहाँ से शुरू हुआ अमरीश पुरी का अभिनय की दुनिया का सफर।
1: पूछो जरा है कैसी जिंदगी, जैसे जियो है वैसी।

0: जोश है नहीं शोर है।
1: अमरीश पुरी बहुत देर से फिल्मों में आए। श्याम बेनेगल की फिल्म निशांत से उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ सन 1973 में।

इसके बाद मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों में उन्होंने प्रभावशाली अभिनय के जरिए खूब नाम कमाया। सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा ने व्यावसायिक फिल्म जगत में अमरीश पुरी को पहचान दी।

इस बीच अभिनय के अच्छे ऑफर्स उन्हें मिलने लगे और उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी में बाकायदा एक बड़ी भूमिका के साथ वे फिल्म संसार में आए। छोटी बड़ी भूमिकाएं करने के बाद अमरीश पुरी को सबसे ज्यादा नाम अगर किसी फिल्म से मिला तो वो थी मिस्टर इंडिया।

1987 में आई इस फिल्म में अमरीश पुरी ने मोगैम्बो की भूमिका की थी। यहाँ से हिंदी फिल्म संसार को मिला एक प्रभावशाली खलनायक। मोगैम्बो की भूमिका को आज भी सभी याद करते हैं। सन 1982 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

0: मेरे साथी छोड़ के ये बैसाखी
1: आई बैसाखी। सन 1984 में अमरीश पुरी ने हॉलीवुड की एक फिल्म में काम किया। इस फिल्म का नाम था इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डूम।
2: अमेरिका अमेरिका अमेरिका अमेरिका।
1: इस फिल्म के निर्देशक थे स्टीवन स्पीलबर्ग। इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डूम में अमरीश पुरी ने मोला राम की भूमिका निभाई थी।

0: बहुत बरस पहले अमरीश पुरी विविध भारती के स्टूडियोज में आए थे और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जय माला कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने मन की बहुत सारी बातें हमें बताई थी।
1: मेरी आवाज तो कई बार आप रेडियो पर, टीवी पर और सिनेमा हॉल में सुनते ही होंगे। वो सब तो फिल्मी डायलॉग होते हैं, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता हूँ। फिल्मों में मैं ज्यादातर एक खलनायक की, या यूं कहिए कि एक विलेन की भूमिका निभाता हूँ। किसी का मर्डर, कहीं डाका, किसी का रेप या ऐसी खराब हरकतें। लेकिन साहब, मैं भी एक इंसान हूँ और आप सब की तरह सीने में दिल रखता हूँ, जो कभी हंसता है, कभी रोता है। आप सब की तरह मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं। मैं जानता हूँ और महसूस करता हूँ कि कितना मुश्किल होता है अपने प्यारों से दूर रहना।
2: मस्ताना अल्लेना, सिर्फ एक दुहला में

मैं अगर आज फिल्मों में नहीं होता तो शर्तिया आपकी तरह एक फौजी होता। बहुत तमन्ना थी बचपन से ऐसा करने की। मैट्रिकुलेशन का इम्तिहान पास करने के बाद मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में अप्लाई किया, लेकिन भाग्य में कुछ और ही था। इंटरव्यू की कॉल मुझे 3 रोज लेट मिली और उसके बाद फिर एज लिमिट होने के कारण मैं दोबारा अप्लाई नहीं कर सका, वरना आज मैं भी आपकी तरह अपने देश की रक्षा कर रहा होता। लेकिन आज मैं कर क्या रहा हूं ये तो आप बखूबी जानते हैं। जी चाहता है अपने देश की मोहब्बत और याद में दूर सरहदों पर बैठा हुआ मैं कुछ इस तरह से गुनगुना उठूं।

0: लोगों की तरह हम भी देश की सेवा कर रहे हैं। आप देश की रक्षा करते हैं, हम देश का मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जब तक आप नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं और जिंदगी की खुशियां जाहिर नहीं करेंगे, जिंदगी फीकी फीकी सी रह जाती है। मुझे इस बात का फख्र है कि हमारे परिवार में इस चीज की कुछ परंपरा ही रही है। कुंदनलाल सहगल मेरे भुआ के लड़के थे, उन्होंने बहुत सालों तक हमारा मनोरंजन किया। अपने परिवार की परंपरा को जारी रखते हुए मैं अपने बड़े भाइयों का नाम लेना चाहता हूं। मेरे सबसे बड़े भाई श्री चमनपुरी जी, जो फिल्मों में पार्टीशन से पहले लाहौर में काम करते थे, उसके बाद बंबई आए, यहां भी वो कुछ फिल्मों में काम करते रहे। उनसे छोटे थे मेरे मरहूम भाई साहब मदनपुरी जी। मदनपुरी जी ने आपका कितने तरीकों से मनोरंजन किया है, कितने भेसों में, कितने रूपों में, कितने ही किस्म किस्म के रोल अदा करके।
1: सन 1997 में आई फिल्म परदेश, सुभाष घई की इस फिल्म में अमरीश पुरी पर यह नगमा फिल्माया गया था।

सन 1995 में आई यश चोपड़ा की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म में अमरीश पुरी की भूमिका को आज भी लोग याद करते हैं।

0: कमल हासन की फिल्म चाची 420 सन 1998 में आई। इस फिल्म में भी अमरीश पुरी ने प्रभावशाली अभिनय किया था। गोविंद निहलानी की फिल्म देव अमरीश पुरी की एक महत्वपूर्ण फिल्म है। सुभाष घई की कई फिल्मों में अमरीश पुरी नजर आए। सुभाष घई के साथ उन्होंने जो आखिरी फिल्म की वो थी किसना।
1: हम हैं इस पर

0: डेविड धवन की हास्य फिल्म मुझसे शादी करोगी में वे एक रिटायर्ड कर्नल बने थे। फिल्म शरारत में भी उन्होंने एक वरिष्ठ नागरिक की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के सितारे थे अभिषेक बच्चन, ऋषिता भट्ट, ओम पुरी और अमरीश पुरी।
1: आती जाती है मुश्किलें बड़ी, हार हम कभी मानते नहीं, जान जाओगे मान जाओगे, तुम अभी हमें जानते नहीं, ये बताएंगे बेटा कल तुझे फूल पेड़ की देंगे फल तुझे, बुजुर्गों की जो ना सुने बोलो ये बात में।
2: ये मैं कहां आके फंस गया, ना जोश है नहीं शोर है।
0: फिल्म एतराज में उन्होंने एक विचित्र भूमिका ही निभाई थी। इस फिल्म में उनके साथ थी प्रियंका चोपड़ा।

अमरीश पुरी हिंदी फिल्म संसार के एक निराले अभिनेता के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे। चाहे फिल्में हों या रंगमंच, उनकी स्मृतियां हमेशा हमारे मन में ताजा बनी रहेंगी।

0: अकेला मैं भी अकेला। FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। इस समय सुबह के 10:01 हुए हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले प्रसारण।
4: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत की पहली कड़ी।
5: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान, और उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक बहुत खास शख्सियत मौजूद हैं, जो एक और बहुत ही खास शख्सियत को याद करने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में आई हैं। कार्यक्रम का नाम ही उजाले उनकी यादों के है, तो आज का कार्यक्रम है उजाले सदाशिव अमरापुरकर की यादों के, और ये उजाले बांटने के लिए मौजूद हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। बहुत बहुत स्वागत रीमा जी।
6: धन्यवाद धन्यवाद।
5: पिताजी की यादों के उजाले बांटने के लिए आकाशवाणी के स्टूडियोज में, विविध भारती के स्टूडियोज में आते हुए जो पहली फीलिंग है वो क्या है?
6: आकाशवाणी या विविध भारती के स्टूडियोज में मैं जब भी आती हूँ तो थोड़ा मैं अपने बचपन में चली जाती हूँ, बिकॉज हमारी पूरी फैमिली का आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, विविध भारती, इससे बहुत ही करीबी संबंध रहा है। तो मेरी माँ भी रेडियो आर्टिस्ट थी, अलग अलग ड्रामास, एड फिल्म्स में उन्होंने काम किया था ऑल इंडिया रेडियो के लिए। मैं खुद बचपन में मराठी 2 शोज कर चुकी हूँ जिसमें मैं वॉइस आर्टिस्ट थी। और सबसे जरूरी बात कि 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है

0: आकाशवाणी के साथ की है
1: परभणी में,
0: परभणी में। तो वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहां पर वो लगभग 2 महीने टिके, तो ये टिके ही कहना सही होगा बिकॉज उनकी वो पर्सनालिटी नहीं थी कि वो जॉब करे, क्योंकि शादी हो चुकी थी, 2 बच्चियां थी, तो इसलिए पिताजी को दिखाने के लिए कि नहीं नहीं मैं कमा रहा हूँ, उन्होंने वो जॉब की थी।
1: ये सोचकर कितना मजेदार लगता है कि वो मराठी में बोलते होंगे आकाशवाणी का ये परभणी केंद्र है।
0: और उनकी आवाज, उनकी आवाज तो वैसे भी उनकी स्ट्रेंथ थी, आज भी है, मतलब आज भी जब भी हम आवाज सुनते हैं तो फैमिली मेंबर्स की तो हमारी आंखें भर आती है। उस वक्त तो उनकी ताकत बहुत ही ज्यादा थी उस आवाज की, तो उनके बहुत सारे फैंस हो गए थे। और फिर ऐसे हुआ कि एक पॉइंट पे मम्मी को ऐसे लगने लगा कि अरे अभी बहुत ही ज्यादा फैंस हो रहे हैं इनके, विशेषतः लड़कियां, तो ये अगर छोड़ रहे हैं जॉब तो ठीक ही बात है।
1: वाह वाह वाह, ये रेडियो में आना उनका कैसे हुआ था, इसकी कोई कहानी हो तो वो।
0: हाँ, तो उसमें बात ऐसी थी कि जैसा मैंने कहा कि पापा बिल्कुल ही पूरी तरह से वो थिएटर, रंगमंच, नाटक, इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, कि दिमाग में 24 घंटे वही चलता था। और माँ की और उनकी जो मुलाकात हुई थी वो भी नाटक के दौरान ही हुई थी। मतलब मजे वाली बात यह है कि वो बचपन से, जैसे हम लोग कहते हैं किंडरगार्टन से, वैसे बचपन से वो एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में पढ़े। लेकिन कॉलेज में, क्योंकि माँ बहुत होशियार स्कॉलर, उस जमाने में जो कंसेप्ट थी स्कॉलर की, वैसी स्कॉलर थी, तो इसलिए उसने साइंस लिया हुआ था और पापा ने आर्ट्स लिया था। तो कॉलेज में भी वो एक ही कॉलेज में थे। तो जब थिएटर करना शुरू किया तब उन्हें लगा नहीं नहीं नहीं, ये सुनंदा ने करना चाहिए हमारे साथ काम, तो इसलिए उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी। और फिर वो थिएटर में मम्मी जो घुस गई, तो फिर साइंस वायंस सब पीछे रह गया, थिएटर ही चलता रहा।

0: लकीली पापा के जो पिताजी थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे अहमदनगर में, जो आज अहिल्यानगर कहा जाता है जिसे। तो उनका ऐसा कुछ नहीं था कि बाबा तू पहले नौकरी कर, पैसे कमा, फिर तेरी शादी करता हूं। उन्हें पता चला कि ये सुनंदा और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इनकी शादी करा देना सबसे अच्छी बात। आई थिंक पापा 23-24 साल के थे और मम्मी 23 साल की थी, उन दोनों में 6 महीने का ही अंतर है उम्र में। तो तब उनकी शादी हुई, 73 में शादी हुई और 74 में मेरी सबसे बड़ी बहन जो है उसका जन्म हुआ। मम्मी उस वक्त LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वहां पर जॉब करती थी, तो मम्मी ने पापा को ये सहूलियत दे रखी थी कि
1: मन का जियो,
0: हाँ तुम जियो, मैं संभाल लूंगी, मैं कमा रही हूँ, अपने बच्चों को हमें कुछ कम नहीं पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा, दादाजी और दादी और चाचा जी ये सब लोग थे, तो फैमिली में वैसे पैसे की उनका ये कहना नहीं था कि तुम घर में पैसे दो, पर उनका ये कहना था कि तुम खुद के लिए कुछ कमाओ। तो और मम्मी वो कर रही थी, तो इसलिए दादाजी का भी था कि चलो ठीक है, अभी अगर तुम्हारी बीवी कमा रही है तो तुम्हें जो करना है वो तुम करो। तो पहली बेटी हुई 74 में, 76 फरवरी में दूसरी बेटी हुई। तब फिर मम्मी को ऐसे लगने लगा, अरे अभी अपनी 2 बच्चियां हो गई, अभी भी ये कुछ नहीं कमा रहे हैं। तो रीजनल न्यूज़पेपर्स में उस समय एड आती थी, हाँ। तो फिर वो मम्मी ने वो एड देखी, और पापा का ऐसा था वो पूना मुंबई थिएटर के चक्कर में चक्कर काट रहे थे, अहमदनगर पूना मुंबई इस तरह से उनका चल रहा था। तो उन्होंने मम्मी ने वो एड देखी न्यूज़पेपर में, और मम्मी ने बिना पापा को बताए वहां पे अप्लाई कर दिया।
1: वेरी गुड,
0: हाँ। और फिर जब ऑडिशन थी तब मम्मी ने उन्हें बताया SSC ऑडिशन है, आपको जाना है और करके आना है। वो समय ऐसा था कि कमाने वाली माँ थी और घर पे दिखाना बहुत जरूरी था कि भाई मेरी फैमिली बढ़ रही है, मैं भी कमा रहा हूँ इस तरह से। सो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलो अब तुम कह रही हो तो मैं जाता हूँ और ऑडिशन देता हूँ। और ऑफ कोर्स उनकी आवाज ऐसी थी कि सिलेक्ट होना ही होना था। तो वो सिलेक्ट हो गए और उन्होंने जॉब करी, 2 महीना उन्होंने जॉब करी वहां पर। और 1.5 महीने बाद उन्होंने मम्मी को खत लिखा कि मैं अगर ये करता रहा तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा जिंदगी में। तो फिर मम्मी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तो तुम छोड़ दो। तो उन्होंने छोड़ दिया, पर उन्होंने वो जॉब इस तरह से करी थी तो आकाशवाणी ने उन्हें काफी हाथ दिया था उस वक्त, जब उन्हें वो जरूरत थी पुश की, एक जो साइकोलॉजिकल पुश हमें लगता है मानसिक रूप से कि हमें अभी मुझे कुछ अचीव नहीं कर पा रहा हूं मैं, उस वक्त जो एक अचीवमेंट की फीलिंग है वो आकाशवाणी ने दी हुई है। और मेरे ख्याल से हमें भी, विशेषतः मेरे बारे में मैं कहूंगी कि जब आप ऐसे घर में पैदा होते हो और बड़े होते हो कि जहां पर सुपर अचीवर्स है आपके आजू बाजू सारे, तब एक होता है कि मुझमें क्या है, शायद मुझमें कुछ नहीं है, ऐसी एक फीलिंग जो घर का सबसे छोटा सदस्य होता है उसमें आ सकती है, आने की आशंका होती है। तब मुझे आकाशवाणी ने हाथ दिया और मुझे ये समझ में आया उस वक्त कि नहीं, मेरे पास मेरी आवाज है और मैं बहुत अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, कंडक्ट कर सकती हूँ। आई थिंक आकाशवाणी हमारे परिवार के लिए वैसा एक जरिया रहा है कि जिन्होंने हमें, जब हमें कॉन्फिडेंस नहीं था या जब हम एकदम लो जिसे फेज कहते हैं वैसे इसमें रहे हैं, उस वक्त हाथ दिया है, जिसे मराठी में हम उभारी कहते हैं, उभारी दी है,
1: उबारा है।
0: हाँ, तो आकाशवाणी से हमारा रिलेशनशिप, हमारी फैमिली का इस तरह से।
1: कितनी सुनहरी यादें आपने शेयर की सदाशिव जी के आकाशवाणी से जुड़ने की। यहाँ सुनंदा जी का जिक्र

0: आता है और नाटकों का भी जिक्र आता है कि जहां वो उनके रास्ते एक साथ हुए,
1: राइट,
0: कोई पॉइंट ऑफ टाइम था जहां ये एहसास हुआ कि उन्हें अब सुनंदा जी के साथ जीवन बिताना है? वो कोई एक मोमेंट था जहां ये हुआ?
1: पापा उनके नाम ही की तरह सदाशिव भोला साम जिसे कहते हैं वैसी पर्सनालिटी के थे, स्पेशली जब वो कॉलेज में थे तब, तो उनके दिमाग में एक ही पागलपन चढ़ा हुआ था, एक ही भूत सवार था, वो था नाटक, और उन्हें वही करना था। ठीक है, नाटक करते वक्त घंटों तक आप साथ में रिहर्सल्स करते हैं, सब करते हैं, साथ में वक्त बिताते हैं, तो जो दोस्ती है वो दोस्ती से थोड़ी ज्यादा है, इतना उन्हें शायद समझ में आया होगा, पर उसके ऊपर कुछ करे, उसके ऊपर कुछ एक्ट करे, ये उनकी पर्सनालिटी नहीं थी।
0: पहला कदम उनकी तरफ से नहीं आना था।
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मुझे याद है आज भी, मतलब ये हमारे घर में हमारे बहुत ही आर्ग्यूमेंट का विषय हुआ करता था जब पापा थे तब, कि पहले प्रपोज किसने किया। लेकिन जब अभी मम्मी ने किताब लिखी है उसमें उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि मम्मी ने ही उन्हें एक चिट्ठी लिख के कहा था कि ऐसा ऐसा मेरी फीलिंग्स है और क्या आपको भी यही लगता है, और उन्हें वो चिट्ठी दी थी उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा था कि देखो अपने दोस्तों के सामने मत खोलना ये चिट्ठी, घर जाके अकेले में खोलना, बिकॉज पापा ऐसे थे वो हमेशा दोस्तों से घिरे रहते थे, तो वो दोस्तों के सामने खोलेंगे, जोर से पढ़ेंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा, इतना डर मम्मी को लग रहा था। तो इस तरह से तो वो पॉइंट था जब मम्मी, क्योंकि मम्मी के घर पे उनके पिताजी की मौत बहुत जल्दी हो चुकी थी जब वो 10-11 साल की थी, तो उस वजह से उनके घर पे वो और उनकी माँ इतने ही थे, उनकी बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी, तो अभी इसके लिए भी लड़का देखो ये करो, जब वो शुरू हुआ उनके घर पे जब वो ग्रेजुएशन के आसपास थी, तब उन्होंने कहा अभी ये मेरा ये जो पगला आदमी है उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम में जो है वो प्यार है, उसे ये समझाना अभी जरूरी हो गया है, और फिर उन्होंने वो चिट्ठी लिखी थी। तब फिर उनका आगे जाके इस तरह से हुआ कि फिर मम्मी ने ही थोड़ा थोड़ा, बिकॉज उस वक्त मेरे दादाजी जो थे वो बहुत कर्मठ स्वभाव के थे, तो किसी लड़की का घर पे आना, लड़कियों से दोस्ती, ये सब इम्पॉसिबल था उस समय, और अहमदनगर जैसे छोटे से शहर में। पर लकीली मम्मी के पिताजी और वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, तो जब मम्मी घर जाने लगी दादी से, फिर पापा की बुआ भी उन्हीं के साथ रहती थी, उनसे इस तरह से जब बातें होना शुरू हुई, तब उन्हें समझ में आया कि कुछ तो मामला है, और फिर उन्होंने वन फाइन डे मम्मी को बुलाया घर पे और कहा कि देखो तुम्हें ये सब दिख रहा होगा कि इतना बड़ा घर है, ये है वो है, पर ये सब मैं धर्मादाय कर दूंगा, बेटों को कुछ नहीं दूंगा मैं। हाँ, तो अगर तुम ये सोचती हो कि इस वजह से है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तब मम्मी का इतना क्लियर था कि उसने कहा ठीक है मैं जॉब कर रही हूं, मैं चला लूंगी घर, नो प्रॉब्लम। तो बहुत ही ज्यादा क्लियर इन दोनों के थॉट्स थे, और जैसा मैंने कहा कि पापा को ये शब्दों में पेश करना कि जो हमें हुआ है वो प्यार है, ये पॉसिबल नहीं था जो मम्मी कर पाई, लेकिन जिस वक्त वो कमिटमेंट हो गई उस वक्त वो कंप्लीट कमिटमेंट हुई।
0: वाह वाह।
1: तो वो हालांकि वो उन्होंने शब्दों में नहीं कहा होगा, पर वो उनके एंड तक, मतलब ये उन्हें प्यार हुआ जब वो 21 साल के थे, 64 के होने तक वो प्यार बिल्कुल वैसा ही रहा, और ये हम सब लोगों ने देखा हुआ है, और उन दोनों ने वही सीख हमें भी दी है कि अगर कमिटमेंट कर रहे हो तो पूरी तरह से करो, फिर वो अपने काम की तरफ हो या इंसानों की तरफ हो।
0: क्या तो, प्यारी बात है। यहाँ एक बहुत क्यूट बात सामने आई है, और वो है एक प्रेम कहानी जो चिट्ठी के जरिए आगे बढ़ती है। हम जिस समय और समाज में हैं वहां ये यकीन करना अब जरा मुश्किल है कि चिट्ठियों के जरिए भी प्यार का इजहार हो सकता है, और वो चिट्ठी बचाकर जीवन भर रखी जा सकती है। मुझे लगता है ये जगह है गाने की, और वो गाना बहुत ही मुफीद है जो चिट्ठी के जरिए प्यार के इजहार की बात करता है। फिल्म है संगम।

0: यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात जो पीछे छूट गई है उसका सिरा पकड़ के आगे बढ़ते हैं। मम्मी की एक किताब है पिताजी के नाम पर, और आपने कहा कि उसमें ये जिक्र आता है कि उन्होंने सबसे पहले इजहार किया, उस किताब का नाम बताइए और वो नाम क्यों रखा गया, इसकी कहानी बताइए।
1: हाँ, ओके। तो वो किताब अगर आप देखेंगे तो उसका नाम है खुलभर दुधाची कहानी। खुलभर माने छोटी सी कटोरी में जितना दूध बैठता है उसको खुलभर कहते हैं।
0: ओके।
1: मतलब उतना सा, खुलभर दुधाची कहानी, सो उतने से दूध की ये कहानी।
0: हाँ, सवाल आता है कि ये आखिर क्या है,
1: क्या है, राइट। सो श्रावण महीना जब होता था तो अहमदनगर में, या आज भी छोटे गांव में होता होगा, हर मंगलवार को और शुक्रवार को उपवास होता है, पूजा होती है, कथा कथन होता है। तो उस वक्त जो फोक टेल्स जिसे हम कहते हैं, वैसी कथाएं कही जाती थी। तो उस समय सुनी हुई ये कहानी है। ये कहानी है कि एक छोटा सा गांव है, राज्य है, और वहां पर अकाल पड़ा हुआ है, बारिश हुई ही नहीं है।

0: ठीक है, सूखा पड़ा हुआ है। और वहां पर वो राजा हैरान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, और इसलिए वो पंडितों को बुलाता है और कहता है अब मैं क्या करूं। वो पंडित उसे कहते हैं कि जो ये महादेव का मंदिर है आपके गांव में, तो उसका जो गर्भगृह है उसे पूरी तरह से दूध से आप भर दो। तो शंकर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और फिर आपको बारिश हो जाएगी। तो राजा फरमान निकालते हैं कि हर एक के घर में कल जितना भी दूध होगा, जितना भी जिसके पास होगा, वो सब लाके गर्भगृह में अर्पण कर दे। तो ये सब होता है, तो फिर भी वो गर्भगृह भरता ही नहीं है। इतना दूध आता है, लंबी लंबी लाइनों में लोग आके दूध डालते हैं, वहां फिर भी नहीं होता है। और जो सिपाही होते हैं वो घर घर जाकर आपके पास और दूध है, और दूध है, और दूध है, ऐसा करते हैं। तब वो एक घर में जाते हैं, वहां पे एक बुढ़िया होती है। तो वो कहते हैं आप गए थे दूध डालने, बोले नहीं नहीं मैं अभी जा ही रही हूं। तो उसने एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी में दूध लिया हुआ है, और उसने क्या किया है कि उसके घर पे जो उसके बच्चे बच्चिया पोते सब लोग हैं, उनका खाना पीना सब कुछ होने के बाद जितना दूध बचा वो लिया और वो गई और महादेव जी के ऊपर उसने चढ़ा दिया। और जिस क्षण उसने वो चढ़ाया, वो गर्भगृह पूरा दूध से भर गया। तो कहानी का मतलब ये है कि आपके जो कर्तव्य है वो आप पूरा कीजिए, और फिर जो बचा कुचा है वो आप भगवान को दीजिए, भगवान को चलता है।
1: वाह वाह वाह।
0: सो बेसिकली आप अपनी जो पूरी जिंदगी है वो अपने कर्तव्यों के प्रति और अपनी जो जिम्मेदारियां है उनके प्रति आप अर्पण कीजिए, इस तरह की वो कहानी है। और थोड़ी बहुत मम्मी की जो कहानी है, जीवन की कथा अगर हम सोचे तो वो उसी तरह से गई है। वो भी एक गजब की अदाकारा है, बहुत अच्छा गाती है, लिखती है, बट जब उनकी शादी हुई और उन्हें ये समझ में आया कि नहीं, ये जो मेरा सदाशिव है, ये जो मेरा महादेव है, इसे जो करना है, इसमें ज्यादा पोटेंशियल है, इसने ये करना चाहिए, तब उन्होंने अपना खुद का सब पीछे छोड़कर एक बहुत ही कर्मठ घर में जाकर बच्चियों को पाला, और दादा दादी मतलब उनके सास ससुर, बुआ पापा की बुआ थी जो सन्यासिन थी, उनका सब कुछ करते हुए, ये सब कर्तव्य करते करते करते फिर अल्टीमेटली जब उनकी बेटी की शादी हुई, आते ये जो 53, फिर उन्होंने अपना लिखाई का काम और ये सब शुरू किया। और अभी ये है कि पिछले 20 सालों में उनकी लगभग 30 किताबें आ चुकी है। तो इसलिए वो हमें लगा कि ये जो कहानी है ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट है उस बुक के लिए, क्योंकि उनकी जिंदगी की कहानी उस तरह से रही है। और ऑफ कोर्स भगवान, मतलब उन्होंने पापा को जिस तरह से प्यार दिया, जिस तरह से विश्वास दिया, वैसा ही पापा ने उन्हें रेसिप्रोकेट किया। पापा का भी उन पर ऐसा ही विश्वास था, जो अंधविश्वास हम कह सकते हैं थोड़ा सा था, पर वो था। और उस वजह से आई थिंक जो आज भी हमारा घर फूला फला है और इतना अच्छा है, वो उस विश्वास की वजह से है।
1: बहुत ही सुंदर घटना है ये, जो किताब के नाम की घटना है और जिस तरह से आपने उसको विस्तार दिया है, ये बहुत ही मार्मिक है। अब चूंकि अमूमन जो रवायती इंटरव्यूज होते हैं वो ये कि बचपन से शुरू करेंगे, लेकिन हम कहीं से शुरू हुए हैं तो वो बचपन की बातें हम आगे कहीं जाके करेंगे, क्योंकि बातचीत के अंदर घटनाएं तो आगे निकल कर आएंगी। की बातें सुनंदा जी और सदाशिव जी के रिश्ते की चल रही हैं और कैसे उनकी डोर आपस में जुड़ती है चल रही, पहले उन नाटकों का जिक्र करते हैं जो उन्होंने उस दौरान साथ में किए थे, उनसे जुड़ी कुछ कहानियां हो तो वो बताएं।
0: राइट, सो उनसे जुड़ी तो काफी कहानियां हैं जो हम सुनते सुनते बचपन से आ रहे हैं
1: जी।
0: पर उन्होंने एक जो प्ले उन्होंने किया था वो था बंडू बेबी यानी बुरखा। तो उस वक्त इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन होती थी, ये जो प्ले था इसमें बंडू और बेबी, तो पति पत्नी का कैरेक्टर था, ये इन दोनों ने किया था। और उसी नाटक के दौरान आई थिंक दे रियलाइज्ड कि दे आर इन लव विद ईच अदर। ये एक नाटक के बहुत सारे किस्से हैं, मतलब मम्मी क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्कॉलर इसकी थी, तो जब भी उनकी एग्जाम आती थी तो वो अवेलेबल नहीं होती थी प्ले के लिए। प्ले तो करना था, अभी कॉम्पिटिशन है तो जाना तो पड़ेगा। तो उस वक्त मम्मी तो नहीं है, मम्मी ने कहा मैं तो नहीं, मेरी एग्जाम है अभी, मैं पढ़ाई करने वाली हूँ, आपको जो करना है करो। तो उन्होंने किसी और को वहां पर कास्ट किया और फिर मम्मी ने कहा अगर ये लड़की कास्टिंग है तो आप नहीं करोगे ये रोल। तो इसलिए फिर पापा का रोल भी किसी और ने वहां पर किया।
1: बहुत सही,
0: ठीक है,
1: बहुत ही सही।
0: तो और वो जो था वो उसका शो था संगमनेर नाम के एक छोटे से गांव में, अहमदनगर के पास ही है।

0: वहां पर उसका शो था और उस समय लाइट चली गई तो माइक नहीं थे तो फिर आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा, मम्मी हालांकि नाटक में नहीं थी पर क्योंकि वो यूथ फेस्टिवल जैसा माहौल था तो और किसी कंपटीशन में वो थी तो इसलिए वो वहां गई हुई थी। तो फिर वहां पर और वो जो नई लड़की और लड़का था उनके आवाज पहुंच ही नहीं रहे थे ऑडियंस तक। तो फिर इन दोनों ने वो डायलॉग्स पीछे से जोर से वो बोले और उन लोगों ने लिपसिंग किए स्टेज के ऊपर।
1: वाह वाह, क्या प्रयोग।
0: इस तरह से वो हुआ। तो ये जो एक किस्सा है ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद कभी भी मम्मी ने पापा से ये नहीं कहा कि मैं नहीं हूँ प्ले के लिए। जो भी डेट चाहिए जब भी चाहिए वो अवेलेबल होती थी।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर। एक पूरा दौर था जब सदाशिव जी लगातार नाटक कर रहे थे और भ्रमण कर रहे थे क्योंकि नाटकों के लिए तो अलग अलग शहरों में गांव में जाना होता है। उस दौर के कोई बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं जिन्होंने उन्हें एक मुकम्मल पहचान दी थी, उनकी बात करते हैं।
0: उसमें मैं सबसे पहले पापा कलाकार तो थे, एक्टर तो थे ही, पर वो निर्देशन में भी बहुत रस रखते थे, वो निर्देशक भी थे, राइट। सो अगर उनके नाटकों की बात कही जाए तो उन्होंने कुछ नाटक ऐसे किए थे जैसे छू मंतर करके एक नाटक था, फिर बखरे का राजा जी ये एक प्ले था, छिन्न करके एक नाटक था, कन्यादान एक नाटक था, फिर हैंड्स अप, ये जो पांच छह नाटक है, काही स्वप्ने विकायची ये भी एक था, पर काही स्वप्ने विकायची थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल था और कंपटीशन वाला प्ले था, बाकी के ये जो सारे जो मैंने नाम लिए ये कमर्शियल नाटक थे। इसके अलावा भी बहुत सारा काम किया हुआ है पर ये नाटक मैं स्पेशल इसलिए समझती हूँ बिकॉज ये हर एक नाटक ने कुछ इंडस्ट्री को भी दिया हुआ है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका अलग अलग जिक्र मैं चाहता हूँ, जैसे छिन्न का बहुत जिक्र मिलता है, हैंड्सअप का जिक्र मिलता है, काही स्वप्ने भी काईची अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ उसका भी खूब जिक्र मिलता है कि अलग अलग मानदंडों पर इन्होंने कुछ
0: किया है,
1: कामयाबी।
0: तो काही स्वप्ने विकायची ये जो प्ले था ये बहुत पहले कुछ जो प्लेस पापा ने किए थे उसमें से था। तो उसमें वो एक रिटायर्ड टीचर का रोल करते थे जो 83 इयर्स ओल्ड होते हैं और उस वक्त पापा की उम्र थी 23-24 ज्यादा। उस समय उन्होंने काफी सारे उस पे INT और ये जो सारी कॉम्पिटिशन होती थी उसमें काफी सारे अवार्ड जीते थे उस एक रोल के लिए। उन्हें लोग कास्टिंग के लिए बुलाते थे कि आप आओ हमारे यहाँ पे प्ले में, और वो हर बार जाते थे तो लोगों को लगता था ये कौन आ गया, वो तो एक बुढ़ा आदमी है जो वो रोल कर रहा है, यू नो उम्र में ज्यादा है, आपने कैसे किया, आप तो नहीं हो सकते। ऐसे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज उस समय पापा की आंखें चली गई बिकॉज लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये वही इंसान है जिसने 83 साल के एक वृद्ध इंसान का रोल किया हुआ है और वो इतना बखूबी निभाया उन्होंने कि लोग ये सोच ही नहीं सकते थे कि ये एक 24-25 साल का युवक है। तो वो एक प्ले इसलिए बहुत ज्यादा फेमस था क्योंकि पापा की जो एक्टिंग की रेंज थी वो एक प्ले में काफी सारी एक्सपोज हुई थी। इसके अलावा छिन्न जो प्ले है वो विजय तेंदुलकर साहब ने लिखा हुआ था और उसकी खासियत ये है कि वो एक प्ले है जिसमें सबसे पहले और मेरे ख्याल से आखिरी बार वही एक प्ले है जिसमें स्मिता पाटिल जी ने कमर्शियल थिएटर किया था
1: और वो पापा, भी पापा के निर्देशन में।
0: एग्जैक्टली। तो इसलिए वो एक बहुत ही खास प्ले रहा है और लोगों ने जो सराहा है उस प्ले को क्योंकि उसका विषय है और जो सब था, एक तो तेंदुलकर साहब की जो लिखाई है वो एक तो पाथ ब्रेकिंग ग्राउंड ब्रेकिंग होती है और उसके ऊपर पापा का डायरेक्शन, ये बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट दोनों चीजें हुई थी। उसी की स्टाइल में दूसरा एक नाटक कहा जाए तो वो है कन्यादान। कन्यादान में डॉक्टर राम लागू, नीना कुलकर्णी, आशालता वाबगावकर, ये बहुत बड़े बड़े नाम थे उस समय और उनके साथ अगेन पापा ने निर्देशित भी किया था, उन्होंने एक्टिंग भी की थी उसमें। छिन्न और कन्यादान, इन्होंने पापा को एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर डायरेक्टर के तौर से एस्टेब्लिश किया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे और उस समय थिएटर जिस तरह से देखा जाता था, लोग जिस तरह से देखते थे, वैसा मुझे नहीं लगता आज तक वो सुवर्ण काल फिर से आया है।
1: हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब टेलीविजन उस तरह से नहीं आया था और महाराष्ट्र में खास तौर पर थिएटर की सशक्त परंपरा थी और कामयाबी के झंडे गाड़ते थे प्लेज और

0: की दास्तानें आज तक कही जाती है।
1: करेक्ट करेक्ट। तो ये प्ले था, उसके बाद पापा ने INT के लिए ही एक प्ले किया था बखरे का राजा जी। तो बखरे का राजा जी ये जो प्ले था, इसमें नीना कुलकर्णी और दिलीप कुलकर्णी जो उनके हस्बैंड थे, वो भी एक बहुत उम्दा कलाकार थे, उन दोनों को लेकर ये प्ले बनाया गया था। पर उस समय वो प्ले चला नहीं, कमर्शियली इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल और INT को काफी लॉसेस झेलने पड़े थे, बिकॉज इट वाज अ हिस्टोरिकल सेट, सब वैसे लगा था और ये सब हुआ था। तो उसके बाद पापा ने डिसाइड किया, अब मैं जो करूंगा वो मैं कमर्शियली वायबल करूंगा, पैसे कमाने चाहिए लोगों, मतलब प्रोड्यूसर्स ने, राइट। तो इसलिए उन्होंने दो प्लेज किए उसके बाद डेफिनेटली, जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। एक प्ले तो था छू मंतर, उन्होंने डायरेक्ट किया था। और इस प्ले की मजे वाली बात यह है कि उस वक्त लक्ष्मीकांत बेरडे को फर्स्ट टाइम कमर्शियल प्ले में पापा ने कास्ट किया था।
0: गजब।
1: इट वॉज इज लॉन्च। तो और वो प्ले बहुत चला, बिकॉज इट वॉज अ आउट एंड आउट कॉमेडी और बहुत मजा आया लोगों को। और एक लक्ष्मीकांत बेरडे जैसा कलाकार आया, पापा थे लक्ष्मीकांत बेरडे थे, तो इट वॉज पिक्ड अप लाइक हाउ। उसके बाद हैंड्स अप किया था पापा ने, जिसमें वो थे, भक्ति बर्वे थी, ऐसे 5-6 बहुत ही स्ट्रांग आर्टिस्ट उसमें थे। और पापा ने निर्देशित भी किया था वो प्ले, और दैट वॉज अ हिस्टोरिकल प्ले। मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि बहुत बारी ये बात आई भी है कि जब गोविंद निहलानी जी ने वो प्ले देखा, अगेन विजय तेंदुलकर जी ने उनसे कहा था कि तुम हैंड्स अप का प्ले देखो, बिकॉज उस समय निहलानी जी अर्धसत्य का कास्टिंग कर रहे थे और पुलिस इंस्पेक्टर का हीरो है ये तो पता था, बिकॉज तेंदुलकर साहब ने ही वो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि तुम ये प्ले देखो, इसमें ये लड़का है, ये बहुत अच्छा इंस्पेक्टर निभाता है, तो तुम देखो। तो इसलिए गोविंद जी गए, उन्होंने वो देखा प्ले, और उन्होंने पापा को इंस्पेक्टर के रोल में ही थे वो देखा, लेकिन उन्होंने उनकी कास्टिंग रामा शेट्टी के लिए की।
0: वाह।
1: ओके। और फिर उसके बाद तो इट इज जैसे हम कहते हैं कि हिस्ट्री है। उसके बाद फिर पापा एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कलाकार का नाम उन्हें मिल गया और वो काफी सारी फिल्मों में ही बिजी हो गए। तो थिएटर वो करते रहे, पर बहुत थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा बाद में वो करते रहे।
0: बिल्कुल।
1: तो इसलिए वो हैंड्स अप ये एक जो प्ले है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड्स अप का ये एक मजेदार किस्सा है। उस वक्त क्या होता था, जैसे आपने कहा कि वो समय ऐसा था जब मराठी में नाटक की परंपरा बहुत बहुत स्ट्रांग थी। तो दिन में दो दो तीन तीन शो लगते थे एक प्ले के। तो और उस वक्त जैसे अब है, मेट्रो पकड़ लिया चले गए, उबर पकड़ ली चले गए, वैसा नहीं था। आर्टिस्ट को खुद ही जुगाड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। पापा के पास उस वक्त एक 2-व्हीलर थी। तो शिवाजी मंदिर में प्ले खत्म हुआ, वहां से उन्हें ठाणा पहुंचना था। और ये मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ये सब इतना अच्छा नहीं था बंबई में।
0: हाँ जी।
1: तो पापा स्कूटर पे जाते थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कपड़े नहीं बदले और वो वैसे ही निकल गए, और एक भी सिग्नल पर वो नहीं रुके। और हर बार जब उन्हें ट्रैफिक पुलिस ने रोका, तो बिकॉज वो उस कॉस्ट्यूम में थे, उनको लगता था अरे ये तो कोई इंस्पेक्टर है, कुछ अर्जेंट काम होगा, तो सॉरी सॉरी सर करके तो ये कलाकार इस तरह से होते हैं, औलिया जिसे हम कहते हैं, कि वो उन्हें सिर्फ वही दिखता है कि मेरा कर्टन और आधे घंटे में खुलने वाला है, मुझे वहां पहुंचना है बस। और
0: क्या प्यारी बात है। वाह। यहां भी गाने की जगह बन रही है, और मुझे लगता है कि ये करते हैं कि मम्मी की पसंद का कोई गाना लगाते हैं यहाँ पर।
1: मम्मी की पसंद का ये जो गाना है, मेरे महबूब में क्या नहीं।
0: वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात क्या बात। सुनते हैं ये गाना।

0: बहुत लंबी एक दिलचस्प बात हुई नाटकों को लेकर, और तेंदुलकर साहब का नाम वहां बार बार आता है। बहुत करीबी रिश्ता सदाशिव जी का तेंदुलकर जी से रहा है, उससे जुड़ी कुछ घटनाएं जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं आपसे सुनना चाहता हूं।
1: ओके तेंदुलकर जी एक हम कह सकते हैं विद्यापीठ थे।
0: बिल्कुल
1: किसी भी घटना की तरफ देखने का उनका जो दृष्टिकोण होता था वो बहुत अलग होता था। रोज की घटनाओं की तरफ भी वो जिस तरह से देखते थे और बात करते थे ये बहुत अलग था। तो उनकी और पापा की जो पहचान थी वो प्ले की वजह से हुई थी, पर सुहास अउचट करके बहुत बड़े आर्टिस्ट है, पेंटर है, उन्होंने उनको मिलाया था। एक ये अहमदनगर से आया हुआ लड़का है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ये जब तेंदुलकर साहब को समझ में आया तो उन्होंने उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट किया। और सपोर्ट किया मतलब मैं इस तरह से कहती हूँ कि देर वर डेज, ऐसे दिन थे जब दो दो तीन तीन दिन तक पापा उनके घर पर ही रहते थे।
0: गजब।
1: हाँ, और उस वक्त तेंदुलकर साहब जो काम कर रहे थे, इतना बड़ा काम कर रहे थे, तो वो प्रोसेस का एक भाग होना एक युवा के लिए जो अहमदनगर जैसे छोटे से गांव से आया है ये बहुत बड़ी बात थी। तो पापा हमेशा कहते हैं कि मैं तो उनके सामने जाता था तो जैसे ब्लॉटिंग पेपर होता है जो इंक ब्लॉट करता है, वैसे मैं, मराठी में हम उसे टिप कागद कहते हैं, तो वैसे मैं टिप कागद हो जाता था, जो भी मिले वो एब्जॉर्ब करो।
0: वाह वाह,
1: बस उतना ही। तो ये स्थान तेंदुलकर साहब का पापा की जिंदगी में था। दूसरा, जब 82 में मम्मी को बॉम्बे में ट्रांसफर मिली तब कैसे तैसे करके पापा ने एक किराए का घर लिया था, क्योंकि हम तीनों बच्चियां, मेरी दादी और मम्मी और वो, ऐसे हम सब लोग रहने वाले थे।
0: किस इलाके में?
1: अंधेरी में ही लिया था उन्होंने, बिकॉज उस वक्त बैंड्रा बहुत महंगा था तो उन्होंने अंधेरी में लिया था। तो एक किराए पे छोटा सा घर लिया था, और दो साल बाद वो घर मालक ने कहा कि भाई अभी नहीं, अभी आप छोड़ दो, मुझे ये घर बेचना है। तो रातों रात एक हफ्ते के अंदर बंबई जैसे शहर में एक घर ढूंढ पाना ये बहुत ही डिफिकल्ट है। तो पापा गए तेंदुलकर साहब के पास, बिकॉज जैसे मैंने कहा ही वॉज अ गाइड, ही वॉज अ फ्रेंड, ही वॉज अ फिलोसोफर। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा हुआ है, नो प्रॉब्लम। उन्होंने सीएम साहब के लिए एक लेटर लिखा कि ये ऐसा ऐसा कलाकार है, बहुत अच्छा कलाकार है, और इसे बंबई में रहने के लिए घर नहीं है, तो आप इसकी कुछ मदद कर दीजिए। तेंदुलकर साहब का लिखा हुआ खत लेकर पापा पहुंच गए। उस समय चव्हाण साहब सीएम थे, उन्होंने वो लेटर देखा और एक मिनट के अंदर उन्हें लेटर दिया। उस समय ऐसा था कि 2% कोटा हुआ करता था

0: कारों के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए। तो उसमें से जोगेश्वरी में जो नई एक कॉलोनी बन रही थी वैशाली नगर, वहां पर हमें एक 1 BHK का फ्लैट म्हाड़ा का मिला। तो वो लेटर तेंदुलकर साहब ने दिया और इट वॉज अमेजिंग। जैसा पापा हमेशा कहते थे कि आपकी जिंदगी के हर मुकाम पर आपको ऐसे इंसान मिलते हैं जो या तो आपको कुछ नया दिखाते हैं या आपको आगे पुश करते हैं। तो मेरे ख्याल से और पापा से जो बातें होती थी उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि तेंदुलकर साहब ऐसे थे जो पापा के लिए ना ही मतलब एक नया तरीका दुनिया को देखने का तो था ही जो उन्होंने सिखाया उन्हें, पर उन्होंने उन्हें बहुत बड़ा पुश भी दिया। तो बंबई में घर अपना खुद का लेना हो या उन्हें पहली फिल्म मिलनी हो, पहली फिल्म हालांकि पापा की 22 जून 1897 थी,
1: उसकी बात आगे करेंगे,
0: उसकी आगे करेंगे, पर बड़ी फिल्म जिसमें हालांकि 3.5 सीन थे पर वो पूरी फिल्म पे छा गए थे, रामा शेट्टी छा गया था कैरेक्टर, तो वो फिल्म हो, तो आई थिंक तेंदुलकर साहब का अनन्य साधारण महत्व हमारी पूरी फैमिली की लाइफ में है।
1: बिल्कुल। एक घटना है जिसमें उन्होंने पूछा था तेंदुलकर से कि आपने अर्धसत्य में मुझे रोल क्यों दिलवाया, उसका जिक्र करें।
0: उसका ये तो एक्चुअली तेंदुलकर साहब ही बेस्ट बता पाएंगे पर उन्होंने जब पूछा तब मेरे ख्याल से जो मुझे याद है कि तेंदुलकर साहब ने कहा था कि देखो कलाकार कलाकार होता है, क्योंकि उस समय भी और आज भी हमारी इंडस्ट्री में काफी कैंप्स बने हुए हैं।
1: बिल्कुल।
0: सो पुणे से आने वाले लोगों का एक कैंप है, बॉम्बे से लोगों का एक कैंप है, अभी तो बॉलीवुड में भी यूपी से आने वाले लोगों का एक कैंप है, इस तरह से, और वो कालातीत है, वो चलता ही रहता है, हर जगह वो होता है। तो उन्होंने कहा था कि कलाकार जो होता है ना उसकी जात और उसका ये सिर्फ एक होता है धर्म, वो है कला। और तुम जिस तरह से खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हो वैसे मुझे लगता है तुम ये रोल ठीक से कर पाओगे। हालांकि उस वक्त बात ये हुई थी कि पापा को लग रहा था कि हीरो का रोल उन्हें मिलेगा, जो कि ओमपुरी जी को मिला था, क्योंकि इंस्पेक्टर हैंड्स अप में उन्होंने इंस्पेक्टर किया था और ये रामा शेट्टी का रोल इन्हें ऑफर किया गया था। तो उन्होंने तेंदुलकर साहब से पूछा था पर मुझे तो लगा था मैं इंस्पेक्टर का रोल करूंगा, तो उन्होंने कहा था तुम बस जो तुम्हें काम दिया है वो ठीक से करो, तुम विलन हो या हीरो हो दैट डज नॉट मैटर, ये फिल्म के आखिर में तुम याद रहने वाले हो लोगों को, ये भूलना मत। तो वो पापा ने सुनी उनकी बात और ही इज वेयर ही रीच्ड।
1: बिल्कुल बिल्कुल। एक कलाकार की ताकत ये है कि कितना छोटा रोल क्यों ना हो अपनी मौजूदगी अपनी आमद को कैसे साबित किया जा सकता है, उसकी मिसाल है अर्धसत्य। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसे बहुत कम मिसालें मिलती हैं जहां कुछ दृश्यों में अभिनेता ने अपनी वो छाप छोड़ी के इतिहास रच दिया। लेकिन ये उनकी पहली फिल्म नहीं थी,
0: नहीं थी।
1: तो पहली फिल्म जो नचिकेत और जयू वाली थी वो

0: कलाकार एक समय पे एक ही फिल्म करते हैं तो इसलिए वो पूरी तरह से वैसे ड्रेस्ड अप होते हैं, वैसे नहीं हुआ करता था। उस वक्त दो दिन इस फिल्म का शूटिंग हुआ, फिर दो दिन उस फिल्म का हुआ, इस तरह से चलता था। तो किसी भी रोल के लिए पूरी तरह से बाल निकालना या ये पॉसिबल नहीं था। पर मुझे याद है कि जब उन्हें ब्रेक था एक महीने का, तब पापा ने जो कोर्ट सीन्स थे स्पेशली उसके लिए ये निकाले थे, बिकॉज अमाल जी ने उन्हें कहा था कि देखो कोर्ट सीन में जब लाइटिंग होती है तो विग बहुत बुरा दिखता है। एग्जैक्टली तो इसलिए उन्होंने उस समय बाल निकालकर, और बाकी की फिल्मों में अगर आप देखोगे उस समय में जो शूटिंग हुए थे उसमें पापा ने विग्स पहने हुए हैं।
1: ओके, हाँ, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था।
0: एग्जैक्टली, पर उस समय कलाकार ऐसा नहीं करते थे, वो मैं बताना चाहती हूं। तो ही वॉज वेरी वेरी इन्वॉल्व्ड इन द स्क्रिप्ट, और उस समय तक पापा का जो रीडिंग था, पापा ही वॉज अ वोरेशियस रीडर, मतलब रोज वो 2-3 घंटा तो पढ़ना तो बनता ही है, किताबें पढ़ना उनका एक जरिया था। तो तब तक उन्होंने जो इतिहास के बारे में पढ़ा था, आई थिंक उसकी वजह से भी उन्हें वो करते वक्त, वो एक्टिंग करते वक्त बहुत मजा आया था, इसीलिए शायद वो उनका फेवरेट ये है कि मैं अभी प्रूव करूंगा। और वैसा लोकमान्य तिलक बाद में, हालांकि बहुत लोगों ने कोशिश की, पर जैसा राजश्री स्वराज तक में है वैसा लोकमान्य तिलक आज तक हो नहीं पाया है, वैसा लिखा भी नहीं गया है उस तरह से। तो आई थिंक इसलिए वो उनका बहुत फेवरेट कैरेक्टर रहा है।
1: दिलचस्प बात यह है कि इस सीरीज को आज भी लोग खोज खोज कर देखते हैं। हाँ? और दूरदर्शन के आर्काइव्स पर ये अभी भी देखा जा सकता है, खोज कर अगर आप देखें। हाँ? तो वेव्स पर शायद ये अभी भी उपलब्ध है।
0: तो वेव्स पर ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी है जो श्याम बाबू ने डायरेक्ट की थी।
1: उसका जिक्र करने से पहले यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बताइए कि कौन सा गाना यहाँ आना चाहिए।
0: पर तो मुझे ऐसे लगता है कि एक गाना है जो बिल्कुल पापा की जो सोच थी उनके समाज के प्रति, उनके देश के प्रति, वो बहुत ही सुंदर तरीके से जिस गाने में आई है वो था राजी फिल्म का, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू।
1: क्या बात है, गुलजार साहब के बोल।
0: ऑफ कोर्स
1: सुनते हैं ये गाना।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। बातचीत की श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना भी काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: FM बैंड 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। इस समय सुबह के 11 बजे हैं। लीजिए सुनिए ये जरूरी संदेश।
1: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।

0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित
2: FM बैंड 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है। इस समय सुबह के 11:01 हुए हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले प्रसारण।

FM-band 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। लीजिए सुनिए पीपुल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत श्री रबीलाल टूडू से बातचीत।

0: ऑन आकाशवाणी।
1: प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं प्रसिद्ध संथाली साहित्यकार रबीलाल टुड्डू के साथ विशेष बातचीत। तनुश्री बंदोपाध्याय के विशेष योगदान के साथ संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध संथाली रचनाकार रबीलाल टुड्डू जी। 77 वर्षीय श्री टुड्डू को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इस वर्ष पद्मश्री से अलंकृत किया जा रहा है। उनकी रचनाएं न केवल साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध हैं, बल्कि इन्होंने सामाजिक जागरूकता और सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूती दी है। आइए आज उनसे बातचीत में जानते हैं उनके लेखन की प्रेरणा और उनके साहित्यिक सफर के बारे में। टुड्डू जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
3: नमस्ते।
2: आपको देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से अलंकृत किया जा रहा है, ये जानकर आपको कैसा लग रहा है?
3: ऐसे तो अच्छा ही लगता है, ये तो खूबी आनंद का बात है। बहुत सा मिला है इसका पहले, लेकिन ये तो नेशनल अवार्ड है ना, इसलिए ज्यादा खुश है। हम परिवार का स्वागत में खुश है।
2: आपका साहित्यिक लेखन अत्यंत विस्तृत और प्रभावशाली है। आपकी एक रचना है परसी खतीर, जिसके लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, इस रचना के बारे में हमें बताएं।
3: किताब एक ड्रामा का है, परसी खतीर। परसी खतीर के लिए ही सब कुछ मिल रहा है। वो तो एक हमारा जो भाषा के लिए आंदोलन था, भाषा स्वीकृति के लिए, जो 8वां तफसील में हमारा भाषा का स्वीकृति मिला है, ये भाषा आंदोलन का जो हिस्ट्री था वही हम ड्रामा का रूप में लिखा है। इसमें सोशल मैसेज भी है और जो लड़ाई का था उसका भी एक नाट्य रूप है, रोमांटिक भी है और भाषा आंदोलन का बाद भी उसी में है। इसलिए शायद हम लोगों का जो सिलेक्टर है अवार्ड का, वो चुन लिया है और डिक्लेयर भी हो गया पद्मश्री अवार्ड के लिए। हम बहुत खुश है।
2: आपकी इस कृति का मुख्य विषय और संदेश क्या रहा?
3: देखिए, बिना लड़ाई से कुछ नहीं मिलता है। या हम लोग इतना साल लड़के आया था 8वां सूची में संविधान का, कम से कम संताली भाषा का स्वीकृति होना चाहिए। इसलिए बहुत साल से हम लोग लड़ाई करके बाद में जब डिक्लेयर हुआ, ये संताली भाषा 8वां तफसील में इंक्लूड हुआ, ये जो सक्सेस है ये एक हिस्टोरिकल लड़ाई था। ये लड़ाई हम रोमांटिक वे से भी कोशिश किया है प्रेजेंट करने के लिए, और लड़ाई का एक मीडिया है ये भी। ड्रामा एक लड़ाई का भी इंस्ट्रूमेंट है। ये दोनों मिलके बैठो सक्सेसफुल ये मिला है।
2: लेखन के प्रति आपकी रुचि कब से शुरू हुई?
3: वो तो स्कूल लाइफ से, हाई स्कूल में जब पढ़ता था उसी टाइम से हम शुरू किया है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग ड्रामा लिखा है, प्रेजेंट किया है, परफॉर्म किया है, ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए। जनरल पब्लिक तो वो पढ़ना नहीं आता जिसको, वो तो हम क्या लिखा है वो कैसे जानेगा। लेकिन ड्रामा सब आदमी का पास एक्सेप्टेबल है। वो जब स्टेज में परफॉर्म होता है पब्लिक का पास बहुत इफेक्ट होता है, इसलिए हम ड्रामा को प्रेफर करते हैं।
2: आपका स्कूली जीवन कैसा रहा और क्या लेखन में रुचि बढ़ाने में आपके शिक्षकों की भी भूमिका रही?
3: बांग्ला मीडियम हम लोग का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था, पढ़ाई का टाइम में बांग्ला में पढ़ता था हमारा। लेकिन बांग्ला हम लोगों का मातृभाषा नहीं है, मातृभाषा है संताली। तो हम लोग क्या किया था, ज़्यादा से ज़्यादा संताली

0: स्टूडेंट जो पक्षी का मापी के ये करता था, मीनिंग किसी को ठीक से पता नहीं था, लेकिन वो बोल बोल के पढ़ पढ़ के वो तो लिख देता था। हमारा भी ऐसा ही हैबिट था, जहाँ हम जो कुछ पढ़ा है हम टोटो नहीं लिखता है, आंसर पेपर में हम जो पढ़ा है वो टोटो नहीं लिख पाता है। हम क्या करता था, वो तो इसी का कंटेंट जो है वो अपना तरीके से हम लोग लिख देता था। इसी को हम लोगों का जो मास्टर लोग को है बहुत पसंद आता था, ये लड़का तो वो माने अपने आप लिख देता है, वो तो किसी को कंसल्ट नहीं करता है, नोटबुक या किताब तो नहीं कंसल्ट करता है। हम सिर्फ क्या प्रश्न है वो देख लिया और पढ़ा भी है, किताब में हम पढ़ा भी है। क्या करता था, जब लिखता था आंसर पेपर जब लिखता था उस टाइम हम अपना से लिख देता था, इसलिए टीचर लोगों का बहुत पसंद आता था। उस टाइम से हमको इंस्पिरेशन मिलता था टीचर का पास से, अब लिख के जाओ, तुम्हारा जो खुश मन में है तुम लिख के जाओ। ऐसा करते करते करते करते पब्लिक लाइफ में भी आगे हम लोग जाओ, पब्लिक भी हमारा जो लिखन है बहुत पसंद करता था। हम तो रिएक्शन लेता था, कैसा लगा है, कैसा ही है, वो बोलता ना हम बहुत अच्छा लिखा है। तब तक इंस्पिरेशन मिल गया, हम लिख के गया लिख के गया लिख के गया, ऐसा करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया। यही है हमारा असली फ्रॉम बिगिनिंग, ऐसा एकटा इंस्पिरेशन मिल गया।
1: आपने स्कूली शिक्षा कहाँ से प्राप्त की?
0: प्राइमरी गांव में ही है, नुआड़ा गोड़ा निम्न बुनियादी विद्यालय, उसका बाद हाई स्कूल बदला हाई स्कूल है, वहाँ से पास आउट होके हम कलना कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान, वहीं से प्योर साइंस लेके हम पास किया है। ऑनर्स नहीं मिला था उस टाइम, ऑनर्स मिलना बहुत टफ होता था, बहुत कंपटीशन होता था, तो हम तो ज़्यादा कॉम्पिटेंट उस टाइम नहीं था, इसलिए हम प्योर साइंस के लिए हम अप्लाई किया है, वही प्योर साइंस लेके ग्रेजुएशन किया है।
1: शिक्षा के बाद आपने अपनी नौकरी की शुरुआत कहाँ से की?
0: हम सर्विस के लिए बहुत से अप्लाई किया है, पहले हम मिला है एजी बंगाल में, अकाउंटेंट जनरल ऑफ वेस्ट बंगाल, वहीं से लोअर डिवीजन क्लर्क शुरू किया हम, चार साल बाद अपर डिवीजन का चांस आया, ऑडिटर पोस्ट के लिए चांस आया है, ऑडिटर भी हमको मिल गया, लेकिन एक साथ तीन चार नौकरी मिला है एक साथ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एजी बंगाल का ऑडिटरशिप एक साथ मिल गया सब। तो फर्स्ट वन इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हम वहीं ज्वाइन कर लिया, वहीं से प्रमोशन होके असिस्टेंट मैनेजर, उसका बाद फिर दूसरा अप्लाई नहीं किया है ये के लिए, हायर पोस्ट के लिए हम वही असिस्टेंट मैनेजर होके रिटायर्ड किया है, लास्ट में रिटायर्ड किया है उड़ीसा स्टेट से 2009 का दिसंबर में।
1: संथाली भाषा के प्रसार के लिए आपने बहुत काम किया है, आपके अनुसार मातृभाषा में शिक्षा क्यों आवश्यक है?
0: देखिए, जिसका मातृभाषा नहीं है उसका एडुकेशन भी नहीं होता है, दूसरा भाषा लेके आप एडुकेशन कितना दूर जाएंगे, ये तो संभव नहीं है, इसलिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सबको मातृभाषा से ही होना चाहिए, यही हमारा टारगेट भी था, लड़ाई भी था, काम भी ऐसा ही हम लोग करके आया है।
1: आगे भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं?
0: अभी तो रिटायर्ड कर गया, बुढ़ापे में क्या काम करेगा, प्रैक्टिकली तो काम ऐसा नहीं आएगा, फिर भी हम जितना दिन रहेंगे पब्लिक का साथ ऐसा ही इंटरेक्शन करेगा, लिख के पर्सनली कॉन्टेक्ट करके सोसाइटी के साथ तालमेल के काम करके जाएगा, जितना दिन हम जिएंगे इतना दिन काम करेंगे। और अभी जब एजेड हो गया हम लोग, जनरल पीपल को थोड़ा सा एडवाइस देने के लिए कुछ लिखेगा, कोई आदमी का एम्बिशन ऊंचा नहीं होने से ऊंचाई पे उड़ने नहीं सीखेगा से, इसलिए हर आदमी को एक तो एम्बिशन होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, हम क्या करके जाएंगे, हम क्या करेंगे, ये टारगेट होना जरूरी है, इसीलिए हम ऐसा मोटिवेशनल कुछ करके जाएंगे ये सोच रहे हैं, इतना

0: संभव होगा मालूम नहीं।
1: टूडू जी, संथाली भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समाज से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं?
0: संथाल समाज सबसे अभी देश में पिछड़े वर्ग है, तो ये संथाल समाज को कैसे डेवलप किया जाए, मोटिवेट कैसे किया जाए, यही टारगेट होना चाहिए। हम लोग तो पीछे पड़े हुए हैं, बहुत सा नेग्लिजेंसी है, बहुत सा ड्रॉबैक है, ये सब लेके के बहुत सा पीछे चल रहा है, तो कैसे आगे बढ़ना है।
1: आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: सजेशन तो जरूर होगा, पहले तो इसका आर्थिक स्थिति स्टेबल होना चाहिए, उसका बाद आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। आपका पास जो ही कोई सपना नहीं होगा, आपका इंस्पिरेशन नहीं आएगा, काम करने का ही इंस्पिरेशन नहीं आएगा। आपका पास कोई सपना होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। लेकिन हम बोलेगा आदमी को, पीपल को बोलेंगे, जैसा भी आपका ये स्थिति है उसमें से आपको आगे बढ़ना है, इसलिए आपको एक ठोस फिक्स टारगेट होना चाहिए, हम ये करेंगे। टारगेट नहीं ठीक होने से, एम ठीक नहीं होने से आप कुछ भी, आपका मेंटालिटी ऐसा तैयार नहीं होगा। इसलिए हर आदमी को एक तो टारगेट होना चाहिए, क्या हम लेखक बनेंगे, क्या हम आर्टिस्ट बनेंगे, क्या हम साइंटिस्ट बनेंगे, ऐसा टारगेट होना जरूरी है। हर आदमी को बचपन से यही टारगेट लेके चलना पड़ेगा, तब सक्सेस कुछ मिलेगा।
1: आपको कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है?
0: प्राइवेट अवार्ड भी मिला है, पहले मिला था, और जो बिरसा भगवान का एक तो ये है जीवनी, उसका नाट्य रूप हम दिया था वीर बिरसा, तो पहले पब्लिक अवार्ड मिला था पंडित रघुनाथ मुर्मू अवार्ड फ्रॉम जमशेदपुर टाटा सारजुंदा, वही शुरू हुआ हमारा सफर। उसका बाद मिला है हमारा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से बंगभूषण मिला था, उसका बाद मिला है साहित्य एकेडमी का, लास्ट में पद्मश्री मिला है।
1: टूडू जी, मोदी सरकार आने के बाद से पद्म पुरस्कारों की बात करें तो देश के कोने कोने से प्रतिभा को ढूंढ कर दिया जा रहा है, आपकी क्या राय है इस बारे में?
0: पहले तो बहुत सा बड़ा बड़ा आदमी को मिलता था, अभी तो गांव के भी आदमी को मिल रहा है, ए नेशनल अवार्ड पद्मश्री मिल रहा है, ये देख के तो हम लोगों का ये विश्वास आ रहा है। अभी गांव के भी कोई आदमी कुछ अच्छा काम करेगा और तो उसको मिलने का अवसर मिलेगा, यही अच्छा वाला बात है। हम तो ऐसा सरकार को पदक्षेप को हम जरूर धन्यवाद देंगे। ये गांव का साधारण आम आदमी का भी आप लोग अच्छा काम ढूंढ के निकालता है, ये अच्छा होता है।
1: टूडू जी, आपकी बातें हमें संदेश देती हैं कि अपनी मातृभाषा, संस्कृति और परंपरा पर गर्व करना ही हमारी असली पहचान है। साहित्य केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि समाज को दिशा देने का एक सशक्त माध्यम है। टूडू जी, अपने विचार हमसे साझा करने के लिए धन्यवाद।
0: नमस्ते।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी प्रसिद्ध संथाली साहित्यकार रबीलाल टूडू के साथ विशेष बातचीत। तनुश्री बंदोपाध्याय के विशेष योगदान के साथ संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा। इसे आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.eirnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
4: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। इस समय सुबह के 11:25 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती मुंबई केंद्र स्तरीय प्रसारण।

0: हम सुन रहे थे नगमा जिसके गायक और संगीतकार हैं ए हरिहरन और जिसके गीतकार मुमताज राशिद।
1: फराज की एक ताजा गजल पेश खिदमत है, ये गजल आपको जरा इस तक चल की याद दिलाएगी।

0: हम सुन रहे थे गीतकार अहमद फराज के बोलों से सजी हुई पंकज उदास के द्वारा गाई और उन्हीं के द्वारा संगीतबद्ध की गई इस गजल को। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
4: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम रंग तरंग में स्वागत है। आइए सुनते हैं एक और सुंदर सा नगमा कार्यक्रम रंग तरंग में, जिसे हमने चुना है सुलक्षणा पंडित गजल्स एल्बम से, जिसे गाया है सुलक्षणा पंडित ने। शाहबी अब्बास शाहदाबी ने इसे बोल दिए हैं और महेश चंदेल ने इसे संगीत

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं चित्रा सिंह जगजीत सिंह की आवाज में इस नगमे को, जिसे लिखा है सुदर्शन फकीर ने।

हम सुन रहे थे कार्यक्रम रंग तरंग का यह आखिरी नगमा, जिसे गाया भूपेंद्र ने और संगीतबद्ध किया भूपेंद्र ने ही, और शब्द हैं गुलजार के। कार्यक्रम रंग तरंग यहीं पर समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: दोपहर के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित तीन पोतों, दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
2: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
1: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। 25 घायल यात्रियों का उपचार जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया और घायलों के तेजी से स्वस्थ होने की कामना की। यूजीसी नेट जून की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया के विदेश मंत्री बी विदसिक से साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। कतर के प्रमुख प्राकृतिक गैस निर्यात ढांचे में हुए एक विस्फोट में 54 लोग घायल हो गए और 18 लोग लापता हैं। ये विस्फोट कल रात रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र में हुआ, जो दुनिया के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में शामिल है। खबरों के अनुसार क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़े व्यवधानों के बाद संयंत्र में परिचालन कार्य दोबारा शुरू करने का काम चल रहा था। फीफा विश्व कप में मिस्र ने आज सुबह वैंकुवर में न्यूजीलैंड पर 3-1 से जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने इस टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आज हमने यादें सजाई हैं गीतकार शैलेंद्र की कलम से निकले हुए बोलों के साथ, यानी उनके द्वारा लिखे गए गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह पहला गीत, जिसे लिया है फिल्म सीमा से। मन्ना डे की आवाज है, शैलेंद्र के बोल है और शंकर जयकिशन का है

सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में शैलेंद्र की कलम से निकले सुंदर गीतों का संयोजन आज हमने किया है, तो आइए सुनते हैं अगला गीत जो कि फिल्म आवाज है मुकेश की, और इसे लिया गया है फिल्म आवारा से। शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का है संगीत।

0: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। इस समय दोपहर के 12:15 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए ये जरूरी संदेश।
1: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित
0: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। लीजिए सुनिए विविध भारती मुंबई केंद्र से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अगला नगमा, जिसे लिखा है गीतकार शैलेंद्र ने, संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने, गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने, और फिल्म का नाम है श्री 420।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम यादों की महफिल में।

हम सुन रहे थे अनाड़ी फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए चलते सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल से। यह गीत है चोरी चोरी फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने। शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का है संगीत।

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल में आइए सुनते हैं अगला नगमा। मधुमती फिल्म से मुकेश की आवाज में शैलेंद्र

0: हम सुन रहे थे गाइड फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में शैलेंद्र के पोल और सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज यादों की महफिल हमने सजाई है गीतकार शैलेंद्र की गीतों के साथ में। आइए सुनते हैं परख फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र के बोल हैं और संगीतकार हैं सलिल चौधरी।
4: ओ, सजन

हम सुन रहे थे बरसात फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में, शैलेंद्र के बोल और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। आइए सुनते हैं

हम सुन रहे थे ये गीत मेरा नाम जोकर फिल्म से मुकेश की आवाज़ में शैलेंद्र के बोलों के साथ शंकर जी किशन का है संगीत। आप सुन रहे यादों की महफिल और यादों की महफिल का यह अंतिम गीत हमने आज याद किया गीतकार शैलेंद्र को आज यादों की महफिल के साथ। आज्ञा दीजिए कार्यक्रम यादों की महफिल से मुझे। नमस्कार।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। जोधपुर शहर के सरकारी पावटा जिला अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद तबीयत बिगड़ने वाली 8 प्रसूताओं में से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जयपुर में पत्रकारों को

0: बताया कि इनमें से 6 प्रसूताओं की स्थिति सामान्य है, वहीं एक को एम्स में भर्ती कराया गया है।
1: पावटा के अंदर 6 पेशेंट्स बिल्कुल नॉर्मल है, उनका यूरिन वगैरह ऑल पैरामीटर्स आर ओके। एक जो एम्स में रेफर कर रहे हैं वो हाईली डायबिटिक है, और एक प्रसूता जो एमडीएम में है उसके पीलिया हुआ है, उसको भी जो है हम परमिशन ले रहे हैं कि हम चांस क्यों ले, क्योंकि एम्स की फैसिलिटीज जो है वो एक अलग लेवल की फैसिलिटीज होती है।
0: ये मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने संबंधित ऑपरेशन थिएटर को सीज कर दिया है। संक्रमण के कारणों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन थिएटर में उपयोग किए गए उपकरणों, दवाओं और अन्य व्यवस्थाओं की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अपार सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन को पूरी तरह शांत रखने का साधन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन को शांत करना और श्वास प्रवाह को नियमित करना इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की तीव्र गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रेंट क्रूड की कीमत प्रति बैरल में 2% से अधिक की गिरावट के साथ लगभग $89 पर आ गई। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में जैसलमेर से गिरफ्तार मुश्ताक अली को आज जयपुर की एक अदालत ने 3 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया है। 5 दिन की रिमांड पूरी होने पर आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस ने कॉल डिटेल और बैंक खातों की विस्तृत जांच के लिए अदालत से रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। पुलिस के अनुसार मुश्ताक पिछले 2 साल से पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था और खुफिया जानकारी पाकिस्तानी एजेंटों के साथ साझा करता था। प्रदेश में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष यातायात अभियान के तहत 1,37,000 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की गई है। 4 से 20 जून तक चले इस अभियान में सबसे ज्यादा शिकंजा अवैध काली फिल्म वाले वाहनों पर कसा गया। इसके तहत 51,000 से अधिक वाहनों में काली फिल्म हटवाई गई। साथ ही नियम विरुद्ध नंबर प्लेट, अनाधिकृत चिन्ह, लाल बत्ती, नीली बत्ती, प्रेशर हॉर्न के मामलों में भी सख्त कार्रवाई की गई। यातायात महानिदेशक अनिल पालीवाल ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य चालान काटना नहीं बल्कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है। जिलेवार कार्रवाई में जयपुर पश्चिम सबसे अव्वल रहा। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच आमजन को पेयजल संकट से राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार के विशेष अभियानों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा चलाए गए 9 अभियानों के तहत 24,000 से अधिक पेयजल समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया है। 5 अप्रैल से 20 जून तक चले इन अभियानों में 5,000 से अधिक खराब हैंडपंपों की मरम्मत, पाइप लीकेज दुरुस्त करने और बाधित जलापूर्ति बहाल करने सहित लाखों लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई गई है। पिछले सप्ताह इस अभियान के दौरान एक दिन में 2,385 पेयजल समस्याओं का निस्तारण किया गया। प्रदेश में मौसम के मिजाज में बदलाव का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं कहीं मेघ गर्जन के झांकेदार हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। सबसे अधिक 26 मिलीमीटर बारिश झुंझुनू और सीकर के रामगढ़ में दर्ज की गई। वहीं सर्वाधिक अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस तापमान श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान जोधपुर में 30.7 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा अलवर, पिलानी और सीकर में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 17 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

हम सुन रहे थे गीत फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मजरूह के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ में। हमने आपसे बात करी और हमने पूछा कि ये किस फिल्म का गीत है, तो हमारे श्रोताओं ने बहुत सही उत्तर दिया। हमारे एक श्रोता ने उत्तर भी बड़े अच्छे तरीके से दिया कि फिल्म का टाइटल गीत है। मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, संगीतकार ओपी नैयर जी। बिल्कुल सही बात है, इसमें आशा भोसले की जी की आवाज़ नहीं थी, तो हमने इस गीत को सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। चलिए अब हम चलते हैं आगे की जो बातें आपके साथ में चल रही थी उन बातों की तरफ। और हमारे श्रोता लिखते बहुत अच्छा है, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि शायरियाँ तो मुझे याद नहीं, पर मैंने फिल्म देखी थी मीना कुमारी और दिलीप कुमार की यहूदी, उसमें काफ़ी बड़े चुनिंदा और अच्छे शायर थे, शेर थे, तो जो मुझे याद तो कम है पर बहुत अच्छे शेर थे। फिल्म देखने के बाद वो शेर मैंने अपनी डायरी में भी नोट किए हुए हैं। ये कितनी अच्छी आदत है ना कि जो कुछ अच्छा लगे उसे अपने पास लिख लें, तो आज नहीं कभी ना कभी तो काम आता ही है। बहुत अच्छा किया आपने उन्हें अपने पास लिखकर। और हमारे श्रोताओं से हमने पूछा कि कोई शायर या कोई शेर या कोई शायरी अगर आपको पसंद है तो वो आप हमारे साथ साझा करें, परंतु अगर वह फिल्मों में उपयोग की गई है तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमारे श्रोता लिखते हैं, हालांकि उनका प्रसिद्ध गज़ल का एक हिस्सा, दुष्यंत कुमार की गज़ल का यह हिस्सा जो है वह उन्हें बड़ा पसंद है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन

आग जलनी चाहिए। कितना बढ़िया कहा आपने। और ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने, अन्य कई श्रोताओं ने भी बहुत बढ़िया लिखा। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि हमारी आवाज़ आप तक, आपकी आवाज़ हमारी आवाज़ मिल रही है, सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें मिर्ज़ा गालिब का शेर याद है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे शेर और बहुत अच्छे दिल के जज्बात ये लोग लिख देते हैं और ऐसा लगता है कि हमारे लिए ही लिख दिया गया है। ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने, कई सारे श्रोताओं ने कई सारे अन्य शेरों के बारे में भी लिखा है, शायरियों के बारे में भी लिखा है, परंतु अगली जो पंक्ति है इबारत से वह ये है कि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती। अब फिल्म तो आप पहचान ही चुके हैं क्योंकि ये तो हम सबको याद है। इस पर हमारे श्रोताओं ने लिखा है, तन्हाई पर एक छोटी सी बात, तन्हाई में बिताए हुए कुछ पल कभी कभी पूरी महफिल से ज़्यादा याद रह जाते हैं क्योंकि वहाँ हम दुनिया से नहीं अपने दिल से बात कर रहे होते हैं। बहुत गंभीर बात लिखी है आपने। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, तन्हाई का अपना एक अलग संगीत होता है, जब आसपास कोई नहीं होता तब यादें धीरे से आकर दिल में बैठ जाती हैं, कुछ मुस्कुराती हैं, कुछ आंखें नम कर जाती हैं, कुछ हमें खुद से मिलवा जाती हैं। तो तन्हाई वो आईना है जिसमें हम दुनिया को नहीं खुद को देखते हैं। भीड़ में जो बातें सुनाई नहीं देती वे अक्सर तन्हाई की खामोशी में साफ सुनाई दी जाती हैं। तन्हाई बुरी नहीं होती, बस उससे यादों का साथ हो तो वह खामोशी भी बहुत प्यारी लगने लगती है। क्या उम्दा बात लिखते हैं, क्या बढ़िया बात आप लिखते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि जाने किस लिए उम्मीदवार पर बैठा हूँ, एक ऐसी राह पे जो तेरी रह गुजर भी नहीं। वाह, बढ़िया शेर आपने पेश किया है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि कुछ और शेर हैं जो अर्ज़ कर रहे हैं, उनमें से मैं एक दो शेर पढ़ देती हूँ। उन्होंने लिखा कि बेवक्त बेवजह बेसबब सी बेरुखी तेरी, फिर भी बेइंतहा तुझे चाहने की बेबसी मेरी। वाह, बहुत बढ़िया। हमारे उन्हीं श्रोता ने एक और लिखा है कि कुछ एहसास मेरे हमारे जीवन में बारिश की तरह आता है, हथेलियाँ तो भीग जाती हैं मगर हाथ खाली रह जाते हैं। बढ़िया शेर लिख रहे हैं। हमारे एक और शेर, हमारे लिए एक बड़ा प्यारा सा शेर आया है कि बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते तमन्ना का खूं हो गया। आते आते आपके शेरों के जवाब में एक और शेर उन्होंने हमें पहुंचाया है और ऐसे ही कई सारे शेर हमारे बीच में आए हैं, तो ये जो बात है वो आप भेजते रहिए। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा है। थैंक यू। तेरे प्यार की तमन्ना गुमाए जिंदगी के सया अबदी, तेज आंधियाँ ये चिराग बुझ न जाए। आप जब रोमन में लिखते हैं तो पढ़ने में थोड़ी समस्या होती है, प्रयास करें कि देवनागरी में लिखें तो अच्छा होगा, परंतु फिर भी बढ़िया है आप जो लिख रहे हैं, आप जो हमसे जुड़ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे उस प्यारे से गीत की तरफ जिसे हमने आपके लिए सजाया है इस फिल्म से। अच्छा, आप बस इतना बता दीजिएगा कि इस गीत के संगीतकार कौन है और ये जो शेर है, ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों का क्या अर्थ आपको समझ आता है।

सिलसिला फिल्म का यकीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में जावेद अख्तर की बोल, और हमारे श्रोता ने बिल्कुल सही पहचाना कि इसके संगीतकार हैं शिव हरि यानी शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। और इस प्यारे से गीत को हम सुन रहे थे, और इसके बाद जब अगली शायरी करने की बात आती है तो मैं आपको पहले ही एक प्रश्न दे दे रही हूँ। वो प्रश्न ये है कि कभी किसी अपने को, यानी हो सकता है वो आपके प्रेयस हो, प्रेयसी हो, पति हो या पत्नी हो, कोई इतना इतने दिल के करीब जो होता है उसको कभी कोई शायरी तो सुनाई होगी। कौन सी शायरी सुनाई है वह ज़रूर साझा कीजिएगा। हो सकता है वह आपके जीवन की पहली शायरी हो या फिर आपकी खुद की लिखी कोई शायरी हो, वो शायरी ज़रूर हमारे साथ साझा कीजिए, क्योंकि आपके दिल की बात कहना भी बनता है ना। तो अपनी पत्नी, पति, प्रेयसी, प्रेयस, किसी के लिए कोई शायरी या कोई कविता की कुछ चंद चार पंक्तियाँ कही हो तो हमारे साथ साझा कीजिएगा। और अब हम अगली शायरी की तरफ बढ़ेंगे, पर उसके पहले हमारे श्रोताओं ने कुछ लिख भेजा है, वो आपके साथ साझा करती हूँ कि मुझे गुलजार की वो शायरी पसंद है, समझने को कठिन है लेकिन अच्छी लगती है, कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन,

बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए जाड़ों की नरम धूम और आंगन में लेट आँखों पे खींच कर तेरे आँचल के साए ओंधे पड़े रहे कभी करवट लिए हुए। बहुत बढ़िया पंक्तियाँ हैं ये। इसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है, सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद बदल सको तो चलो। बहुत बढ़िया। हमारे एक और श्रोता ने शायरी लिखी, तन्हाई में खामोशी ही जवाब बन जाती है, वो ना रहकर भी हम सफ़र बन जाती है। मशहूर शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी के कई सारे शेर इन्हें पसंद हैं। उनमें से इन्होंने लिखा है, गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। और उन्होंने कभी कभी फिल्म के इस शेर को भी लिखा कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। अच्छा, इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि हर ख्वाहिश को जुनून ना बनाए, ज़िंदगी में बहुत कुछ हमारे लिए नहीं होता। जी बिल्कुल सही, आपने बहुत बढ़िया शेरों को हमारे साथ साझा किया और भी लोगों ने किया है जो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पर हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है नीट की परीक्षा हो रही है, तो नीट की परीक्षा को सरल करने के लिए हमने आपको ये प्रश्न दिया है कि पहला शेर, पहली शायरी अपने प्रेयस प्रेयसी पति पत्नी महबूब के लिए कब पढ़ी थी, तो और कौन सी पढ़ी थी वो ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं हम अगले नगमे की तरफ, जिसे हमने आपके साथ जो शायरी साझा की है इबारत में, वो ये है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। और इसके आपने पहचान लिया कि फिल्म कभी कभी से है, बहुत बढ़िया बात है। बस बताइएगा कि इसके संगीतकार कौन है, संगीतकार का नाम बताइए और सुनिए ये गीत।

0: बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल

0: गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सुरीला सफ़र, और इस सुरीला सफ़र में हम आपके साथ बहुत सारी बातें कर रहे हैं शेर और शायरी के बारे में, और आप बड़े अच्छा अच्छा लिखते जा रहे हैं हमारे बीच में। तो हमारे श्रोता ने बताया है कि उन्हें शेर और शायरी की बात हो रही है, तो जिन गाने से शुरू में शेर हो ऐसे गीत होने चाहिए थे। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे श्रोता ने एक जहाँआरा का तलत जी तलत का गाया हुआ ये गीत उन्होंने लिखा है कि तेरी आँख के आंसू पी जाऊँ ऐसी मेरी तकदीर कहाँ। गाने के पहले भी शेर है और आगे उनको पंक्ति याद नहीं आ रही है। बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बहुत बढ़िया बात है, ऐसे शेर हमारे बीच में आते जा रहे हैं। हमारे साथ में एक और हमारे श्रोता ने लिखा कि हमारी सगाई के बाद पारिवारिक फंक्शन में होने वाली धर्मपत्नी से मिलना हुआ अजमेर में, तो उन्होंने कहा कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, और आशा करती हूँ ये प्यार आपका सदा बना रहे। और इसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है कि बस हमको ऐसी महफिल मिल जाए तो हम लंच का भी दरकिनार कर सकते हैं। जी, हमारी श्रोता लिख रही है कि अगर देवनागरी में लिखेंगी तो हम तक पहुंच नहीं पाएगा। रोमन में लिख रही, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पहुंच जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और वह लिखती है कि मेरे पति को शायरी समझ में नहीं आती तो उन्हें इंग्लिश में बोलती हूँ, यू आर माई फेवरेट वेस्ट ऑफ टाइम। और वो बहुत खुश होते हैं। क्या बात है, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं, सबसे अच्छा समय गुजारते हैं ना हम इन लोगों के साथ में। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि पत्नी को प्रेम निवेदन में कही थी कि तनकी सुराही में यौवन का हाल, यौवन की हाला, चितवन में मधोशी अंगों में ज्वाला, छल छल छल के यूं का प्याला, गोरी तू लागे है पूरी मधुशाला। धन्यवाद, बहुत बढ़िया पंक्तियाँ आपने कही हैं। इसके साथ हमारे श्रोता ने लिखे हैं कि कई सारे शायर जो हैं वो लिखते हैं बड़े प्यार से। हमारे श्रोता ने लिखा है कि उनकी फेवरेट है कि सपने चरे फूल से, मीत चुबे शूल से, और हम खड़े खड़े गुबार देखते रह गए, कारमा गुजर गया और हम गुबार। क्या बात है, जॉन एलिया की पंक्तियाँ ये लिखते हैं कि क्या तकल्लुफ़ करें या कहने में कि जो भी खुश हैं हम उनसे जलते हैं, यूँ जो तकता है आसमान को तू कोई रहता है आसमान में क्या। ऐसी बात है, हमारे श्रोता ने बहुत बढ़िया शायरी बनाई है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है ऐ विविध भारती, तुझे बनाया गया है मेरे लिए, हम सभी के लिए। जी बिल्कुल, ये विविध भारती हम सभी के लिए ही बनाई गई है। शेर व शायरी दिल बहलाने का जरिया है साहब, लफ्ज़ कागज़ पर उतारने से महबूब नहीं लौटा करते। बड़ी प्यारी सी बात कह दी आपने। और चलिए अब हम जल्दी से हमारे ना अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं, और जो हम बात कर रहे थे आपसे कि हमारी जो अगली शायरी है, अभी हम बड़ा प्यारा सा ये गीत सुनकर निकले हैं कभी कभी फिल्म का, और अगली शायरी की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे एक और श्रोता ने श्रोता की बात को हम थोड़ी देर बाद करते हैं। हम ये शायरी आपको बता देते हैं कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना अच्छा है। ये शायरी हमारे बीच में है, फिल्म से ली गई है, और आपसे हमने पूछा कि हो सकता है कि कोई बड़ी देशभक्ति की पंक्तियाँ या बड़ी शौर्यवीरता की पंक्तियाँ, कोई पंक्ति जो शेर में हो, कविता में हो, या फिर शायरी में हो, तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन तब तक हम आपको ये बता दें, हमारे श्रोता ने उसका एक उत्तर भेजा है कि मैं तूफ़ानों में चलने का आदि हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। गोपाल दास नीरज की ये पंक्तियाँ, बिल्कुल सही बात है। चलिए ये गीत हम आपको सुना रहे हैं, और इस गीत की गायिका को पहचानिए, बहुत आसान है इस आवाज़ को पहचानना क्योंकि आप बराबर इन्हें सुनते रहते हैं। गायिका की आवाज़ को पहचानिए और पहुँचते हैं आपके अगली बात की तरफ कि आपको कुछ देशभक्ति से भरा या फिर कोई वीर रस से भरा हो, कोई शेर शायरी या कविता, कुछ पंक्तियां हम तक साझा करें।

हम सुन रहे थे उमराव जान फिल्म से यह गीत, सहरियार के बोल खयाम का संगीत। और आप सबसे पूछा था कि आवाज़ किसकी है, तो आप सबने सही पहचाना, सुमधुर आवाज़ आशा भोसले की है, बिल्कुल सही। और अब हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है, उनको हम साझा करते हैं। कि हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, उन लोगों की कमी नहीं शाख पर, ये शेर थोड़ा सा कुछ अलग है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक उल्लू काफ़ी है, हर शाख पर उल्लू बैठा है अनजान।

गुलिस्तां क्या होगा, कुछ शेर इस तरह का है जो आप कहना चाह रहे हैं। उसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है कि शबे फिराक उठे दिल में और भी कुछ दर्द, मैं कैसे कह दूं तेरी याद रात भर आई, क्या बात है। हमारे को श्रोता ने लिखा है कि उनके जीवन साथी का जन्मदिन 71वां जन्मदिन था और सीनियर सिटीजन उसी दिन पिकनिक पर गए थे दोस्तों के अनुरोध पर। तुम्हें और क्या दूं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाइए, हसरत जयपुरी की पंक्तियाँ बोल दी थी, बिल्कुल सही है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि वह भी अपनी पत्नी से बहुत उनकी समझदारी से प्रेरित हैं और वह उनका सदा साथ देती हैं और उनके जीवन के मंगलमय की प्रार्थना वो कर रहे हैं और हम भी आप सभी के जीवन की मंगल की कामना करते हैं, ऐसे ही साथ बना रहे। हमारे श्रोताओं से हमने पूछा कि आप बढ़िया कोई ज़बरदस्त सी बड़ी ज़ोरदार सी कोई बढ़िया सी शायरी दीजिए जो देशभक्ति की बात हो या वीरस की बात हो। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बिल्कुल बहुत प्रोत्साहन देने वाला शेर है और आपने भी यही बात लिखी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उनके शहर में आग बरस रही है, इस पर लिखते हैं समय दिल शायरा न होने के बजाय दिल गर्मी से जल रहा है। अरे बारिश हो जाएगी, चिंता मत कीजिए, बस समय की बात है, अपने समय से सब कुछ आ जाता है। और हमारे श्रोता ने लिखा, इश्क का नमक की मोहब्बत की चाशनी में तेरी हम डूब रहे, मेरे प्रेम कहानी का रशाई मोहब्बत। अच्छा, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं उनकी मोहब्बत भी कमाल की होती है जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता। जी बहुत बढ़िया होता है ये प्रेम भी। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारे। शेर हमारे एक ये पंक्ति हमारे एक बड़े प्यारे से श्रोता ने लिखी है दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों को। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, रण बीच चौकड़ी भर भर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। देखिए हमारे देश में हाथी का नाम राम सिंह है, चेतक का नाम, घोड़े का नाम चेतक, और इनमें भी वही देशभक्ति है जो एक देशभक्त में, एक देशभक्त राजा में है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की खूब लड़ी मर्दानी वो तो, जी वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, ये पंक्तियाँ उन्हें पसंद है। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर की, क्षमा दया त्याग तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कब कहाँ कब हारा, सच पूछो तो शेर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की है। बिल्कुल सही, बलिदान और पराक्रम जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसदार नहीं वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें सुदेश से प्यार नहीं। मेरे श्रोता लिख रही हैं कि कैसे लोग इतनी छोटी छोटी सी बातों को, गहरी बातों को लिख देते हैं। वो शेरो शायरी की बात के बारे में कह रही हैं कि मैं तो हैरान रह जाती हूँ, यही काम कवियत्रियों ने भी करा है कि कबीर के दोहे, बिहारी के दोहे, रहीम के दोहे, कितनी सुंदर बातें जीवन का ज्ञान दे जाते हैं, मैं तो मुग्ध हो जाती हूँ उनको पढ़कर, क्या कला है इन सब में। बिल्कुल सही है। और अब हम जल्दी से अगले गीत की तरफ बढ़ें, और अब अगले गीत की तरफ बढ़ते हुए अगला जो शेर है वो हम आपके साथ में साझा कर लेते हैं कि जो अगला गीत हम आपको पहुंचाने वाले हैं, देने वाले हैं, वो अगला गीत बड़ा खूबसूरत सा है, बड़ा प्यारा सा है। इस गीत के लिए आपको बताना है कि ये पंक्तियाँ जो हैं ये गाई किसने हैं, यानी गायक कलाकारों के नाम बता दीजिएगा। और हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले, ये हमने अपनी इबारत में साझा किया है। आप अपनी शायरियाँ देशभक्ति से भरी अगर कुछ है तो भेजते जाइएगा और सुनिए ये।

मिर्ज़ा गालिब की इन पंक्तियों को मिर्ज़ा गालिब फिल्म से ही हम सुन रहे थे। ग़ुलाम मोहम्मद ने इन्हें संगीत दिया और गाया है, जिनके बारे में हमने आपसे पूछा था कि गायक कलाकार कौन है, तो सुरैया और तलत महमूद, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। और चलिए चलते हैं अगले गीत की तरफ, और हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि अगर कोई भी शेर शायरी आपको पसंद आती है तो हम तक पहुंचाते जाइएगा। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे इसकी यह लाइन पसंद है कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है, और जान पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता वफा क्या है। बहुत बढ़िया बात है, ऐसी बहुत सुंदर पंक्तियाँ लोग लिख देते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, मिट्टी की खुशबू से महके मेरा हर अरमान, भारत की शान में बसता है मेरा सम्मान, जब तक धड़कन चलती है सीने में यारो, तिरंगे पर नाज रहेगा यही मेरी पहचान। बिल्कुल सही बात है, वतन की धूल भी आँखों में सुरमा लगाती है, ये धरती की माँ की गोद की गर्माहट रखती है, हमारा सिर हमेशा झुका रहे इसके सम्मान में, यही दुआएं सच्चे हिंदुस्तानी के दिल में रहती हैं। बढ़िया बात लिखते हैं आप। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने जो बढ़िया सी लिखी है कि असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी, अराति सैन्य सिंधु में सुवाडनी से जलो, प्रवीर हो जाए जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ ये लिख रहे हैं कि आदमी को खुदा मत कहो, आदम खुदा आदमी खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदमी जुदा नहीं। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता बहुत अच्छे से बात कहते हैं और लिखते हैं कि उन्हें एक कविता बचपन से पसंद है, और कविता का वो कहते हैं सिंहासन हिल उठे वाली जो कविता उन्हें पसंद है, उसके बारे में जिक्र किया है। एक बड़ी मज़ेदार सी कविता आई है, शीशी भरी गुलाब की पत्थर पर तोड़ दूँ, तेरी गली ना छोड़ूं, दुनिया में छोड़ दूं। और ये शायरी हम सब बचपन में बहुत पढ़ा करते थे, शायद याद हो आपको। दिन बीत जाते हैं कहानी बनकर, यादें रह जाती हैं निशानी बनकर, पर रिश्ते हमेशा रहते हैं, कभी होंठ पर मुस्कान बनकर तो कभी आंखों में पानी बनकर। बहुत बढ़िया। हमारे श्रोता ने एक कविता खुद ने शायद ये स्वयं ने लिखी है या उन्होंने भेजी है, वो लिखती है, मानवता भट गई ये युद्ध के ऊपर ये कविता लिखती हैं, और अंतिम पंक्तियां मैं पढ़ देती हूँ, बस करो अब ये युद्ध बन जाओ सारे बुद्ध, सारी सरहदों में शांति से रहो, ना किसी की आंखों में आंसू भरो। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर, तुम भी किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जी बिल्कुल। और इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुँह ढक के सोइए। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। एक बार कहते हैं, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि एक बार किसी को उन्होंने शायरी कही थी, वो किसी कौन है हम आप समझ सकते हैं, पर वो पलटकर उर्दू शब्दों का अर्थ ही पूछने लग गई। आप हिंदी में शायरी कह देते, हिंदी में भी कई सारी शायरियाँ बनाई गई हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं, वतन की आबरू पर आबरू का पास देखें कौन करता है, सुना है

आज मक्तल में हमारा इंतहा होगा। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे कि जब बिस्मिल ज़मी अपनी और अपना आसमां होगा। जी बिल्कुल सही, ऐसे बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी जा रही हैं और बहुत खूबसूरत लिखते हैं, जो गए हैं वही तो लौटते हैं, जो गए ही नहीं वो क्या खाक लौटेंगे। क्या बड़ी बड़ी बातें आज पढ़ने में आ रही हैं, हमारे शायर निकल रहे हैं सारे श्रोताओं के हृदय से। तो मैं आप सबके शायरों को प्रणाम करती हूँ और अगला जो नगमा है, अगली जो शायरी है वो आपको भेंट करती हूँ, और वो भेंट

शायर निकल रहे हैं सारे श्रोताओं के हृदय से, तो मैं आप सबके शायरों को प्रणाम करती हूँ और अगला जो नगमा है, अगली जो शायरी है वो आपको भेंट करती हूँ। और वो भेंट है कि हमको मालूम है कि जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। अब ये शोर फिल्म का शेर है, हो सकता है किसी और फिल्म में भी इसे उपयोग किया गया हो, तो ज़रूर सुनिए और बताइए कि ये गीत आपको कैसा लगता है। और संतोष आनंद की अगर कोई पंक्ति आपको पसंद आती है इसके अलावा, तो ज़रूर हमारे साथ साझा कीजिएगा।

एक प्यार का नगमा है शोर फिल्म से हम सुन रहे थे लता मंगेशकर मुकेश और साथियों की आवाज़ में, संतोष आनंद के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। और हमारे श्रोताओं से हमने पूछा कि बहुत सारी बातें उनसे पूछी और उसमें एक पूछा था कि जीवन दर्शन को छू लेने वाला ये बहुत प्यारा गीत है, ऐसा उन्होंने कहा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि यूं लगने लगी आजकल जिंदगानी की छोड़ आए कहीं अपनी जवानी, कहीं एक संतोष होता था शायर, गज़ल बन गई है दर्द की राजधानी। ये वो लिखते हैं संतोष आनंद की, संतोष आनंद की संतोष फिल्म का ये गीत उन्हें पसंद है। और हमारे कई सारे श्रोताओं ने इस गीत को बहुत पसंद किया है और हमारे श्रोताओं ने शायरियों को भी बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया है, यानी समझाया है, उनको बहुत खूबसूरती के साथ बताया है, उसके लिए भी धन्यवाद। हमारे श्रोता लिखते हैं, तुम साथ ना दो मेरा चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ जलना मुझे आता है, तदबीर के हाथों से तकदीर बनानी है, जिंदगी और कुछ नहीं तेरी मेरी कहानी है। हाँ, इस बात को, इस इन शब्दों को रिकॉर्ड नहीं किया गया, परंतु ये उसके वर्जन में थे, उस गाने में थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि संतोष आनंद के साइड वर्जन वाला इस गीत का उन्हें पसंद है कि जो दिल को तसल्ली दे वह साज उठा लो, दम घुटने से पहले आवाज़ उठा लो। जी, बहुत बढ़िया बात और बहुत प्यारा सुरीला सफ़र आप सबके साथ रहा, उसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद। और आप सबका जीवन मंगलमय हो, सुख हो, शांति हो, कल्याण हो, बस यही प्रार्थना करते हैं। आप सबके लिए नमस्कार।

0: भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में 2 प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय अनुशासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन 5,000 रुपए बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है। संदीपन दासगुप्ता के साथ काश्मीर नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
0: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल, BJD और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज CISF के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में

0: उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की चार दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में यह समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज शाम दो दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है।

ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: थोड़ा आने लगा मजा बाहर का।
1: हम सुन रहे थे ये गीत जबक फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ में प्रेम धवन के बोल और चित्रगुप्त के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, और आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
3: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
2: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
5: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
4: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
6: एक टुकड़ा धूप का।
4: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
5: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
4: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सदाबहार नगमे कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम में ये सुंदर सा गीत जिसे हमने चुना है ससुराल फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज़ है, हसरत जयपुरी के हैं बोल और संगीतकार

0: हम सुन रहे थे स्त्री फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में भरत व्यास के बोलों से रामचंद्र के संगीत के साथ में। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
4: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
4: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
4: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
3: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में ससुराल फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम में, जब प्यार किसी से होता है फिल्म से, यह गीत जो गाया है लता मंगेशकर ने और मोहम्मद रफ़ी ने। हसरत जयपुरी के बोल हैं और संगीतकार शंकर जयकिशन।

हम सुन रहे थे गीत जब प्यार किसी से होता है फिल्म से, लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए चलिए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला नगमा, संजोग फिल्म से। लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ें हैं, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत।

कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत आइए सुनते हैं, जंगली फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज़ में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। और आज्ञा दीजिए मुझे यानी विधि जैन को आज के इस कार्यक्रम से। नमस्कार, आप सबका मंगल हो।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है दीपा महेश्वरी। तो दीपा, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे
2: मंजरी? बिल्कुल अच्छे हैं, और तुम्हारे साथ हमारे सभी सखियों को, श्रोता भाइयों को मेरा दीपा महेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: क्या बात है,
2: हेल्दी इसलिए हमेशा ही बताते हैं कि कोई एक दिन, जैसे कि कल गया हमारा इंटरनेशनल योगा डे, एक दिन स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए नहीं है, वो इसलिए है ताकि हम साल भर हर दिन अपना ध्यान खूब अच्छे से रख सकें और अपने परिवार को भी उसी वजह से खुशहाल भी रख सकें।
1: बिल्कुल दीपा, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे पास देखो मोबाइल की सुविधा भी उपलब्ध है, तो हम हर दिन अपने दोस्तों को ग्रुप में डाल सकते हैं कि आज योग किया कि नहीं किया, तो इस तरह की हमने याद भी दिला सकते हैं। तो एक दूसरे को जब हम प्रेरणा देंगे ना रोज रोज, गुड मॉर्निंग की जगह साथ में ये भी उसमें लगा दें कि आज योगा किया कि नहीं किया,
2: सही
1: तो सबकी सेहत अच्छी रहेगी।
2: के लिए या 15 मिनट के लिए जितना भी आपके पास वक्त है, और जो भी अच्छा लगता है, जो तरीका आपको अच्छा लगता है, जिस तरीके से आप एक कुछ वक्त अपने दिन का अपने स्वास्थ्य पर जरूर समर्पित कीजिए।
1: बिल्कुल। और दीपा, आज हमारी जो सखी सहेली के विषय हैं, तो वो हम बता देते हैं कि आज प्रादेशिक व्यंजन में हम कानपुर उत्तर प्रदेश की रंग बिरंगी चाट और हरी धनिया के आलू की तो बात करेंगे ही करेंगे, और हमारे साथी जो कुछ लेकर भेजेंगे तो उनको भी इसमें शामिल करेंगे।
2: बिल्कुल। और देखो, वर्षा ऋतु आने को है, इंतजार तो हो ही रहा है, सब लोग चाह रहे हैं कि अब जल्द से जल्द बारिश शुरू हो, तो उसके साथ साथ बहुत सारी सावधानियां शुरू हो जाती हैं, जैसे कि मच्छरों से बचाओ, तो इस पे भी हम बात करेंगे। और संदेश आए हैं, हम चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संदेश हमारे सभी श्रोता लिखकर भेजें।
1: बिल्कुल। और कथा सुधा में आज हम सुनवाने वाले हैं आभूषण कहानी का भाग 4। तो अभी तक लगातार सबने सुनी है आभूषण कहानी, तो आज उसका चौथा भाग, अंतिम भाग सुना जाएगा। और नवीन शिक्षा सत्र की शुरुआत जैसे कि हो गई है, और हम देखते हैं दीपा कि आज बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सब तैयार होकर स्कूल जा रहे हैं, तो उनका कैसा अनुभव होता है, या आपने बच्चों को स्कूल भेजने के पहले क्या क्या तैयारी करी, वो सब भी हमें छोटी छोटी बातें छोटे छोटे संदेशों में लिख सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा।
2: बिल्कुल। और एक ये गुंछा बना लिया है हमने कार्यक्रम का, तो ये सब तो हम कर ही रहे हैं बातें, और आप सारे संदेश तो आएंगे, तब तक सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: मंजरी, अब तो बिना कुछ कहे हम चलेंगे सीधे कदासुदा की तरफ,
1: बिल्कुल,
0: जहाँ पे हम सुनने वाले हैं आभूषण का भाग 4।
1: जी,
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण।
4: पिछले भाग में आपने सुना,
5: विमल सिंह को घर छोड़े 2 साल हो गए थे। शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थीं। आठों पहर उसके चित्त में ग्लानी और क्षोभ की आग सुलगा करती थी। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए, कोई जोतने वाला न मिला, असामियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही, अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए। शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई पूंजी निकल गई, फाके होने लगे। 4 प्राणियों का खर्च था। उस पर ये और मुसीबत हुई, मायके में एक फौजदारी हो गई। 2 छोटे भाई, 1 बहन और माता, 4 प्राणी और सर पर आ डटे। गाड़ी पहले ही मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में धस गई। सारी अमंगल शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गईं। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। उसकी सोचने की शक्ति निश्चल हो गई थी। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवारों के कष्ट की खबर मिली थी। वो गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे। मंगला के गृह त्याग के 3 महीने पीछे आज वो पहली बार घर से निकले थे। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है, जैसे रणक्षेत्र में हिम्मत हार

0: कर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया। वो संभल गए। ग्लानी से उनकी आंखें भर आईं। उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा।
1: बहन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक न दी। मैं कोई गैर न था, मुझे इसका दुख है। खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट न होगा। इस पत्र के साथ अनाज और रुपये भेज रहा हूँ।
2: भैया, क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। तुमने मेरी डूबती नाव पार लगा दी है।
3: कहानी आगे क्या मोड़ लेती है, इसके लिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का चौथा और अंतिम भाग।
0: कोयल आम की डालियों पर बैठकर मछली शीतल निर्मल जल में क्रीड़ा करके और मृग शावक विस्तृत हरियालियों में छलांगे भरकर भी इतने प्रसन्न नहीं होते जितना मंगला के आभूषणों को पहनकर शीतला प्रसन्न हो रही है। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। वो दिन भर आईने के सामने खड़ी रहती है, कभी केशों को संवारती है, कभी सुरमा लगाती है। कोहरा फट गया है और निर्मल स्वच्छ चांदनी निकल आई है। वो घर का एक तिनका भी नहीं उठाती। उसके स्वभाव में एक विचित्र गर्व का संचार हो गया है। लेकिन श्रृंगार क्या है? सोई हुई काम वासना को जगाने का घोर नाद उद्दीपन का मंत्र। शीतला जब नखशिख से सज कर बैठती है तो उसे प्रबल इच्छा होती है कि मुझे कोई देखे। वो द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है। गांव की स्त्रियों की प्रशंसा से उसे संतोष नहीं होता। गांव के पुरुषों को वो श्रृंगार रस विहीन समझती है, इसलिए सुरेश सिंह को बुलाती है। पहले वो दिन में एक बार आते थे, अब शीतला के बहुत अनुनय विनय करने पर भी नहीं आते। पहर रात गई थी, घरों के दीपक बुझ चुके थे। शीतला के घर में दीपक जल रहा था। उसने कुंवर साहब के बगीचे से बेले के फूल मंगवाए थे और बैठी हार गूंथ रही थी, अपने लिए नहीं, सुरेश के लिए। प्रेम के सिवा एहसान का बदला देने के लिए उसके पास और था ही क्या। एकाएक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी और दम भर में विमल सिंह ने मकान के अंदर कदम रखा। उनके एक हाथ में संदूक था, दूसरे हाथ में एक गठरी थी। शरीर दुर्बल, कपड़े मैले, दाढ़ी के बाल बढ़े हुए, मुख पीला, जैसे कोई कैदी जेल से निकल कर आया हो। दीपक का प्रकाश देखकर वो शीतला के कमरे की तरफ चले। मैना पिंजरे में तड़फड़ाने लगी। शीतला ने चौंक कर सिर उठाया, घबरा कर बोली, कौन? फिर पहचान गई। तुरंत फूलों को एक कपड़े में छिपा दिया। उठ खड़ी हुई और सिर झुकाकर पूछा,
2: इतनी जल्दी सुधली?
0: विमल ने कुछ जवाब न दिया। विस्मित हो कर कभी शीतला को देखता, कभी घर को, मानो किसी नए संसार में पहुंच गया है। ये वो अधखिला फूल न था जिसकी पंखुड़ियां अनुकूल जलवायु न पाकर सिमट गई थीं। ये पूर्ण विकसित कुसुम था, ओस के जल कणों से जगमगाता और वायु के झोंकों से लहराता हुआ। विमल उसकी सुंदरता पर पहले भी मुग्ध था, पर यह ज्योति वो अग्निज्वाला थी जिससे हृदय में ताप और आंखों में जलन होती थी। ये आभूषण, ये वस्त्र, ये सजावट। उसके सिर में एक चक्कर सा आ गया, जमीन पर बैठ गया। इस सूर्यमुखी के सामने बैठते हुए उसे लज्जा आती थी। शीतला अभी तक स्तंभित खड़ी थी। वो पानी लाने नहीं दौड़ी, उसने पति के चरण नहीं धोए, उसको पंखा तक नहीं छला। हत बुद्धि सी हो गई थी। उसने कल्पनाओं की कैसी सुरम्य वाटिका लगाई थी, उस पर तुषार पड़ गया। वास्तव में इस मलिन वदन अर्धनग्न पुरुष से उसे घृणा हो रही थी। ये घर का जमींदार विमल न था, वो मजदूर हो गया था। मोटा काम मुखाग्नि पर असर डाले बिना नहीं रहता। मजदूर सुंदर वस्त्रों में भी मजदूर ही रहता है। सहसा विमल की मां चौंकी। शीतला के कमरे में आई तो विमल को देखते ही मातृ स्नेह से विह्वल होकर उसे छाती से लगा लिया। विमल ने उसके चरणों पर सिर रखा। उसकी आंखों से आंसुओं की

0: माँ पुलकित हो रही थी, मुख से बात न निकलती थी। एक क्षण में विमल ने कहा,
1: अम्मा ये देखता क्या हूँ?
2: अरे तुम तो जानते ही हो, स्वभाव ही ऐसा है तो कोई क्या करे।
1: सुरेश ने मेरा हुलिया क्यों लिखाया था?
2: वो तो तुम्हारी खोज लेने के लिए। अरे उन्होंने दया ना की होती ना तो आज घर में किसी को जीता ना पाते तुम।
1: बहुत अच्छा होता।
3: अपनी ओर से तो तुमने सबको मार ही डाला था, फूलों की सेज नहीं बिछा गए थे?
1: अब तो फूलों की सेज ही बिछी देखता हूँ।
3: तुम किसी के भाग्य के विधाता हो?
0: विमल सिंह उठकर क्रोध से कांपता हुआ बोला,
1: अम्मा अम्मा मुझे यहाँ से ले चलो, मैं इस पिशाचिनी का मुंह तक नहीं देखना चाहता। मेरी आंखों में खून उतरता चला आता है। मैंने इस कुल कलंकनी के लिए 3 साल तक जो कठिन तपस्या की है उससे तो ईश्वर मिल जाता, पर इसे ना पा सका।
0: ये कहकर वो कमरे से निकल आया और माँ के कमरे में लेट रहा। माँ ने तुरंत उसका मुंह और हाथ पैर धुलाए। वो चूल्हा जलाकर पूरियां पकाने लगी, साथ साथ घर की विपत्ति कथा भी कहती जाती थी। विमल के हृदय में सुरेश के प्रति जो विरोधाग्नि प्रज्वलित हो रही थी वो शांत हो गई, लेकिन हृदय दाह ने रक्त दाह का रूप धारण कर लिया। जोर का बुखार चढ़ाया, लंबी यात्रा की थकान और कष्ट तो था ही, बरसों के कठिन श्रम और तप के बाद ये मानसिक संताप और भी दुसह हो गया। सारी रात वो अचेत पड़ा रहा, माँ बैठी पंखा झलती और रोती रही। दूसरे दिन भी वो बेहोश पड़ा रहा, शीतला उसके पास एक क्षण के लिए भी ना आई।
3: इन्होंने मुझे कौन से सोने के कौर खिला दिए हैं जो इनकी धौंस सहूं? यहाँ तो जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश, किसी की फूटी कौड़ी नहीं जानती। बहुत ताव दिखाकर तो गए थे, क्या लाद लाए।

0: संध्या का समय था, सुरेश को खबर मिली, तुरंत दौड़ते हुए आए। आज 2 महीने के बाद उन्होंने उस घर में कदम रखा। विमल ने आंखें खोली, पहचान लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। सुरेश के मुखारविंद पर दया की ज्योति झलक रही थी। विमल ने उसके बारे में जो अनुचित संदेह किया था, उसके लिए वो अपने को धिक्कार रहा था। शीतला ने ज्यों ही सुना कि सुरेश सिंह आए हैं, तुरंत शीशे के सामने गई, केश छिटका लिए और विपत की मूर्ति बनी हुई विमल के कमरे में आई। कहां तो विमल की आंखें बंद थी, मूर्छित सा पड़ा था, कहां शीतला के आते ही आंखें खुल गईं। अग्निमय नेत्रों से उसकी ओर देखकर बोला,
1: अभी आई है? आज के 3रे दिन आना, कुंवर साहब से उस दिन फिर भेंट हो जाएगी।
0: ये सुनकर शीतला उल्टे पांव चली गई। सुरेश पर घड़ों पानी पड़ गया। मन में सोचा, कितना रूप लावण्य है पर कितना विषाक्त, हृदय की जगह केवल श्रृंगार लालसा। आतंक बढ़ता गया। सुरेश ने डॉक्टर बुलवाए पर मृत्युदेव ने किसी की न मानी। उनका हृदय पाषाण है, किसी भांति नहीं पसीजता। कोई अपना हृदय निकाल कर रख दे, आंसुओं की नदी बहा दे, पर उन्हें दया नहीं आती। बसे हुए घर को उजाड़ना, लहराती हुई खेती को सुखाना उनका काम है, और उनकी निर्दयता कितनी विनोदमय है। ये नित्य नए रूप बदलते रहते हैं, कभी दामिनी बन जाते हैं तो कभी पुण्यमाला, कभी सिंह बन जाते हैं तो कभी सियार, कभी अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं तो कभी जल के रूप में। 3रे दिन पिछली रात को विमल की मानसिक पीड़ा और हृदय ताप का अंत हो गया। यम के दूत प्रायः रात ही को सबकी नजर बचाकर आते हैं और प्राण रत्न को चुरा ले जाते हैं। रात शोक का बाह्य रूप है। उसी समय विमल के घर से आर्तनाद सुनाई दिया, वो नाद जिसे सुनने के लिए मृत्युदेव विकल रहते हैं। शीतला चौंक पड़ी और घबराई हुई मरणशैया की ओर चली। उसने मृत देह पर निगाह डाली और भयभीत होकर

0: पग पीछे हट गई। उसे जान पड़ा विमल सिंह उसकी ओर अत्यंत तीव्र दृष्टि से देख रहे हैं। बुझे हुए दीपक में उसे भयंकर ज्योति दिखाई पड़ी। वो मारे भय के वहां ठहर न सकी। द्वार से निकल ही रही थी कि सुरेश सिंह से भेंट हो गई। कातर स्वर में बोली,
1: मुझे यहां डर लगता है।
0: उसने चाहा कि रोती हुई इनके पैरों पर गिर पड़ूं, पर वो अलग हट गए। जब किसी पथिक को चलते चलते ज्ञात होता है कि मैं रास्ता भूल गया हूं, तो वो सीधे रास्ते पर आने के लिए बड़े वेग से चलता है, झुंझलाता है कि मैं इतना असावधान क्यों हो गया। सुरेश भी अब शांति मार्ग पर आने के लिए विकल हो गए। मंगला की स्नेहमयी सेवाएं याद आने लगीं। हृदय में वास्तविक सौंदर्य उपासना का भाव उदय हुआ। उसमें कितना प्रेम, कितना त्याग, कितनी क्षमा थी। उसकी अतुल पति भक्ति को याद करके कभी कभी वो तड़प जाते।
2: मैंने घोर अत्याचार किया है, ऐसे उज्जवल रत्न का आदर न किया। मैं यूं ही जड़वत पड़ा रहा और मेरे सामने ही लक्ष्मी घर से निकल गई।
0: मंगला ने चलते चलते शीतला से जो बातें कही थीं, वे उन्हें मालूम थीं, पर उन बातों पर विश्वास न होता था। मंगला शांत प्रकृति की थी, वो इतनी उद्दंडता नहीं कर सकती। उसमें क्षमा थी, वो इतना विद्वेष नहीं कर सकती। उनका मन कहता था कि वो जीती है और कुशल से है। उसके मैके वालों को कई पत्र लिखे, पर वहां व्यंग और कटु वाक्यों के सिवा और क्या रखा था। अंत में उन्होंने लिखा,
2: उस रत्न की खोज में मैं स्वयं जाता हूं, या तो लेकर ही आऊंगा या कहीं मुंह में कालिख लगाकर डूब मरूंगा।
0: इस पत्र का उत्तर आया,
3: अच्छी बात है, जाइए, पर यहां से होते हुए जाइएगा। यहां से भी कोई आपके साथ चला जाएगा।
0: सुरेश सिंह को इन शब्दों में आशा की झलक दिखाई दी। उसे दिन प्रस्थान कर दिया और किसी को साथ नहीं लिया। ससुराल में किसी ने उनका प्रेममय स्वागत नहीं किया। सभी के मुंह फूले हुए थे। ससुर जी ने तो उन्हें पति धर्म पर एक लंबा उपदेश दिया। रात को जब वो भोजन करके लेटे तो दोनों सालियां आकर बैठ गईं और मुस्कुराकर बातें करने लगीं। ये बातें कोई सामान्य बातें न थीं, उनमें व्यंग था। वो शब्द थे जो उसे मुंह चिढ़ा रहे थे और हकीकत बयां कर रहे थे और उसे आईना दिखा रहे थे। तभी एक क्षण में मंगला की माता आकर बैठ गई और बोली,
4: बेटा तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, देश विदेश घूम आए हो, कहीं सुंदर बनने की कोई दवा नहीं देखी?
2: माताजी, अब ईश्वर के लिए और लज्जित न कीजिए।
4: तुमने तो मेरी प्यारी बेटी के प्राण ले लिए, मैं क्या तुम्हें लज्जित करने से भी गई? जी में तो था कि ऐसी ऐसी सुनाऊंगी कि तुम भी याद करोगे, पर मेहमान हो, क्या जलाऊं? आराम करो।
0: सुरेश आशा और भय की दशा में पड़े करवटें बदल रहे थे। तभी अचानक द्वार पर किसी ने धीरे से कहा, कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। सुरेश ने आवाज पहचानी, मानो प्यासे को पानी मिल गया। एक क्षण में मंगला उसके सम्मुख आई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। सुरेश को उसके मुख पर एक अनूठी छवि दिखाई दी, जैसे कोई रोगी स्वास्थ्य लाभ कर चुका हो। रूप वही था, रंग वही था, पर आंखें और थीं।
5: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का चौथा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार से है, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह जी श्याम, शीतला पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह जयंत पात्रीकर, मंगला ममता सिंह, शीतला की सास दीपा माहेश्वरी, मंगला की माँ राजश्री त्रिवेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक।

0: परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
1: आशा है आपको ये कहानी आभूषण बहुत पसंद आई होगी और अब सुनते हैं ये गीत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए 7 से

0: घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो दीपा, हम लोग ने बहुत सारी जानकारी और कहानी भी प्रस्तुत करी है।
3: बिल्कुल, और कहानी तो सुनकर वाकई में सभी को आनंद आया, हमें भी आनंद आया। और अब देखो
2: क्या देखो नवीन शिक्षा सत्र की जो शुरुआत हुई है तो उसमें देखते हैं कि शुरुआत, या यूँ कह लें कि बच्चे अगली क्लास में जाने लगते हैं तो उनके अंदर बहुत उत्साह, खुशी होती है, क्योंकि उनको स्कूल यूनिफॉर्म से लेकर किताबें, कॉपी, बैग, बॉटल, टिफिन, जूते, सब कुछ नए मिलते हैं दीपा। और कौन से दोस्त पुराने नए मिलेंगे, टीचर कौन सी होंगी, हर छोटी छोटी बातें उनके दिमाग में चलती हैं और तभी खुशी से स्कूल जाने के लिए बच्चे तैयार हो जाते हैं।
3: कुछ तो बच्चे तैयार हो जाते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चों को डर भी लगता है, फिर से पढ़ना पड़ेगा, मिस पता नहीं कैसी होंगी, गुस्सा तो नहीं करेंगी, दोस्त नए कैसे होंगे, फिर वही भारी बस्ते, किताबें, कितना सब कुछ कठिन होगा, है ना। लेकिन मिस, उन्हें ये भी लगता है मिस डांटेंगी तो नहीं, मम्मी पापा से दूर जाना होगा, कुछ ऐसे ही मानसिक शैक्षिक तनाव और स्कूल जाने का डर मन में कई बच्चों की ये भी कुछ इस तरह से भी बैठ जाता है।
2: बिल्कुल दीपा, बैठ जाती है। और बच्चों के सामने कुछ आने वाली समस्याएं भी होती, जैसे वहाँ पर कैसे अपना एडजस्टमेंट बैठाएंगे, नया माहौल होता है चूँकि बच्चों के लिए, और सख्त नियमों और अलग पढ़ाने के जो तरीके होते हैं, नए शिक्षक वहाँ पर आएंगे और वो अब किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी उनके ऊपर एक मानसिक दबाव होता है। तो उनको कैसे तालमेल बिठाना है, बच्चों को ये सब सोच के ही थोड़ी सी दिक्कत सी लगने लगती है। और स्कूल जाने का डर और घबराहट से वे कई तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं। और अक्सर देखा होगा तुमने, बच्चे सुबह उठते ही रोना शुरू कर देते हैं कि मम्मी आज नहीं जाऊँगा, पेट दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, इस तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं। और कई बच्चे तो बड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं, कुछ कहेंगे भी नहीं, बस रोए जा रहे हैं।
3: हाँ,
2: तो
3: ऐसा भी होता है, भाई देखो ना क्या हो गया है, अब गर्मियों की छुट्टियां तो खत्म हो गई हैं, जो खेल कूद और मस्ती भरे दिन थे वो भी कहीं उड़नछू होते चले जा रहे हैं। एक लंबे समय के बाद अचानक पढ़ाई के रूटीन में जब बच्चे लौटते हैं ना, तो ऐसा व्यवहार हम देखते ही हैं अक्सर। और वहीं पढ़ाई का कहीं ना कहीं एक बोझ सा भी उनको लगने लगता है, नई शिक्षा के कठिन जो ये सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, और फिर जो होमवर्क आ जाता है, उनको गृह कार्य आ जाता है, इसमें समय उनका पूरा निकल जाता है और उनको एक दबाव सा शुरुआत में लगता है। फिर वो धीरे धीरे उसकी आदत में आते हैं, लेकिन पहले उनको ऐसा लगता है अभी तो हम दिन दिन भर खेल रहे थे, अब अचानक से एक नियम उनके ऊपर बन गया, एक रूटीन उनका बनना शुरू हो गया है।
2: बिल्कुल। और जो उनकी दोस्त मित्र मंडली है, सहकर्मियों का दबाव भी उनके ऊपर पड़ता है दीपा। और दोस्तों का साथ छूटना या नए साथियों के बीच खुद को स्थापित करना, साबित करना और सामाजिक स्वीकृति पाने का तनाव भी बच्चों में देखा जाता है। और इसके साथ ही सुबह जल्दी उठने, स्क्रीन टाइम कम करने और खेलने पढ़ने के बीच संतुलन बनाने में बच्चे अक्सर असमर्थ रहते हैं। उनको लगता है अरे हम खेल नहीं पाएंगे, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो जल्दी उठना और खेल नहीं पाना, इसके बीच में बच्चे बड़े फंसे रहते, उलझे रहते हैं कि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, उनको पढ़ाई से पीछे भागते, क्योंकि होता यही कि इतने दिन छुट्टियां होती लंबी, तो बच्चों की वो छुट्टियों में आराम से उठने की आदत होती है और घंटों घंटों खेलना रहता है, पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं रहता है, तो नए सत्र में ये चीजें रहती। तो वही माता पिता और शिक्षक देखो बच्चों की मदद करें।
3: बिल्कुल, इनका सपोर्ट और इनका मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों को, छोटे बच्चे जहाँ आएंगे, और अगर उनकी अगर हम बात करें तो प्यार से उनसे बात करना बहुत जरूरी है, उनके मन की बात जानना, उनसे उनके मन में क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल चल रहा है ये पूछना। फिर बच्चों को डराने के बजाय, हम लोग क्या डरा डरा करके कई बार ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं करोगे तो देखो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं करोगे तो देखो वैसा हो जाएगा, ये नहीं करके दोस्ताना व्यवहार रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपनी जितनी भी समस्याएं हैं वो खुलकर बता सकें। फिर बच्चों के लिए एक नियमित दिनचर्या बनाना होता है, वो उसमें ऐसा नहीं कि आज बनाया तो वो कल ढल जाएंगे, धीरे धीरे थोड़ा सा समय जाएगा लेकिन वो उसमें ढल जाएंगे। फिर इस दिनचर्या में पढ़ाई, खेल और फिर अच्छे से सोना, इन सब का एक सही संतुलन होना बहुत जरूरी है। अब होमवर्क है, फिर बैग पैक करना, ये सारी तैयारियां करनी एक दिन पहले करना बहुत जरूरी हो गया है, जूते पे पॉलिश है या नहीं, यूनिफॉर्म पे बराबर इस्त्री है या नहीं, धुले हैं या नहीं, ये सब बहुत छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स देखेंगे, लेकिन जहां बड़े बच्चे हैं वहां उनको ये सब चीज देखना होती है। तो थोड़े से एक रूटीन, जो बिल्कुल स्वच्छंद भी रूटीन था, कुछ रूटीन ही नहीं था,
2: रूटीन ही नहीं था कहना चाहिए।
3: और अब

0: एक एक सिस्टम बनता चला जा रहा है, एक दिनचर्या उनके ऊपर आ रही है कि नियमित तरीके से ये करना होगा आपको, तो थोड़े से परेशान होते हैं, लेकिन हमें उनकी भी उलझन को समझना बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल, उनको छोटी छोटी चीज़ें उनकी उनसे करवाएं और उनकी तारीफ भी करें कि देखो भाई तुमने अच्छे से अपनी यूनिफॉर्म रखी है और साथ में बैग भी तुमने अच्छे से लगा लिया है और शूज़ भी सही जगह से तुमने रखे पॉलिश करके, तो और देखो तुम्हारे पास कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इनको लेके जाओगे स्कूल में तो बच्चे कितने खुश होंगे और साथी तुम्हारे कितने खुश होंगे, नई टीचर बहुत प्यार करेगी। इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा कहना चाहिए कि हम बहला फुसला कर बच्चों को स्कूल भेजें तो बच्चों का मन भी लगेगा।
0: बिल्कुल,
1: है ना। तो हम
0: वहीं देखिए जी, संदेश भी आए हैं हमारे श्रोताओं के। एक संदेश कहता है कि नवीन शिक्षा सत्र की शुरुआत को नई ऊर्जा और योजना के साथ करना ही सफलता की कुंजी है। नवीन सत्र की शुरुआत केवल नई कक्षाओं में प्रवेश भर नहीं है बल्कि नए सपनों, नए संकल्पों और नई संभावना की ओर बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समय है पुराने अनुभव से सीख लेकर नई ऊर्जा और उत्साह के साथ ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ने का।
1: बिल्कुल, और हमारे एक साथी लिखते हैं कि नई शिक्षा सत्र की शुरुआत, भाई हम लोग के समय में शिक्षा सत्र की शुरुआत जुलाई माह से शुरू हुआ करती थी और फरवरी मार्च तक परीक्षाएँ शुरू हो जाया करती थी, लेकिन अब गतिशील समाज में शिक्षा को दान का विषय न मानते हुए स्वयं के लिए वित्तीय वर्ष के अनुसार मार्च से अप्रैल तक कर दिया गया है। फलस्वरूप दान का विषय पूरी तरह से व्यापार विषय का दृष्टिकोण चुका है। इस तरह से इन्होंने बातें लिखी हैं, लेकिन देखा जाए दीपा तो हम लोग के समय में भी जब हम लोग बच्चे थे तो बहुत सारी तैयारियां करते थे जाने के लिए, मम्मी लोग कितनी तैयारियां करती थी, फिर हम लोग भी पहले दिन तो बड़े खुशी खुशी जाते थे, फिर अगली बार जब एक हफ्ते बाद लगता था अरे फिर से जाना है फिर से पढ़ना है तो कहीं ना कहीं मन पीछे की ओर भागता था, लेकिन भाई माता पिता इतने प्यार से करते थे तो पढ़ना तो पड़ता ही था, और पढ़ना तो सब बच्चे के लिए बहुत अच्छी बात है, है ना।
0: बिल्कुल, क्योंकि तो, ये आपके जीवन के जो नींव है वो बनाती है।
1: बिल्कुल, तो भाई अपने बच्चों को बहुत प्यार से भेजें स्कूल, उन्हें डराएं नहीं, और बल्कि अब चलिए उनको एक गीत सुना देते हैं सबको।
0: चलिए

0: मंजरी, जैसे शिक्षा सत्र की शुरुआत हो रही है वैसे ही बस अब कुछ ही दिनों में
1: मच्छरों की आतंक की शुरुआत होने
0: हम
1: वाली।
0: इतना मतलब ये तो बात है ही, लेकिन साथ में एक सुखद अनुभव ये भी होगा कि बरसात की, वर्षा ऋतु की भी शुरुआत हो जाएगी।
1: बिल्कुल, गर्मी
0: और हर एक अच्छी चीज के साथ एक चीज है जो कि कहीं वो उसमें एक खामियां भी लेकर आती है ना, साथ साथ में होती है।
1: क्योंकि देखो गर्मी का जो मौसम चल रहा है इसमें जब बारिश के फुहारे आएंगे और जो कहीं कहीं हल्की हल्की बारिश हुई भी है तो कहीं नहीं हुई है तो वो लोग बारिश के लिए बेताब भी हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो इन सब कीट जो पतंगे होते हैं इन सब का घर में आना जाना, मच्छरों का आना जाना बहुत शुरू हो जाता है। तो मच्छरों से बचाव के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमको। तो उसके लिए कि पहला तो मच्छरों से बचाव के लिए घर में और आसपास पानी जमा मत होने दीजिए, हमारे साथी लिख रहे हैं। और साथ में आपके अंदर, घर के अंदर भी बहुत सारे हम ऐसे इंडोर प्लांट्स रखते हैं जिनमें पानी, हम भर के पानी में पौधे उगाते हैं, तो उन पानी को आप बदलते रहें हर दो दो दिन पे तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे उसमें लार्वा ना पनपने पाए। तो इन चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और
0: बिल्कुल, और ये हमारा एक और संदेश है जो कहता है कि हमारे यहाँ यानी सूरत से हैं ये, और कह रही हैं कि सुबह सुबह हल्की सी बारिश हो गई थी, वो भी अब लगता है कि कहीं झपकी के मूड में आ गई है, यानी कि थोड़ी सी बारिश हुई होगी फिर रुक गई होगी। और बारिश हो और मच्छरों का उपद्रव ना हो ये तो संभव नहीं हो सकता। ये तभी कर सकते हैं कि आप अपने घर के आसपास या गमलों में पानी ना जमा होने दें, अगर हो तो उसको निकाल लें, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है। और सोते समय मच्छरदानी का उपयोग अवश्य करें, घर की खिड़कियां या दरवाजे पर भी जाली अवश्य लगवा लें, घर में कपूर जलाएं या नीम के तेल का दिया जलाएं, ये मच्छरों को भगाने में मदद करता है।
1: और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि मच्छरों से बचाव गर्मी की एक सबसे बड़ी समस्या है होती है, गर्मी और बरसात की जारी है। मच्छरों से बचाव के लिए अपने आसपास जहां पानी जमा रहता है वहां पानी जमा ना होने दें, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि आपने जो आसपास जो कलर वगैरह कराया है वो हल्के रंगों का हो, और सफाई करें। और ये बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा मच्छरों के जो लार्वा है वो पनपते हैं, और जब भी सोएं मच्छरदानी के को लगा करके आप सोएं, और मच्छर से बचाव करने वाले जो कुछ आप उपाय कर सकते हैं वो करें, तो इससे क्या होगा कि आप मच्छरों के काटने से बचे रहेंगे।
0: बिल्कुल, और साफ सफाई का तो देखो विशेष ध्यान रखना होता ही है। कई हमारे सखियां होंगी जिनके घर में ऊपर छत है, तो वहां पर हम ऐसा होता है ना अक्सर कि जो काम की चीजें नहीं है वो हम रख देते हैं, जैसे कोई डब्बा रख दिया है, कोई ट्यूब टायर वगैरह रख दिया है, या कोई ऐसी ऐसा सामान लकड़े का कि साल भर उसका इस्तेमाल ही नहीं होता, कभी कभी होता है
1: उसी में,
0: तो हम उसमें हाँ, और ऐसी जगह पर जहाँ पे धूल मिट्टी और फिर उसके बाद पानी अगर इकट्ठा होने लग जाता है तो बेशक वहाँ पे मच्छरों के लार्वा पनपने लग जाते हैं और वो बढ़ने लग जाते हैं। तो ये सब चीजें ठीक है, हम मानते हैं कि गर्मी के दिन है, बहुत मुश्किल होती है एकदम गर्मी में छत पे जाना और सब साफ सफाई करना, लेकिन ये एक बार अगर आपने पहले से ही कर दिया तो बारिश आने के पहले ही अगर सफाई हो जाएगी तो वहाँ पे गंदा पानी होगा ही नहीं, और उसके बाद कुछ कुछ दिनों में वो सफाई हमें करते रहने पड़ेगी, क्योंकि हर मौसम का एक अपना अगर सुकून है तो ध्यान रखने की बात भी जरूरी है।
1: बिल्कुल, और शाम हो, जैसे ही शाम होने लगे तो उस समय घर के दरवाजे खिड़कियां आप बंद कर दीजिए।
0: बिल्कुल,
1: खिड़कियों में दरवाजों में जाली लगी हो तो आपके हर घर में, हर उसमें लगी हो कमरों में, तो आपको बहुत आराम रहेगा, मच्छर आने नहीं पाएंगे। और मच्छरों से
0: और ये इसमें ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि 5 से 7 बजे के बीच में मच्छर आ जाते हैं तब क्या उजाला रहता है, हमें लगता है नहीं अभी बंद कर देंगे तो थोड़ी गर्मी लगने लगेगी और हम खिड़कियां खुली रखते हैं, लेकिन ऐसा न करते हुए 5 बजे 6 बजे के बीच में ही आप सारी खिड़कियां बंद कर लें। बाद में थोड़ी देर के बाद अगर आप खोलते हैं तो चलता है, लेकिन मच्छर वाली अगर जो बारीक छेद वाली अगर खिड़कियां हैं तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि विशेष तौर पर मच्छर से बचने के लिए दरवाजे भी बनाए गए हैं आजकल, तो छोटी छोटी खिड़कियां भी होती हैं, स्लाइडिंग विंडोज भी होते हैं, इस तरह की चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। छोटे बच्चे घर में हैं तो उनको कपड़े पूरे बाहर के और पूरे पैरों को ढके, उनके शरीर उनका ढका हुआ रहे, भले ही वो पतला कॉटन का कपड़ा हो।
1: और देखो इसके साथ ही जो घर में हम चादर वगैरह बिछाते हैं वो भी हल्के कलर के होने चाहिए। अगर हम गहरे रंगों के, भूरे हैं, काले नीले बिछाएंगे तो उसमें मच्छर बैठेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जितना हल्का कलर होगा उतनी जल्दी आप उनको देख सकते हैं और उनसे बच सकते हैं। फिलहाल तो हम एक गीत सुन सकते हैं,
0: इससे हम बचना बिल्कुल नहीं चाहते।
2: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना।

0: तो अब तो भाई
1: सुरीले सा संगीत हो और फिर कुछ ही दिनों में झमाझम बारिश होगी, ऐसे में अगर चाट मिल जाए रंग बिरंगी उत्तर प्रदेश की तो फिर क्या ही बात है। तो फिर चलिए उसके लिए क्या क्या चाहिए ये भी हम देख लेते हैं। टिक्की बनानी होगी, उसके लिए उबले हुए मैश किए हुए आलू लेना है 4-5, अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर आप ले लीजिए 3-4 चम्मच, और छोले यानी कि सूखी सफ़ेद मटर होती है वो लेना है 1 कप, रात भर भीगी हुई, रात को ही भिगा लीजिएगा अगर आपको अगले दिन बनाना है। हल्दी 1 छोटा चम्मच, नमक, गरम मसाला ये सब आप अपने

स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। और चटनी है स्वाद अनुसार, और गार्निश के लिए हरी चटनी आपको लेना है, उसमें पिसी हुई धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, अदरक और नींबू होते हैं। ये तो बन गई आपकी हरी धनिया की चटनी। मीठी चटनी भी बनानी होगी, उसके लिए आपको इमली या अमचूर और चीनी मिलाकर या गुड़ मिलाकर गाढ़ा सा एक आपको चटनी बनानी है, मीठी चटनी। ये भी ऊपर से डाला जाएगा। और फिर फेंटा हुआ मीठा दही चाहिए, भुना हुआ जीरा पाउडर चाहिए, काला नमक, चाट मसाला चाहिए, लाल मिर्च पाउडर और कटे हुए प्याज, और ऊपर से सर्व सजाने के लिए हरा धनिया। भाई हमारे सखियां कहेंगी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन भाई मज़ा भी तो तभी है ना, उसका स्वाद भी उसी तरह से बढ़ेगा। अब मटर आप उबाल लीजिए, भीगी हुई जो आपने रात भर रखी थी, इसमें हल्दी नमक डालकर, पानी डालकर कुकर में 4-5 सीटी ले लीजिएगा। मटर गाढ़ी और थोड़ी लिपटी लिपटी सी हुई होनी चाहिए। टिक्की कैसे तैयार करना है, मैश किए हुए आलूओं में अरारोट और नमक मिला लेना है, इसे आटे की तरह गूंद लेना है। अब छोटी छोटी लोइयां बनाकर गोल और चपटी टिक्कियां तैयार कर लीजिए। फिर तवे पर आपको जैसे आपको पसंद हो घी से या तेल से आप इसको सेक

0: ये भी ऊपर से डाला जाएगा। और फिर फेंटा हुआ मीठा दही चाहिए, भुना हुआ जीरा पाउडर चाहिए, काला नमक, चाट मसाला चाहिए, लाल मिर्च पाउडर और कटे हुए प्याज, और ऊपर से सर्व सजाने के लिए हरा धनिया। भाई हमारे सखियाँ कहेंगी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन भाई मज़ा भी तो तभी है ना, उसका स्वाद भी उसी तरह से बढ़ेगा। अब मटर आप उबाल लीजिए, भीगी हुई जो आपने रात भर रखी थी, इसमें हल्दी नमक डालकर पानी डालकर कुकर में 4-5 सीटी ले लीजिएगा। मटर गाढ़ी और थोड़ी लिपटी उलिपटी सी हुई होनी चाहिए। टिक्की कैसे तैयार करना है, मैश किए हुए आलूओं में अरारोट और नमक मिला लेना है, इसे आटे की तरह गूंद लेना है। अब छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर गोल और चपटी टिक्कियाँ तैयार कर लीजिए। फिर तवे पर आपको जैसे आपको पसंद हो घी से या तेल से आप इसको सेक लीजिए दोनों तरफ से, सुनहरा और कुरकुरा होने तक। प्लेटिंग कैसे करनी है, एक प्लेट में 2 टिक्की या जैसे आपको घर में पसंद है उस तरह से रखिए। उसके ऊपर गरम जो माफ़ कीजिएगा, उसके ऊपर जो तैयार की है आपने गरम मटर वो डालिए, मसाले और चटनी डालना है। और अब इसमें जो ऊपर से इसके ऊपर फेंटा हुआ दही, फिर हरी चटनी और बहुत सारी मीठी चटनी डालिएगा, या घर में अगर आपके किसी घर में तीखा पसंद है तो हरी चटनी ज़्यादा डालिए। इसके बाद चाट मसाला, काला नमक, भुना जीरा, लाल मिर्च पाउडर, ये सब हल्का हल्का भुरकना है, और फिर आखिर में कटे हुए प्याज डाल के हरा धनिया से आप इसे सजा कर सर्व कीजिए।
1: और इसी तरह हरी धनिया के आलू भी बनते हैं। हरी धनिया के पुदीने की बढ़िया चटनी बनाइए, उबले आलू लीजिए और उसके सबको मिक्स कर दीजिए, तो आपके हरी धनिया के आलू जो चाट है वो तैयार हो जाए।

0: हूँ। तो दीपा देखो, बातें करते करते एकदम समय का पता ही नहीं चला, तो हमारे सभी साथियों ने बहुत सारे संदेश भेजे और बहुत अच्छी सी रेसिपी भी लिखकर भेजी।
1: बिल्कुल, तो और रेसिपी जो भेजी है उसको आप, लंबी है लेकिन बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि बारिश के मौसम में ये बहुत स्वादिष्ट और मज़ेदार लगेगी। और अपना ध्यान रखिएगा मच्छरों से भी, और बच्चे नहीं अभी जब स्कूल जाने के लिए थोड़ा सा ज़िद करेंगे या मन उनका नहीं होगा तो उनका मन को बहलाइए खूब अच्छी ये इस तरह की रेसिपी बना के।
0: तो अब विदा लेते हैं प्रोग्राम से, सभी को मंजरी वर्मा और
1: दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: नमस्कार श्रोताओं, सेहतनामा कार्यक्रम में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे डॉक्टर को जो हेपेटोलॉजी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट हैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। आप हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, आपका विविध भारती के स्टूडियो में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए आपसे बात करने के लिए।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है?
2: नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। काफ़ी दूर है हमारा हॉस्पिटल से, इतना बड़ा स्टूडियो, इतनी बड़ी जगह, इतनी खुली जगह देख के बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी बड़े स्टूडियोज हैं, फिर सब लोगों को मिल के बहुत अच्छा लगा
1: जी। आज सेहतनामा कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट की अन्य तमाम बीमारियों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, फैटी लिवर आजकल बहुत कॉमन हो गया।

0: है, हर चौथा पांचवा मरीज ऐसा सुनने में आता है, और सोशल मीडिया के माध्यम से तो हर कुछ पॉपुलर हो जाता है, मशहूर हो जाता है। तो बताइए कि फैटी लिवर है क्या और इससे कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं?
1: आपने बिल्कुल सही किया, फैटी लिवर अभी बहुत बहुत कॉमन हो चुका है। आपने कहा हर चौथे पांचवे आदमी को फैटी लिवर है, पर मैं कहूँगा हर दूसरे तीसरे आदमी को फैटी लिवर
0: अच्छा।
1: है। अगर आप देखें ओवरऑल फैटी लिवर को, तो कहने में आया है कि बड़े शहरों में जो हम अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं उनमें अबाउट 30-40% लोगों को ये बीमारी है फैटी लिवर। अगर आप गाँवों में चले जाएँ, छोटे शहरों में चले जाएँ, तो ये बीमारी थोड़ी कम है, और इसके कारण भी मैं आपको बताऊँगा। फैटी लिवर का मतलब होता है लिवर के अंदर ज़्यादा फैट जमा हो जाना। हमारे लिवर के अंदर फैट होना ज़रूरी है फॉर बॉडी के कई फंक्शंस के लिए, बट जब ये फैट ज़्यादा हो जाता है तब ये लिवर को नुकसान देता है, और अगर लिवर ख़राब हो जाए तो बॉडी के कई और ऑर्गन्स पे ये इफ़ेक्ट करता है। अगर हमारे लिवर के अंदर फैट 5% मतलब 5% से ज़्यादा हो जाए तो ये आगे जाके प्रॉब्लम दे सकता है। सबको नहीं, किसी किसी लोगों को ये प्रॉब्लम देता है।
0: जी, तो इसके कारण क्या है डॉक्टर साहब, क्यों फैटी लिवर होता है?
1: तो सबसे बड़ा कारण आई थिंक हमारे यहाँ है कि हमारी डाइट, अभी हमारी डाइट काफ़ी सैचुरेटेड डाइट हो गई है। हम वेस्टर्नाइज डाइट हमने अडॉप्ट कर ली है, हम फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, तो हमारी कार्बोहाइड्रेट की जब जो मात्रा होती है, अगर वो ज़्यादा हो तो ये एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वो लिवर में फैट करके स्टोर हो जाता है और लिवर को ख़राब करता है। डायबिटीज़ होना, प्री डायबिटीज़ होना, एक्सरसाइज नहीं करना, आजकल सब ऑटो में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, वॉक करना तो ऑलमोस्ट सबने छोड़ ही दिया है, सबके वजन बढ़ रहे हैं, तो ये कई कारण है जिससे लिवर में फैट ज़्यादा होता है और उससे लिवर को नुकसान पहुँच सकता है।
0: तो फैटी लिवर से और कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, और एक बात और दूसरी बात ये बताइए कि इसके लक्षण क्या है, कैसे मरीज को पता चले कि फैटी लिवर हो गया है उसको?
1: तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता कि ये प्रॉब्लम हो रही है। जब पेशेंट हमारे पास आता है ये प्रॉब्लम के साथ, तब काफ़ी लेट हो चुका होता है, ऑलरेडी लिवर पूरी हद तक ख़राब हो चुका होता है, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। अगर हम इसको जल्दी पकड़ें तो इसकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का था कि ये क्यों होता है और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लक्षण क्या होते हैं। तो नॉर्मली इसके लक्षण बहुत कम होते हैं, कभी कभी हमको हमारे पेट के ऊपर के हिस्से में थोड़ा दर्द हो सकता है, थकान आ सकती है। अगर हम अपने ब्लड टेस्ट चेक करें उसमें हमको डायबिटीज़ हो सकती है या प्री डायबिटीज़ हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है ब्लड के अंदर, तो ये 2-3 लक्षण हैं जिससे हमको सोचना चाहिए कि हमको शायद फैटी लिवर हो। क्लियरली अगर आपका वजन बढ़े जा रहा है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, तो आपको फैटी लिवर होने की संभावना है। बट अगेन मैं यही कहूँगा कि चेकअप करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स होते नहीं हैं, सिम्टम्स बहुत आगे जाके आते हैं जब हम कुछ नहीं कर सकते।
0: जी, तो क्या है चेकअप का तरीका, क्या होता है डॉक्टर साहब फैटी लिवर का, किस तरह की जाँच पद्धति है?
1: तो इस बेसिक चेकअप जो होता है, हमें सादे जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जो हम रेगुलर ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि हमको डायबिटीज़ है कि नहीं, हमारा HbA1c कितना है, हमारा ट्राइग्लिसराइड्स कितना है, LDL कोलेस्ट्रॉल कितना है, हमारा वज़न कितना है। अगर वज़न हमारा बढ़ रहा है या ज़्यादा है, हम ओबीज कैटेगरी में आते हैं जिसमें हम नंबर कैलकुलेट करते हैं BMI, जो हाइट और वेट पर डिपेंड करता है, और अगर वो 23 से ज़्यादा हो तो देयर इज़ अ रिस्क कि आपको शायद फैटी लिवर हो। फिर एक्चुअल डायग्नोसिस के लिए सोनोग्राफी लगती है, अगर आप पेट की सोनोग्राफी कराओ, कोई और कारण भी कराओ, उसमें अगर लिवर दिखे और उसमें आए कि लिवर फैटी है, तो वो आपकी डायग्नोसिस हो गई फैटी लिवर है। पर ये खाली कह रहा है कि आपको फैटी लिवर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको तकलीफ है। फैटी लिवर कई लोगों को होता है, पूरी ज़िंदगी लिवर में थोड़ा फैट ज़्यादा होता है, पूरी ज़िंदगी कट जाती है, लिवर को कुछ नहीं होता है। बट ऐसे थोड़े पेशेंट्स हैं जिनको हमको ढूंढना पड़ता है, जिनको आगे जाके ये फैटी लिवर नुकसान दे सकता है। टेस्ट करने के लिए कि कितना लिवर डैमेज है, 2-3 तरह के टेस्ट होते हैं। एक मशीन आती है हमारे OPD में, जिसमें मशीन से लिवर को हाथ लगाते हैं, वो 2 मिनट के अंदर बता देता है कि फैट कितना है पर नुकसान है कि नहीं, क्योंकि अगेन अगर नुकसान है तो उसकी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है।
0: जी,
1: कई नए अल्ट्रासाउंड आए हैं जो अगेन लिवर को स्कैन करके बता देते हैं फैट है और डैमेज है कि नहीं। थोड़े एडवांस टेक्नोलॉजीज़ भी हैं हमारे हॉस्पिटल में, क्योंकि हम काफ़ी ट्रांसप्लांट्स करते हैं हमारे डिपार्टमेंट में, तो एक MRI करके स्कैन आता है जिससे हम पता करते हैं कि लिवर में डैमेज है कि नहीं, और एक स्पेशल CT स्कैन भी अवेलेबल है। अभी ये सारे जो टेस्ट है सिंपल टेस्ट है, हमको आराम से मिल जाते हैं सब जगह से।

0: अगर आपको चाहिए कि कोई फाइनल टेस्ट हो जो बताए कि कितना लिवर खराब है, तो लिवर बायोप्सी करते हैं, लिवर का एक टुकड़ा लेते हैं। बट यू नो, मुझे याद नहीं है लास्ट मैंने लिवर बायोप्सी फैटी लिवर के लिए कब की थी, क्योंकि हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजीज है वो इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने एडवांस हो चुके हैं
1: जी, जी,
0: कि
1: जी,
0: दो
1: बिल्कुल
0: मिनट के अंदर मैं पेशेंट को बता देता हूँ कि आपको लिवर में खाली फैट है कि फैट के साथ नुकसान है। बट इसके लिए पेशेंट हैज़ टू बी एजुकेटेड, पेशेंट को पता होना चाहिए कि मुझे ये टेस्ट करने हैं।
1: जी
0: अगर हमारे पास वो टेस्ट लेके आओगे तो हम आगे आपको टेस्ट करके आंसर दे पाएंगे।
1: जी और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़रा भी तकलीफ होती है या यूं ही फैट बढ़ रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अमूमन लोग डॉक्टर के पास जाने में ही परहेज़ करते हैं, अपने आप ही गूगल के ज़रिए कुछ कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं, ये भी ठीक नहीं है। ख़ास तौर से उन श्रोताओं के लिए ये बात हम कह रहे हैं जो ग्रामीण इलाकों में कस्बों में बसते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बड़ी कारगर बातें आपने बताई। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ने से पहले एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें, आपकी पसंद का गाना बताइए।
0: मेरा एक गाना जो बहुत मुझे पसंद है, जब मैं अमेरिका में था काफ़ी साल,
1: जी
0: चौदह
1: जी
0: पंद्रह साल मैंने वहाँ बिताया है,
1: अच्छा
0: तो यहाँ बॉम्बे का ही हूँ, यहाँ ही पढ़ा लिखा हूँ MBBS की, मगर बाहर जाके ट्रेनिंग की, एडवांस ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस की काफ़ी काफ़ी साल। फिर
1: जी
0: 14 साल छोड़ के मैं वापस आ गया क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ थे।
1: जी जी
0: तो वहाँ मैंने एक सॉन्ग बहुत सुनता था, वो स्वदेश पिक्चर का एक सॉन्ग था शाहरुख खान का,
1: ये जो देश है
0: ये जो
1: मेरा,
0: देश है मेरा, ये सॉन्ग मुझे बहुत बहुत पसंद
1: क्या
0: है।
1: बात है, सुनते हैं यही गाना स्वदेश फिल्म का।

0: डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि आप अमेरिका में रहे बहुत साल, तो किस तरह की पढ़ाई वहाँ पर थी आपकी?
1: तो बेसिक MBBS मैंने यहाँ से की, बॉम्बे से की। फिर वहाँ पे मेरे फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली वहाँ रहती थी, तो मैं वहाँ जाके पहले अपना बेसिक MD

0: मेडिसिन की हमने वहाँ पे 3 3 साल का कोर्स होता है वहाँ पे, जो MD मेडिसिन MBBS के बाद करते हैं। फिर उस टाइम पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि वहाँ पे लिवर के लिए पढ़ाई करूँ एक्स्ट्रा, जो स्पेशल फेलोशिप होती है हेपेटोलॉजी की, जब हम लिवर और लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सीखते हैं हाउ टू डू, तो मैंने 1 साल का कोर्स किया। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि क्यों मैंने ये फील्ड चूज़ की थी, मैं बताऊँगा आपको आगे। और सब्सिक्वेंटली पूरी ट्रेनिंग ख़त्म करने के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी करते हैं हम, एंडोस्कोपी वो की, एंड फाइनली मैंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जाके एडवांस एंडोस्कोपी सीखे, जो स्पेशलाइज एंडोस्कोपीज होती है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड ERCP करके टेस्ट होते हैं जो हम हमारे ट्रांसप्लांट पेशेंट पे भी करते हैं, वो सीखी। तो ओवरऑल 8 से 9 साल लगे वहाँ पे पढ़ने को, फिर 4 5 साल उधर काम किया, फिर 14 साल बाद आई डिसाइडेड कि वापस आना चाहिए अपने देश। तो जैसे मेरी माँ कहती है ना, बनवास करके आ गया।
1: अरे क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई, और हमारे बहुत सारे युवा श्रोता सुनते हैं प्रोग्राम, तो कितनी अच्छी बात है कि अपने देश की प्रतिभा को वापस अपने देश में आपने दिया। और अपने श्रोताओं को ये बताते हुए हमें अच्छा लग रहा है कि हम निजी तौर पर भी डॉक्टर साहब को जानते हैं, और बड़े अनुभव का खजाना है हमें पता था, लेकिन इतनी सारी नॉलेज का भी खजाना है ये हमें आज पता चला। डॉक्टर साहब, आज फैटी लिवर पे हम पहले बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बहुत सारी पेट की बीमारियों पर भी चर्चा करेंगे। हमें बताइए कि दवाइयों से क्या फैटी लिवर का इलाज संभव हो सकता है, या कोई ऑपरेशन या परहेज कुछ करना पड़ता है?
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यू नो जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, पेशेंट की एक्सपेक्टेशन रहती है कि हम एक दवाई लिख के दें
1: जी।
0: तो फैटी लिवर ऐसी बीमारी है जो अगर जल्दी पकड़े जाए तो इसके लिए दवाई की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने बॉडी का 5 to 10% भी वजन कम कर पाए किस तरह भी, चाहे आप डाइट करो एक्सरसाइज करो, अगर 5 से 10% आपने वेट कम कर लिया तो बीमारी पूरी तरह से मिट जाती है मोस्ट पेशेंट्स में, पर ये करना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है। तो मोस्ट पेशेंट्स को कोई ना कोई दवाई की जरूरत पड़ती है। पहले हम विटामिन ई देते थे, एक गोली आती थी वो देते थे उसके लिए, उसके बाद और नई दवाइयाँ, एक इंडियन दवाई आई है जो हम देते हैं जिससे फैटी लिवर भी कम होता है और लिवर का डैमेज भी थोड़ा थोड़ा कम होता है। अमेरिका में 2 और दवाइयाँ अभी अप्रूव हुई हैं, एक साल पहले हुई थी, कभी 6 महीने पहले हुई है। आजकल जो सबसे ज़्यादा दवाई हम यूज़ करते हैं इसके लिए वो है सेमाग्लूटाइड, एक तरह का इंजेक्शन होता है जिससे वेट लॉस होता है, जो आजकल काफ़ी फेमस हो चुका है फॉर गुड एंड बैड रीजंस। तो देर आर मेडिसिन अवेलेबल हैं दवाइयाँ, मगर ये डॉक्टर के देख के डॉक्टर हैज़ टू डिसाइड कि कौन सी दवाई आपके लिए सही है। मेरा मानना होता है कि पेशेंट्स खुद, जैसे आपने कहा, गूगल करके दवाई ले लेते हैं, स्पेशली ये जो हर्बल मेडिसिन होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान से लेना चाहिए, क्योंकि उनमें कभी कभी भस्म होता है, उसमें लिवर को डैमेज करने का और चांस होता है। तो ये दवाइयाँ थोड़ा ध्यान से लेनी चाहिए। अगेन, बिना दवाई के हो सकता है। मेरे हर एक पेशेंट को पहले मैं 3 से 6 हफ्ते का चांस देता हूँ कि वेट लॉस करो, अगर वजन नहीं कम कर पा रहे और नहीं हो रहा है आपका फैटी लिवर रिवर्स, फिर हम दवाई शुरू करते हैं
1: जी। तो डॉक्टर साहब, आजकल ये समस्या युवाओं में भी बढ़ रही है, उसका कारण स्ट्रेस है, पढ़ाई का बोझ है, और अगर वो कंपनीज में काम कर रहे हैं तो उसका बोझ है, तो क्या तनाव भी एक कारण है? एक बात ये बताइए, और साथ में हमें ये भी बताइए कि लिवर के, इस फैटी लिवर के कारण और कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं?
0: हाँ, तो बहुत सही कहा आपने, फैटी लिवर स्ट्रेस गो हैंड इन हैंड। आजकल मैं देखता हूँ मेरे जो पेशेंट्स आते हैं और फैमिली मेंबर्स भी, उन्होंने 12 12 घंटे काम कर रहे हैं, 14 घंटे काम कर रहे हैं, स्पेशली पढ़ाई कर रहे हैं, बैठे रहते हैं। मैं अपने लड़के के बारे में बोलूं, बैठे रहेंगे, वजन बढ़ेगा, एंड यू नो फिर उस टाइम पे कुछ सूझता नहीं है, जो हाथ में आया खा लिया, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, जंक फूड खा लिया, और डाइट इज बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट है अभी। तो आई थिंक स्ट्रेस ऑफ वर्क, स्ट्रेस ऑफ स्टडीज, स्ट्रेस ऑफ जॉब, ट्रैवल, वो सब से भी अपने बॉडी के हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, जिसमें वेट गेन होना बहुत रैपिडली होता है। फिर वो स्ट्रेस को कम करने के लिए हम खाना खाते हैं, जो बोलते हैं स्ट्रेस ईटिंग, हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, प्रोटीन कम खाएंगे, यू नो प्रोसेस्ड फूड्स खाएंगे, स्विगी ऑर्डर कर लिया, इंस्टा ऑर्डर कर लिया, 5 मिनट में घर पर आ गया, खा लिया और काम ख़त्म। तो ऑल दीज कैन देन लीड टू फैटी लिवर, एंड देन वंस फैटी लिवर हो गया, देन फैटी लिवर अगेन इज नॉट द प्रॉब्लम। फैटी लिवर अगर आपको है तो कह रहा है कि आपको बॉडी में और प्रॉब्लम होने के चांसेस है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, ये सब वेट से रिलेटेड है, सब फैट से रिलेटेड है। तो लिवर तो बेचारा एक ऑर्गन है जो सब स्टोर कर रहा है, बट उसकी इफेक्ट सारे ऑर्गन्स पे हो सकती है
1: जी। तो ये फैटी लिवर के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है,

0: तो हमारे बहुत सारे श्रोता जो विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं, उन्होंने कुछ सवाल भी भेजे हैं। तो फैटी लिवर के बारे में बताया है, लेकिन सवाल उन्हें नहीं सूझा, तो मैं ही सब पूछ रही हूँ अपनी तरफ से, उन श्रोताओं की ओर से भी, कि फैटी लिवर पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, थोड़ी बहुत लापरवाही या असावधानी की वजह से, तो क्या लिवर सोरायसिस या लिवर कैंसर जैसी बीमारियां भी पनप सकती हैं क्या?
1: बिल्कुल, अगर 100 पेशेंट्स को लें, आप 100 लोगों को लें जिनको फैटी लिवर है और उनको और कोई और बीमारी नहीं है, तो इनमें से 2 से 3% लोगों को आगे जाके लिवर सिरोसिस होगा। ये बहुत बड़ा नंबर है।
0: जी
1: ये मैं डायबिटीज़ वालों को नहीं बोल रहा, मैं रेगुलर पेशेंट्स को बोल रहा हूँ। अगर आप देखें, हमारी इंडियन पॉपुलेशन इज क्लोज टू 150 करोड़, उसमें अगर आप 3% लोगों को भी लिवर सिरोसिस दे दें, दैट्स अ वेरी बिग नंबर। बहुत लोगों को लिवर सिरोसिस होता है। एक बार लिवर सिरोसिस हो जाए, वो परमानेंट है, तो लिवर सिरोसिस पेशेंट को फिर लिवर कैंसर होने की संभावना 20 से 30 गुना ज़्यादा होती है।
0: ओ
1: तो लिवर फैटी लिवर से सिरोसिस होता है, सिरोस के साथ आगे कैंसर होने के चांसेस कई ज़्यादा।
0: जी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनाएं अपने श्रोताओं को।
1: दूसरा गाना जो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं एक्सरसाइज के टाइम कभी कभी सुनता हूँ,
0: जी जी
1: क्योंकि आई
0: जी
1: लाइक थोड़ी बीट्स होनी चाहिए। भाग मिल्खा भाग वाला गाना
0: क्या बात है,
1: मुझे
0: फिल्म का
1: पसंद
0: नाम
1: है।
0: भी सुनते हैं। फरहान अख्तर पर्दे पर हैं और अच्छी एक्टिंग करते हैं और भाग रहे हैं सचमुच, तो बेहतरीन गाना चुना है, सुनते हैं यही गाना। और ये भाग मिल्खा भाग फिल्म का गाना सुनते हुए अपने श्रोताओं से ये भी कहना ज़रूरी है कि बस भागना ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि अगर डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि बैठे बैठे आप बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, तो कसरत कीजिए और भागिए।

0: और अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपने जो लिवर सोराइसिस के बारे में जानकारी दी, तो इसके क्या लक्षण हैं और किस तरह इसका ट्रीटमेंट हो सकता है?
1: जब लिवर सिरोसिस होता है तो अनफॉर्चुनेटली पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, उनको तकलीफें शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ा सिम्टम होता है फटीग, थकान रहना, पूरे दिन थका हुआ रहता है आदमी। कभी कभी फैमिली मेंबर नोटिस करता है कि आंखें पीली हो रही है, येलो हो रही है। कभी कभी पेट फूलना शुरू हो जाता है, वजन कम होता है मगर पेट फूल रहा है, पेट में पानी जमना शुरू हो जाता है। रेयरली कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, उसमें कभी कभी खून की उल्टी भी हो सकती है क्योंकि सिरोसिस के कारण खाने के पाइप में कोई नसें फट जाती हैं। तो ये सारे लक्षण जब आते हैं तो वो कह रहा है आपको कि लिवर काफ़ी हद तक ख़राब हो गया है, और तभी नॉर्मली पेशेंट डॉक्टर को मिलने आता है।
0: जी, तो इसका इलाज संभव है पूरी तरह या ये एक लाइलाज बीमारी है, हमेशा दवा खानी पड़ती है?
1: नहीं, दवाई तो हमेशा खानी पड़ती है। इट इज़ इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है अगर हमको कोई और कारण पकड़ में आ जाए। कभी कभी सिरोसिस के साथ हेपेटाइटिस होता है जो इंडिया में कॉमन है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उसको हम अगर ट्रीट कर दें तो खराब लिवर को भी बचा सकते हैं और ज़िंदगी कट सकती है। फैटी लिवर मगर ऐसी बीमारी है जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अगर आपको सिरोसिस हो जाए तो आगे जाके धीरे धीरे बढ़ती है। हम बेसिकली उनके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे खून की उल्टी होना, पेट में पानी बनना, थकान होना, हीमोग्लोबिन कम होना, उसको ठीक कर सकते हैं। पर एक बार सिरोसिस सेट हो गया है तो वो इरिवर्सिबल बीमारी, और फिर आगे जाके हमको मोस्ट पेशेंट्स का लिवर बदलना पड़ता है, लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं।
0: डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि फैटी लिवर से डायबिटीज़ का क्या संबंध है? क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि मतलब फैटी लिवर हो गया तो डायबिटीज़ होना ज़रूरी है?
1: हाँ, ये अच्छा सवाल है क्योंकि अगर आप इंडिया में देखा जाए तो अगर आप देखें जिनको फैटी लिवर है उनका हम अगर डायबिटीज़ का चेकअप करें तो काफ़ी लोगों को प्री डायबिटीज़ होता है, मतलब डायबिटीज़ शुरुआत होने की चांसेस है। HbA1c जो बोलते हैं वो 5.7-5.8 होता है। मोस्ट प्लेसेस में आप देखें अब्रॉड, अगर आपका HbA1c 5.6-5.7 है, आपको प्री डायबिटीज़ है, आपको 10 या 12 साल बाद डायबिटीज़ शुरू होनी होनी है। इंडिया में फॉर सम रीज़न, ये हमारा जेनेटिक्स है या कुछ है, कि अगर हमको फैटी लिवर है और हमारा HbA1c प्री डायबिटिक रेंज में, 3-4 साल में या 5 साल में आपको डायबिटीज़ हो सकती है। तो अगर आपको फैटी लिवर है, ये कह रहा है कि आपको आगे जाके डायबिटीज़ हो सकती है। नाउ उल्टा सवाल, अगर आपको डायबिटीज़ है तो रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज़ वेरी हाई। नॉट ओनली रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज़ हाई, रिस्क ऑफ फैटी लिवर विद कॉम्प्लिकेशन, मतलब जो डैमेज फाइब्रोसिस बोलते हैं वो काफ़ी हाई होती है। तो अगर आप देखें आजकल के जो डायबिटीज़ की दवाई शुरू हुई है, जो न्यू दे रहे हैं, जो वेट लॉस ड्रग जो डायबिटीज़ के लिए एक्चुअली अप्रूव्ड है, वो फैटी लिवर को भी हेल्प करती है।
0: ओके,
1: सो इट वर्क्स बोथ वेज।
0: अच्छा, तो इसके लिए क्या अवेयरनेस क्या होनी चाहिए कि इन बीमारियों से मरीज मतलब उसके चपेट में ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए?
1: ना, अवेयरनेस यही है कि जैसे हमने कहा है खाने पे ध्यान दो। हमारा जो इंडियन डाइट है वो काफ़ी पोअर है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन इनटेक, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन बहुत कम है। तो अगर हम प्रोटीन बढ़ाएं डाइट में, कार्बोहाइड्रेट कम करें, तो अपने आप थोड़ा वेट लॉस होगा, मसल मास बढ़ेगा, रिस्क ऑफ डायबिटीज़ कम हो जाएगा। एक्सरसाइज करो, जो मैंने गाना थोड़ी देर पहले बजाया था भाग मिल्खा भाग, उसका यही है कि भागो, एक्सरसाइज करो। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम सबको पूछता हूँ, मेरा पहला सवाल यही होता है कि एक्सरसाइज कर रहे हो? और सबका सवाल, आधे लोग बोलते हैं हाँ वॉक करते हैं। तो वॉक इज़ नॉट गुड। अगर आप जो भी डेटा देखें तो 150 से 200 मिनट की एक्सरसाइज हफ्ते की जरूरी है अगर आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है, जिसमें इट इंक्लूड्स कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, जिसमें वॉकिंग

0: करते हैं और आपकी सांस फूलनी चाहिए, पसीना आना चाहिए। आप खाली वॉक करो, काम पे जाओ, स्टेशन तक जाओ, वापस आ जाओ, दैट इज नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सांस फूलनी चाहिए, हार्ट रेट बढ़ना चाहिए एज अप्रोप्रिएट, और थोड़ी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। हफ्ते में दो दिन थोड़े वेट्स करने चाहिए जिससे आपका मसल बढ़े। अगर आपका मसल का साइज बढ़ेगा, आपका वेट लॉस जल्दी होगा, डायबिटीज नहीं होगी या कंट्रोल में आएगी, बॉडी का फैट निकलेगा क्योंकि मसल ज्यादा बर्न करेगा एनर्जी को। तो अगेन चेकअप कराते रहिए, बेसिक ब्लड टेस्टिंग का, एक्सरसाइज कर कीजिए 150 मिनट्स मिनिमम अ वीक, खाने में ध्यान दीजिए, प्रोटीन बढ़ाए अपने खाने में, और रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहिए।
1: जी, कई बार लोग, ये भी भ्रांति है, मतलब गलतफहमी है लोगों में कि प्रोटीन खाने से पाचन की समस्या बढ़ती है, एक उम्र के बाद प्रोटीन लोगों को कम कर देना चाहिए, तो दाल कम कर देते हैं लोग, चने खाना, तो इसके बारे में थोड़ा।
0: हाँ, ये अच्छा सवाल है बहुत, क्योंकि जब भी मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको फैटी लिवर है, तो उनके दो जवाब होते हैं सबके, कि हम तो अल्कोहल पीते नहीं है, क्योंकि सबके मन में भ्रम है कि अल्कोहल से फैटी लिवर होता है, और दूसरा होता है कि हम तो शाकाहारी है, हम तो कांदा लहसुन भी नहीं खाते। मेरा मानना है कि इन इंडिया बीइंग अ वेजिटेरियन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर लिवर डिजीज, बिकॉज वेजिटेरियंस में हम ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। अगर हमारी डाइट देखे 70-80% कार्ब्स है, 10% फैट होगा, 10-15% प्रोटीन है, और ये वेस्टर्नाइज डाइट देखो तो 30% तक प्रोटीन होता है डाइट में। तो प्रोटीन डाइजेस्ट करना इजी है, इनफैक्ट हमारे जो दालें हैं वो ज़्यादा इजी है डाइजेस्ट करना देन अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन, जैसे अपने एग्स हो गए, मीट्स हो गए। हम शाकाहारी तो हम नहीं खा सकते, तो ये भ्रम है कि आगे जाके नहीं खाते हम, इनफैक्ट बढ़ाना चाहिए थोड़ा, उससे आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, आपकी मसल स्ट्रांग रहेगी, बोन स्ट्रांग रहेंगे, फ्रैक्चर्स होने के चांस कम हो जाते हैं।
1: जी, तो अभी जो भी श्रोता सुन रहे हैं तो अपने डाइटिशियन से संपर्क करें या ये खोजें कि कहाँ कहाँ प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में है, और आज से प्रोटीन की डाइट शुरू करें। इसमें हम भी शामिल हैं, हम अपने को भी शामिल करते हैं इसमें। और अब एक गाना सुने डॉक्टर साहब।
0: बिल्कुल, तो एक और गाना जो मुझे बहुत पसंद है, स्कूल डेज में हमने सुना था जब मेरे 10th खत्म हुई थी, जो जीता वो सिकंदर का गाना, यहाँ के हम सिकंदर।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना चुना है, और सभी हमारी बातचीत से मेल खा रहे हैं। अगर अपनी सेहत अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो जाहिर सी बात है हम अपने क्षेत्र में सिकंदर बने रहेंगे। सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, ये जो जीता वही सिकंदर फिल्म का गाना था, और इस गाने के साथ खुद को सिकंदर बनाए रखने के लिए अपनी सेहत को ठीक रखना बहुत जरूरी है। अपने श्रोताओं को बता दें, विविध भारती से यह कार्यक्रम सेहतनामा, और आज हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट से संबंधित अन्य बीमारियों के बारे में। हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में है मुंबई के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से कुछ सवाल आए हैं। ये कार्यक्रम विविध भारती के फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है, तो वहाँ से कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है। मतलब कई श्रोताओं ने लिखा है, किसी ने लिखा है कि हमारी माँ को है, किसी ने लिखा मुझे है, किसी ने लिखा मेरी बहन को है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है IBS, और कैसा होना चाहिए खान पान इसके लिए?
1: तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम प्रोबेबली फैटी लीवर के बाद सबसे कॉमन, अगर पेट की बीमारी देखें तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिसमें पेशेंट को लगता है कि पेट फूल जाता है, कभी कभी पेट दर्द करता है, कभी लूज मोशन हो जाते हैं, कभी कब्जियत हो जाती है, कभी आगे पीछे होते रहता है। और इन पेशेंट्स को हम सारी जांच पड़ताल कर ले, हमको कुछ नहीं मिलता, सारा कुछ नॉर्मल मिलता है, तो लॉट ऑफ टाइम ये स्ट्रेस रिलेटेड रहता है या सिचुएशन रिलेटेड रहता है। जैसे बच्चे हों, उनको अगर एग्जाम देने जा रहा हूँ तो बोलते पेट दर्द कर रहा है, या वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है, उल्टी जैसा लग रहा है, या लूज मोशन शुरू हो जाते हैं स्ट्रेस में, तो इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। इसमें इधर आपको डायरिया होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट फूलता है, और अगर पेट साफ हो जाए तो अच्छा लगता है। तो इसकी ट्रीटमेंट बेसिकली होती है, यू नीड टू फाइंड आउट द स्ट्रेस, ट्रीट द स्ट्रेसर, और डाइट के थोड़ा ध्यान दो। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो डाइट में फाइबर ज़्यादा लो, फल फ्रूट ज़्यादा लो। अगर लूज मोशन हो रहे हैं तो कच्चा खाना मत खाओ, पका हुआ खाना खाओ, थोड़ा ब्रेड्स खाओ, राइस खाओ, जिससे पेट थोड़ा बन जाए।
0: ये है। और बाकी नॉर्मल किस तरह की तकलीफ होती है, वोमिटिंग और जो एसिडिटी की समस्या भी होती है, इससे
1: इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अलग।

0: हमारी एसिडिटी अलग बीमारी है। एसिडिटी होता है जब हमको खाने के पाइप में या पेट में या छाती में जलन होनी थी है, वो खाने के बाद हो सकती है, खाली पेट हो सकती है, सोने के बाद होती है, खाना हम लेट खाएं और लेट जाएं और छाती में जलन होती, तो उसको एसिडिटी या गर्ड बोलते हैं। एक बात आपने सही कि ये IBS गर्ड पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो सबकी एक हमको एसिडिटी हो गई है, तो एसिडिटी इज़ अ वेरी स्पेसिफिक टर्म। एसिडिटी मतलब जलना, पेट के ऊपर के हिस्से में जलना, छाती में जलना, कभी कभी उसे खांसी भी हो सकती है, कभी कभी खाना अटकता है गले में, ऐसे लग रहा है, तो उसको एसिडिटी बोलते हैं। IBS होता है पेट फूलना, छाती के नीचे का प्रॉब्लम है वो, पेट फूलना, लूज मोशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए जब पेशेंट हमारे पास आते हैं हमको काफी सवाल पूछने पड़ते हैं कि एक्चुअली बीमारी क्या है, क्योंकि इंडिया में सॉर्ट ऑफ हो गया कि सब बीमारी इज एसिडिटी। हर एक बीमारी, अगर लूज मोशन को एसिडिटी बोल देते हैं, कॉन्स्टिपेशन को एसिडिटी बोल देते हैं, पर एसिडिटी इज अ सेपरेट प्रॉब्लम।
1: जी।

0: साहब गाने के बाद हम जानना चाहते हैं कि दरअसल डॉक्टर साहब कुछ मरीज को ये समस्या भी होती है कि उन्हें जलन नहीं महसूस होती है, एसिडिटी फील नहीं होता है, लेकिन फिर उनको ऐसे लगता है ऊपर ऊपर कुछ आ रहा है और वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, कई कई वॉमिटिंग, तो ये क्या?
1: हाँ, तो ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ एसिडिटी ओनली। इसमें बेसिकली खाना ऊपर चढ़ के आ रहा है
0: जी।
1: तो जो हमारे खाने का पाइप होती है, इसोफेगस जिसको बोलते हैं, और पेट होता है, उसके बीच में एक वाल्व होता है। किसी किसी का ये वाल्व लूज हो जाता है विद टाइम, उसके कई कारण होते हैं। उसके बाद अगर हम हैवी खाना खा लें तो वो खाना ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, वो शायद ना जले मगर ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, मुंह में आएगा, कभी कभी मुंह में खट्टा पानी आ जाता है, कभी लेट खाना खाओ लेट जाओ तो रात को उठना पड़ता है क्योंकि खट्टा पानी ऊपर आ गया है और खांसी शुरू हो गई है। तो इसको रीगर्जिटेशन बोलते हैं, मतलब जो पेट का खाना है जो पेट के नीचे जाना चाहिए वो अभी वापस खाने के पाइप में आ गया है
0: जी। तो इसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है?
1: तो इसका बेसिक ट्रीटमेंट तो हम वही करते हैं कि खाना टाइम पे खाओ, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लो। सबसे इम्पॉर्टेंट है खाने में और सोने में 3 घंटे का गैप रखिए। खाने के बाद टहलिए थोड़ा 10-15 मिनट तक, खाना नीचे चले जाए। दूसरी चीज़ कहूँगा, जो

0: आपको लग रहा है आपको तकलीफ दे रही हो, तो किसी किसी को स्पाइसी फूड तकलीफ देता है, तला हुआ तकलीफ देता है, या ज़्यादा पानी नहीं पीना खाने के साथ, जैसे बहुत लोग आजकल कोका कोला पीते हैं या एरिएटेड ड्रिंक्स पीते हैं खाने के साथ, तो वो फिर गैस ऊपर चढ़ के आती है और खाना भी उसके साथ चढ़ के आता है।
1: ओ
0: तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, लेट नाइट मील्स मत खाओ, जो चीज़ आपको तकलीफ देती है वो मत लो, दैट शुड हेल्प योर सिम्टम्स। अगर इसके बावजूद नहीं ठीक हुआ फिर हम दवाई शुरू करते हैं।
1: जी, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मैंने तो हर किसी को सुना है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो इसकी जांच की कोई व्यवस्था है कि कैसे पता चले कि एसिडिटी है, क्या वजह, कारण क्या है, असली कारण क्या है?
0: हाँ, तो ये भी बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि मोस्ट टाइम्स हम देखते हैं पेशेंट फार्मेसी के पास जाते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, एक दवाई ले ली, वो लेते रहते हैं लेते
1: लेते
0: रहते
1: रहते
0: हैं,
1: हैं।
0: हाँ लेते रहते हैं, बट ये दवाई भी लंबे देर तक लेना नहीं चाहिए। दूसरा, थोड़े सवाल हम पूछते हैं पेशेंट्स
1: जी
0: को,
1: जी
0: जैसे अगर खाना अटके, जब खाओ खाना अटके तो वो सही नहीं है, मतलब आपको एसिडिटी इतनी होगी कि खाने की पाइप छोटी होगी, तब हमको एंडोस्कोपी से देखना पड़ता है।
1: जी
0: खाना अटकना लगे, वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाए, वजन कम हो, या आफ्टर द एज ऑफ 40-50 थोड़ा एज हो गई हो और फिर सडनली न्यू सिम्टम शुरू हो जाए, या खांसी हो रही हो रात भर, तब उस टाइम पे दीज आर व्हाट वी कॉल अलार्म सिम्टम्स। अलार्म सिम्टम्स मतलब ये जब पेशेंट हमको बोलना शुरू करता है तब हमारे सॉर्ट ऑफ एंटीना ऊपर चढ़ जाते हैं कि अभी देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, तब हम एक एंडोस्कोपी करके देखते हैं खाने के पाइप में और पेट में कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है।
1: और डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कुछ मरीज को हमने ये भी सुना है कहते हुए कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मैंने सारे टेस्ट करवा लिए और सारे ट्रीटमेंट कर लिए, सारी दवाएं खा ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ, और मैं तो अभी योगा एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, मतलब ये अमूमन लोग कहते हैं, तो फिर क्या होता है? और कई लोगों ने तो ये भी कुछ एक वायरस, एच पायलोरी नाम का वायरस होता, उसकी भी जाँच नॉर्मल है, फिर क्या?
0: हाँ, तो एक्चुअली एच पायलोरी एक कॉमन इन्फेक्शन है जो पेट के लाइनिंग में रहता है, पर एक्चुअली जिसको एच पायलोरी होता है उसको छाती की एसिडिटी कम होती है, क्योंकि ये जो ऐसा बैक्टीरिया है जो एसिड बनने नहीं देता है। इनफैक्ट अगर हम एंडोस्कोपी एसिडिटी के लिए कर रहे हैं, गर्ड के लिए जिसको बोलते हैं रिफ्लक्स डिजीज, तब हम एच पायलोरी को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। अगर पेट में जलन हो रही है, मतलब छाती में नहीं बोल रहा, खाली पेट में दुख रहा है या पेट में जलन हो रही है, तब हम एंडोस्कोपी करके या कोई स्टूल टेस्ट करके या ब्रेड टेस्ट करके एच पायलोरी को ढूंढते हैं। अगर एच पायलोरी मिले उसको ट्रीट करें तो काफ़ी लोगों के पेट के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। बट जस्ट बिकॉज हमको एच पायलोरी मिला डज नॉट मीन के दैट इज द फाइनल प्रॉब्लम। बहुत बार पेशेंट को अगेन सिम्टम्स होते हैं, पेट में जलना, अच्छा नहीं लगना, दर्द करना, पर हमने एंडोस्कोपी कर ली, ब्लड टेस्ट कर लिए, सारा कुछ नॉर्मल है, तो ये बीमारी को हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं। जैसे IBS बोला मैंने पहले,
1: जी,
0: सब टेस्ट कर लिए कुछ नहीं मिला, ये ऊपर के पेट की बीमारी डिस्पेप्सिया, मतलब आपको दर्द हो रहा है, सिम्टम्स हो रहे हैं मगर सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तो
1: जी
0: उसको
1: जी
0: हम सिम्टोमेटिकली मैनेज करते हैं, जो तकलीफ है उसकी दवाई दे दो।
1: जी तो इसका कुछ मतलब, इसका फिर इलाज संभव होता है, इसकी दवा
0: ऑफ कोर्स
1: देने से?
0: इसकी दवा होती है, तो मोस्ट टाइम्स हम एसिडिटी की दवाइयों से ही शुरू करते हैं। अगर एसिडिटी की दवाई ना हो तो हम सॉर्ट ऑफ पेशेंट को पूछ के ढूंढने की कोशिश करते हैं, कभी कभी कोई फूड ट्रिगर होता है, कभी कभी फूड एलर्जीज होती हैं, जैसे एक एक तरह की गेहूं की एलर्जी इंडिया में अभी ज़्यादा आ रही है, सीलैक डिजीज़ बोलते हैं, जो ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ये स्ट्रेस रिलेटेड भी रहती है, तो वन ऑफ द मेडिसिन वी गिव पेशेंट्स इज स्ट्रेस कम करने की, एंग्जाइटी कम करने की मेडिसिन देते हो, वो लॉन्ग टर्म ले सकते हो, उससे माइंड काम होता है तो पेट काम होता है, माइंड एंड स्टमक आर कनेक्टेड, उसको गट ब्रेन एक्सेस बोलते हैं। अगर पेट ठीक नहीं होगा तो मन ठीक नहीं होता, इसी तरह अगर मन ठीक नहीं हुआ तो पेट ठीक नहीं होगा।
1: दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और
0: करेक्ट,
1: वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब बहुत सारे मन को ठीक करने के लिए कई बार हम संगीत का दामन थाम लेते हैं, तो एक गाना सुनते हैं और यहाँ पर अपने सारे श्रोताओं के मन को ठीक किया जाए।
0: तो एक गाना मुझे बहुत पसंद है, अगेन शाहरुख खान का ही गाना है, छैया छैया।
1: चल छैया छैया सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, ये बात जो चल रही थी एसिडिटी की, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। मैंने देखा है कि महानगरों में ये समस्या ज़्यादा होती है, छोटे शहरों में जब जाते हैं तो लोगों को हम कम सुनते हैं ऐसा कहते हुए। तो एक तो ये बात बताइए कि ये जो समस्या है एसिडिटी की, कि सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, तो क्या इन बीमारियों के लिए जो दवाएं खाई जाती हैं एसिडिटी की, लोग गोली खा लिए, कुछ लोग तो ये भी ट्राई करते हैं कि 2 दिन के गैप के बाद खा लो ठीक रहेगा, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, ठीक है या नहीं करना चाहिए?
1: हाँ, तो बेसिकली कभी भी हम ये दवाई दें ना, तो हमेशा एंड पॉइंट होना चाहिए कि कब ये दवाई बंद करें। तो मोस्ट टाइम्स हम पेशेंट्स को ये दवाई बंद करने की कोशिश करते हैं। एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये समस्या है कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट है वो रेगुलेटेड नहीं है। आप जाके

0: करते हैं कि 2 दिन के गैप के बाद खा लो ठीक रहेगा, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, ठीक है या नहीं करना चाहिए?
1: हाँ, तो बेसिकली कभी भी हम ये दवाई दें ना, तो हमेशा एंड पॉइंट होना चाहिए कि कब ये दवाई बंद करें। तो मोस्ट टाइम्स हम पेशेंट्स को ये दवाई बंद करने की कोशिश करते हैं। एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये समस्या है कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट है वो रेगुलेटेड नहीं है। आप जाके दवाई मांगो, आपको दे देंगे दवाई। तो ये बाहर के मुल्कों में संभव नहीं है, बिकॉज ये दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसिडिटी की दवाई अगर ज़्यादा देर तक लेते रहो तो बोन लॉस होता है, किसी किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। पेट में थोड़ा एसिड तो चाहिए डाइजेशन के लिए, तो कभी कभी पेट के इन्फेक्शन होने के रिस्क भी ज़्यादा रहते हैं। विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स जो पेट से अब्सॉर्ब होते हैं पेट के आगे से, वो नहीं होंगे, जैसे B12 डेफिशिएंसी हो जाए। कभी कभी आयरन भी कम हो जाता है दवाई लंबे देर तक लेने के लिए, तो रेयरली ये किडनी को भी इफेक्ट करता है। तो ये दवाइयाँ जरूरी हैं। है हमारे काफ़ी ऐसे पेशेंट जो सालों साल लेते हैं, मगर वी हैव टू फाइंड अ वैलिड रीजन कि इनको क्यों चाहिए ये दवाई। जितना हो सके हमको दवाई बंद करनी चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे आपने कहा दवाई दूसरे दिन तीसरे दिन ले लेते हैं, उसको ऑन डिमांड मेडिसिन बोलते हैं, विच इज़ अ प्रॉब्ली अ गुड वे टू डू, कि अगर आपको हमेशा ज़रूरत नहीं तो क्यों लोगे। मैं कई पेशेंट्स को कहता हूँ कि एक बार आपका कोर्स ख़त्म हो जाए, सपोज आपने रात को खाना खाने जाना है, शादी पे जाना है, खाना लेट होने वाला, आपको पता है आपको रात को तकलीफ होगी, तो शादी के जाने के पहले एक गोली लेते हो जाओ।
0: जी जी।
1: सो दैट इज़ कॉल्ड ऑन डिमांड मेडिसिन, विच इज़ प्रॉब्ली बेटर देन टेकिंग अ मेडिसिन रोज।
0: जी, लेकिन वो आदत ना डाल लें, ये गड़बड़ है। और ये एक जो समस्या उल्टी के बारे में, उल्टियाँ होती हैं कुछ मरीज को, फिर रुकती नहीं है उल्टियाँ, तो क्या वो भी इसी वजह से होती हैं? ये किस तरह की बीमारी का द्योतक है?
1: अगर कंटिन्यूसली पेशेंट्स को उल्टी होते रहे तो दैट इज़ अ इंडिकेशन कि हमको एक बार एंडोस्कोपी करके देखना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। इसके कई कारण हो सकते हैं, अगेन माइंड से लेके पेट से लेके। आजकल हम ज़्यादा देखते हैं डायबिटीज़ पेशेंट्स को, जैसे डायबिटीज़ पेशेंट्स को अगर डायबिटीज़ बहुत देर तक हो जाए तो जो मेन नसें होती हैं जो पेट को स्टिमुलेट करती हैं, जब हम खाना खाते हैं तो पेट हिलना शुरू करता है, तो डायबिटीज़ पेशेंट को पेट हिलता नहीं है इतना, तो उसको गैस्ट्रोपरीसिस बोलते हैं कि पेट जो खाना खाया है वो पेट में ही रहता है और थोड़ी देर के बाद वॉमिट हो जाती है। अगेन स्ट्रेस से भी हो सकती है, एंग्जाइटी से वॉमिटिंग, किसी किसी को पेट में अल्सर हो सकता है जिसके कारण पेट के जो एंड पॉइंट है जहाँ से खाना इंटेस्टाइन में जाता है वो छोटा हो जाता है, तो खाना उधर अटक के वॉमिट हो जाता है। एंड रेयरली अगर वॉमिटिंग जारी रहे तो वी हैव टू थिंक अबाउट अदर प्रॉब्लम लाइक कैंसर्स ऑफ द इंटेस्टाइन आल्सो।
0: तो मतलब किसी भी बीमारी को, मतलब पेट से संबंधित ये जो एसिडिटी की समस्या है, छोटी समस्या लगती है लेकिन इग्नोर ना करें, डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर क्या कहते हैं वैसा करें।
2: आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ

0: छाया गीत आप सुनेंगे।
1: FM 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है। शाम के 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं महिला जगत कार्यक्रम।

अभिवादन हमारी सभी बहनों का उनके अपने पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत में। मैं आपकी रेडियो सखी अनामिका एक बार फिर से हाजिर हो चुकी हूँ आपका अपना कार्यक्रम लेकर। सखियों, आज मैं बहुत ही गंभीर और खास विषय पर आपसे बात करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आप सबका हालचाल तो जान लूँ। तो हमेशा की तरह मेरी उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ हैं और प्रसन्न हैं। अगर हम जिंदगी में ज़्यादा दुखी हैं तो भी हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहता, और जिंदगी में ज़्यादा सुखी हैं तो भी हम ज़रूरत से ज़्यादा कल्पनाओं की दुनिया में खोए रहते हैं और वास्तविक जीवन में वास्तविक चीज़ों को अनुभव करना भूल जाते हैं। इसीलिए हमें जीवन में बैलेंस रहना चाहिए, यानी कि संतुलित रहना चाहिए, ना ज़्यादा दुखी और ना ज़्यादा खुश। आज जिस विषय पर मैं बात करने जा रही हूँ वो है अंगदान, यानी कि महादान। अंगदान मानवता की सबसे महान सेवाओं में से एक है। जब कोई व्यक्ति अपने शरीर के अंग किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करता है तो वह किसी को नया जीवन देने का कार्य करता है। इसीलिए कहा जाता है कि अंग दान है सबसे बड़ा दान। ये दान केवल किसी की मदद ही नहीं करता बहनों, बल्कि कई परिवारों की खुशियां भी लौटा देता है। श्रोताओं, अंगदान वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद या कुछ मामलों में जीवित रहते हुए अपने अंग किसी दूसरे रोगी को दान करता है। हृदय, किडनी, यकृत, लीवर, फेफड़े, अग्नाशय, नेत्र आदि अंग दान किए जा सकते हैं। आज दुनिया भर में लाखों लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता

आवश्यकता होती है। कई बार समय पर अंग ना मिलने के कारण रोगियों की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे में अंगदान उनके लिए जीवन की नई आशा बनता है और एक व्यक्ति का अंगदान कई लोगों की जान बचा सकता है। बहनों, अंगदान के बहुत सारे लाभ हैं। जैसे ज़रूरतमंद लोगों को नया जीवन मिलता है, नेत्रदान से किसी अंधे व्यक्ति को दृष्टि मिल सकती है, अंगदान समाज में सेवा और मानवता की भावनाओं को बढ़ावा देता है, दानकर्ता की मृत्यु के बाद भी उसके अंग दूसरों के जीवन में उपयोगी बने रहते हैं, इससे कई परिवारों को अपने प्रियजनों को खोने से बचाया जा सकता है। आज भी हमारे देश में अभी भी अंगदान के प्रति जागरूकता की कमी है। कई लोग जानकारी के अभाव या भ्रांतियों के कारण अंगदान नहीं करते, इसीलिए विद्यालयों, सामाजिक संस्थाओं और मीडिया के माध्यम से लोगों को अंगदान के महत्व के बारे में जागरूक करना ज़रूरी है। आखिर में मैं कह सकती हूँ कि हम सभी को अंगदान के महत्व को ज़रूर समझना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में अंगदान ही सबसे बड़ा दान है, क्योंकि इससे ही आखिर हम किसी को नया जीवन दे सकते हैं, उसके जीवन में खुशियाँ भर सकते हैं। इतनी अच्छी जानकारी के साथ मैं एक अल्प विराम लेती हूँ और सुनवाती हूँ आपको ये गीत।

सखियों, गीत के बाद अब हम अपने दूसरे विषय की ओर रुख करते हैं। सखियों, आज के समय में धूम्रपान बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसमें तंबाकू का उपयोग करना तो आम सी बात हो गई है। भारत सहित विश्व के अनेक देशों में तंबाकू का सेवन एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुका है। अधिकांश लोग तंबाकू को कम हानिकारक समझकर बहुत अधिक सेवन करने लग जाते हैं और फिर गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। गुटखा, तंबाकू, जर्दा, सूती और खैनी आदि धुआं रहित तंबाकू के ही प्रमुख रूप हैं। ये उत्पाद भले ही धुआं उत्पन्न नहीं करते, लेकिन ये फिर भी गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। इसी समस्या से निपटने के और लोगों को नशे की बुरी आदतों से दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। धुआं रहित तंबाकू उत्पादों का स्वास्थ्य पर प्रभाव व नशा मुक्त भारत अभियान के तहत स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाता है। मुख और गले का कैंसर। धुआं रहित तंबाकू का सबसे गंभीर प्रभाव मुंह और गले के कैंसर के रूप में देखा जाता है। लंबे समय तक तंबाकू चबाने से मुंह के अंदर घाव, सफ़ेद धब्बे और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। दांत और मसूड़ों की समस्याएं भी तंबाकू से हो सकती है। इसके सेवन से दांत कमजोर हो जाते हैं, मसूड़ों में सूजन आने लगती है और दांत समय से पहले गिर सकते हैं।

0: मुंह से दुर्गंध आना भी एक सामान्य समस्या हो सकती है तंबाकू के सेवन करने से। निकोटीन रक्तचाप और हृदय गति को बढ़ाता है। इससे हृदय घात यानी कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक और अन्य हृदय संबंधी रोगों का भी खतरा बढ़ जाता है। तंबाकू में मौजूद निकोटीन व्यक्ति को इसकी आदत डाल देता है। धीरे धीरे व्यक्ति इस पर निर्भर हो जाता है और इसे छोड़ना कठिन हो जाता है। इससे मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन भी बढ़ सकता है। इसके अलावा तंबाकू का सेवन पेट और पाचन तंत्र को भी प्रभावित करता है। इससे भूख कम लगना, अपच और अन्य पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए तंबाकू का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए या बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए। इसी जानकारी को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं हम ये गीत और उससे पहले सुनते हैं एक संदेश।
1: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं।
2: जैसे?
1: जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है।
2: तो लेन देन?
1: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
2: ओ,
1: जैसे UPI से।
2: अच्छा।
1: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
2: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
2: आम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
4: हर लेन देन अब है आसान।

गीत से पहले हम बात कर रहे थे तंबाकू के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों की। आजकल आकर्षक पैकेजिंग और साथियों के दबाव के कारण कई युवा तंबाकू का सेवन शुरू कर देते हैं। कम उम्र में नशे की लत लगने से उनका स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य प्रभावित होता है। इसीलिए युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं और समाज को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना तथा नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करना है। नशा छोड़ने वाले लोगों को परामर्श और सहायता प्रदान करना है। विद्यालयों, महाविद्यालयों और समुदायों में जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित करना, इसके साथ ही स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवन शैली को बढ़ावा देना है। श्रोताओं और मेरी प्यारी सखियों, नशा मुक्त भारत का सपना तभी साकार होगा जब प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे। हमें स्वयं तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए तथा अपने परिवार और समाज को भी इसके प्रति सचेत करना चाहिए। इस अभियान में देश के हर नागरिक को साथ आना चाहिए, तभी कुछ किया जा सकता है।

सखियों, नींद की बात करूं तो हर किसी को नींद बहुत प्यारी होती है, और जब बात सुबह की नींद की होती है तो फिर क्या कहना। लेकिन आज हम पर्याप्त नींद की बात करेंगे, जो शरीर के लिए महत्वपूर्ण है और शरीर की बहुत सी बीमारियों को खुद से ठीक कर देती है। जिस प्रकार भोजन पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, बिल्कुल वैसे ही पर्याप्त नींद के बिना स्वस्थ जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। नींद का सीधा संबंध मानसिक स्वास्थ्य से है। अच्छी नींद लेने से मस्तिष्क को पर्याप्त विश्राम मिलता है, जिससे याददाश्त, सोचने समझने की क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। गहरी और पर्याप्त नींद व्यक्ति को भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाती है। पर्याप्त नींद लेने वाला व्यक्ति अधिक शांत, प्रसन्न और सकारात्मक सोच वाला होता है। वह कठिन परिस्थितियों का भी सामना धैर्यपूर्वक कर सकता है। नींद की कमी होने पर व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता है, उसका व्यवहार असंतुलित हो सकता है। नींद की कमी से तनाव, चिंता, चिड़चिड़ापन और अवसाद जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। नींद पूरी ना होने पर व्यक्ति थकान महसूस करता है और उसकी ऊर्जा कम होने लगती है, उसका आत्मविश्वास भी प्रभावित होता है। सखियों, आज के आधुनिक युग में मोबाइल फोन, इंटरनेट, टेलीविज़न और व्यस्त जीवन शैली के कारण लोगों की नींद प्रभावित हो रही है। देर रात तक जागने और सुबह जल्दी उठने की आदत के कारण नींद का समय कम हो जाता है। नींद की कमी से लगातार थकान और कमजोरी महसूस होती है। सिर दर्द और आँखों में जलन, एकाग्रता में कमी, याददाश्त कमज़ोर होना, तनाव और चिड़चिड़ापन, मोटापा और मधुमेह का खतरा, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग, कार्य क्षमता में गिरावट महसूस होने लगती है। अच्छी, गहरी और पर्याप्त नींद के लिए कुछ सरल आदतें अपनाई जा सकती है। प्रतिदिन निश्चित समय पर सोए और जागे। सोने से पहले मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर का कम उपयोग करें। रात का भोजन हल्का और समय पर करें। नियमित व्यायाम और योगा करें। सोने का कमरा शांत, स्वच्छ और आरामदायक रखें। चाय, कॉफ़ी और अन्य उत्तेजक पदार्थों का अधिक सेवन ना करें। सोने से पहले सकारात्मक विचार रखें और तनाव से दूर रहें। श्रोताओं, गहरी और पर्याप्त नींद स्वस्थ जीवन की आधारशिला है। ये शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करती है, मानसिक तनाव को कम करती है और व्यक्ति को शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखती है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में भी हमें अपने नींद के महत्व को समझना चाहिए और इसे अपनी दिनचर्या का अनिवार्य भाग बनाना चाहिए। जो व्यक्ति पर्याप्त और गहरी नींद ले

सकता है वह अधिक स्वस्थ, अधिक प्रसन्न, ऊर्जावान और सफल जीवन जी सकता है। इसीलिए ये कहना बिल्कुल उचित है कि गहरी और पर्याप्त नींद अच्छी सेहत की गारंटी भी है और ज़रूरी भी है। आज आपने हमारे सभी विषयों को बहुत ध्यान से सुना होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी सभी बहनों ने आज जितने भी विषय बताए गए हैं उन्हें बहुत ही ध्यान से और बहुत गौर से सुना होगा और उनके जीवन में ये विषय बहुत अच्छे से काम आएंगे। इसके साथ ही आपकी रेडियो सखी अनामिका अब आपसे लेती है विदा इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगी नए विषय, नई जानकारी और गीत संगीत के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और सुनना ना भूलिए रोज़ शाम 5 बजे आपका अपना कार्यक्रम महिला जगत।

अभी आप महिला जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। शाम के 5:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं युवानी कार्यक्रम।

आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं आपकी प्यारी दोस्त आरजे वंशिका। स्वागत करती हूं आपका अपने फेवरेट रेडियो शो युववाणी में। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने आई हूं जो शायद हर उस इंसान के दिल को छू जाएगी जिसने कभी कोई सपना देखा हो। एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपने कभी असफलता देखी है? कभी किसी परीक्षा में उम्मीद से कम अंक आए हैं? कभी किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए हो? या कभी किसी अपने ने आपकी मेहनत पर सवाल उठाए? अगर जवाब हाँ है तो सबसे पहले खुद को बधाई दीजिए, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने कोशिश की थी। दोस्तों, हम अक्सर सफल लोगों को देखकर सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी में सब कुछ आसान रहा होगा, लेकिन सच तो ये है कि सफल लोग भी असफल होते हैं। फ़र्क बस इतना सा होता है कि वो असफलता को लास्ट चैप्टर नहीं बल्कि नेक्स्ट स्टेप या चैप्टर मानते हैं। ज़रा सोचिए, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है? 10 बार 20 बार, शायद उससे भी ज़्यादा। लेकिन क्या वो ये सोचकर बैठ जाता है कि चलना मेरे बस की बात नहीं? वो फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है और एक दिन दौड़ने लगता है। दोस्तों, ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम गिरने से नहीं हारते, हम हार तब जाते हैं जब उठना छोड़ देते हैं। एक शायरी सुनाती हूँ इसी बात पर। हार कर बैठ जाना कि हार कर बैठ जाना हार की पहचान है, गिर कर फिर संभल जाना ही इंसान की शान है। जी हाँ दोस्तों, कई लोग असफलता को बदनामी समझते हैं, लेकिन सच कहूँ, असफलता कोई दाग नहीं है, वो तो एक आईना है जो हमें हमारी कमियाँ दिखाता है। अगर ज़िंदगी में कभी हार नहीं मिली तो शायद आपने कुछ बड़ा करने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि जहाँ सपने बड़े होते हैं वहाँ चैलेंजेस भी बड़े होते हैं, और जहाँ चैलेंजेस बड़े होते हैं वहाँ असफलताएं भी मिलती हैं। लेकिन याद रखिए, असफलता आपको रोकने नहीं, स्ट्रॉन्ग पावरफुल बनाने आती है। कभी कभी हम पूरी मेहनत करते हैं फिर भी रिजल्ट्स हमारे अकॉर्डिंग नहीं आते, तब मन कहता है बस अब नहीं, लेकिन उसी टाइम एक आवाज़ दिल से भी निकलती है, एक कोशिश और कई बार यही एक कोशिश और ज़िंदगी बदल देती है। कश्तियाँ डूब भी जाए तो समंदर नहीं रुकते, हौसले टूट भी जाएं तो मुकद्दर नहीं झुकते। दोस्तों, हर चमकते हुए चेहरे के पीछे एक अंधेरी रात ज़रूर होती है, हर

सफलता के पीछे अनगिनत असफलताएं जरूर होती हैं, लेकिन हम अक्सर सिर्फ मंजिल देखते हैं, सफर नहीं। हमें ताज दिखाई देता है, उसके पीछे का स्ट्रगल और सेक्रीफाइस नहीं। हमें तालियां सुनाई देती हैं, वो अकेलेपन की रातें नहीं दिखती जब कोई इंसान खुद पर भरोसा बनाए रखने की लड़ाई लड़ रहा होता है। क्योंकि सक्सेस कभी लिफ्ट से नहीं मिलती, उसके लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, और हर सीढ़ी पर पेशेंस, हार्डवर्क, सेक्रीफाइस और स्ट्रगल का टेस्ट होता है। तो चलो दोस्तों, एक और शायरी हो जाए कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, जब लोग आपका मजाक उड़ाएं, जब आपके अपने ही आप पर शक करें, जब मेहनत का फल देर से मिले, तब हार मान लेना सबसे आसान रास्ता लगता है। लेकिन याद रखिए, आसान रास्ते अक्सर आसान मंजिलों तक ही ले जाते हैं। बड़ी मंजिलें पाने के लिए कठिन रास्तों से गुजरना ज़रूरी है, क्योंकि हीरा भी कोयले की खान से निकलता है, सोना भी आग से तपकर निखरता है, और इंसान भी संघर्षों से गुजरकर स्ट्रांग और पावरफुल बनता है। कभी कभी ज़िंदगी हमें वहाँ तक धकेल देती है जहाँ लगता है कि बस अब कुछ नहीं बचा, लेकिन शायद वही मूमेंट हमारी सबसे बड़ी शुरुआत का साइन होता है। दोस्तों, दुनिया आपको हजार वजह बताएगी कि आप क्यों नहीं कर सकते, लेकिन सफलता सिर्फ एक वजह पूछती है, आप क्यों कर सकते हैं। अगर आपको खुद पे पूरा विश्वास है तो सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, रास्ते बनते चले जाते हैं। याद रखिए, कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं होता कि उसे पूरा ना किया जा सके, और कोई भी असफलता इतनी बड़ी नहीं होती कि वो हमारा फ्यूचर डिसाइड कर दे। रहा कठिन हो तो मुस्कुराकर चलिए, रहा कठिन हो तो मुस्कुराकर चलिए, ठोकर लगे तो संभल कर चलिए। मंजिल खुद कदम चूमेगी एक दिन, मंजिल खुद कदम चूमेगी एक दिन, बस उम्मीद का दीपक जलाकर चलिए। दोस्तों, आज की बात सिर्फ इतनी सी है कि सफल लोग कभी असफल नहीं होते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भी गिरते हैं, वो भी टूटते हैं, वो भी रोते हैं, लेकिन बस वो कभी रुकते नहीं और हार नहीं मानते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि असफलता रास्ते का पत्थर है, दीवार नहीं। और जो लोग पत्थरों को सीढ़ी बना लेते हैं, वही एक दिन इतिहास रचते हैं। तो बस लास्ट में एक और छोटी सी शायरी हो जाए कि हार की धूल से डरोगे तो जीत का आसमान कहाँ मिलेगा, कि हार की धूल से डरोगे तो जीत का आसमान कहाँ मिलेगा, गिरकर उठना सीखोगे तभी पहचान मिलेगा। रास्ते कठिन हो तो हिम्मत मत खोना कभी, रास्ते कठिन हो तो हिम्मत मत खोना कभी, क्योंकि सूरज को भी चमकने से पहले एक लंबी रात का इंतजार करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आइए इसी के साथ एक छोटा सा म्यूजिक ब्रेक।

आई होप आपने इस गाने को काफी एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल की जिसने ना जाने कितने युवाओं की नींदें उड़ाई है, कितने घरों में बहस करवाई है और कितनी डायरी के पन्ने भरवाए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे सरकारी नौकरी वर्सेस पैशन, दिल की सुने या दुनिया की। एक तरफ वो नौकरी जिसे सुनकर घर वालों की, रिश्तेदारों की, आसपास वालों की आंखें चमक उठती हैं और दूसरी तरफ वो सपना जिसे सोचकर हमारी खुद की आंखें चमक उठती हैं। अब सवाल ये है कि आखिर सही क्या है, सपनों की उड़ान या नौकरी की पहचान? दोस्तों, हमारे देश में ना सरकारी नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं है, वो तो एक सम्मान पत्र की तरह होती है। जैसे कि किसी को सरकारी नौकरी मिलती है, मोहल्ले वाले कहते हैं बेटा तो अब सेट हो गया, रिश्तेदार कहते हैं अब तो शादी की तैयारी करो, और माता पिता उनके चेहरे की खुशी देखने लायक होती है। आखिर सरकारी नौकरी में ऐसा क्या है, चलिए मैं बताती हूँ। देखिए, सरकारी नौकरी में ये बेनिफिट्स है कि सबसे पहले तो आपकी जॉब हमेशा सेफ रहेगी, रेगुलर सैलरी मिलेगी और जो हर इंसान को चाहिए, सोशल रेस्पेक्ट और ऑनर। साथ में फ्यूचर स्टेबिलिटी रहती है, यानी एक ऐसा जीवन जहां अनिश्चितता कंपैरेटिवली कम हो। और सच कहें तो हर फैमिली अपने बच्चे को सेफ, सिक्योर और खुश देखना चाहती है, इसलिए सरकारी नौकरी की डिमांड बिल्कुल गलत भी नहीं है। लेकिन अब दूसरी तरफ चलते हैं, वहां खड़ा है आपका पैशन, आपका ड्रीम और आपका इंटरेस्ट, वो काम जिसे करते समय घड़ी देखनी ही नहीं पड़ती। किसी को गाना पसंद है, किसी को लिखना, किसी को खेलना, तो किसी को एक्टिंग और किसी को डांसिंग, किसी को बिजनेस। पैशन वो चीज़ है जो थकान के बाद भी एनर्जी देती है। एक बहुत फेमस कहावत है, आप सबने सुनी होगी, कि जिस काम से प्यार हो वो काम बोझ नहीं लगता। जी हाँ, लेकिन पैशन का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। यहाँ सक्सेसफुल होने की गारंटी भी इतनी नहीं होती, कई बार स्ट्रगल काफ़ी लंबा भी हो जाता है। लोग सवाल पूछते हैं, इससे होगा क्या, कितना कमा लोगे, फ्यूचर सेफ है या नहीं, और यही सवाल कई सपनों को शुरू होने से पहले ही रोक देते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि असली प्रॉब्लम आखिर क्या है। असली प्रॉब्लम सरकारी नौकरी और पैशन में नहीं है, प्रॉब्लम है तुलना में, कंपेयर करने में। कई बार लोग पैशन को देखकर सरकारी नौकरी वालों को कम समझते हैं, और कई बार सरकारी नौकरी को देखकर पैशन वालों को फेल या अनसक्सेसफुल मान लिया जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि हर इंसान अलग है, हर किसी की मंजिल, हर किसी के गोल, हर किसी का इंटरेस्ट अलग है, हर किसी की खुशी भी अलग अलग चीज़ों में है। किसी को स्टेबिलिटी में खुशी मिलती है, किसी को चैलेंजेस में, किसी को दफ्तर की कुर्सी संभालने में, तो किसी को कैमरे, मंच, मैदान या अपना बिजनेस संभालने में। अब लास्ट में आता है सबसे ज़रूरी सवाल, क्या सरकारी नौकरी और पैशन साथ साथ चल सकते हैं? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। कई लोग नौकरी करते हुए अपने पैशन को भी टाइम देते हैं, उसे फॉलो भी करते हैं। कोई टीचर होकर राइटर बन जाता है, कोई अधिकारी होकर सिंगर बन जाता है, कोई इंजीनियर होकर यूट्यूबर भी बन जाता है। यानी जरूरी नहीं कि आपको हमेशा एक ही ऑप्शन चुनना पड़े, कई बार पैशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी जरूरी होती है, और कई बार पैशन ही करियर बन जाता है। इसलिए डिसीजन सिचुएशन, कैपेसिटी और तैयारी को देखकर लेना चाहिए। तो लास्ट में मैं सब यूथ को एक मैसेज देना चाहूँगी कि डियर यूथ, किसी और की सक्सेस देखकर अपना रास्ता मत बदलो। अगर आपका टारगेट, आपका एम सरकारी नौकरी है, तो पूरे डेडिकेशन से तैयारी करो, और अगर आपका एम पैशन है तो उसे सिर्फ सपना मत रखो, स्किल में बदलो, क्योंकि पैशन बिना मेहनत के सिर्फ इच्छा बनकर रह जाता है, और नौकरी बिना इंटरेस्ट के सिर्फ जिम्मेदारी बनकर रह जाती है। सफलता वहाँ मिलती है जहाँ मेहनत और लगन मिलते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी। एक यंग मैन था, उसे फोटोग्राफी का

बहुत शौक था, लेकिन फैमिली चाहती थी कि वो सरकारी नौकरी करे। उसने दोनों को साथ लेकर चलने का फैसला किया। दिन में पढ़ाई करता था और फ्री टाइम में फोटोग्राफी। कुछ सालों बाद उसे सरकारी नौकरी भी मिल गई और उसका फोटोग्राफी का काम भी पहचान बनाने लगा। यानी उसने लड़ाई नहीं चुनी, उसने चुना बैलेंस, एडजस्टमेंट। और कई बार लाइफ में यही सबसे समझदारी वाला डिसीजन होता है। तो दोस्तों, सरकारी नौकरी गलत नहीं, पैशन भी गलत नहीं। गलत तब होता है जब हम बिना सोचे दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर अपना फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं। याद रखिए, सफल वो ही नहीं जो बड़ी नौकरी पाता है, सफल वो भी है जो अपने चुने हुए रास्ते पर सेटिस्फाई और खुश रहता है। तो चलिए एक शायरी सुना देती हूँ इसी बात पे। मंजिल का नाम जरूरी नहीं, सफर का आनंद जरूरी है। मंजिल का नाम जरूरी नहीं, सफर का आनंद जरूरी है। भीड़ किस ओर जा रही है ये नहीं, दिल किस ओर जा रहा है ये जरूरी है। नौकरी हो या जुनून, नौकरी हो या जुनून, दोनों का मान रखिए, बस अपने सपनों और जिम्मेदारियों में संतुलन बनाकर रखिए। तो आइए इसी के साथ एक और छोटा सा म्यूजिक ब्रेक।

आई होप आपने इस म्यूजिक को काफी एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों, आज के तेजी से बदलते समय में स्टूडेंट सिर्फ एक डिग्री के भरोसे अपने फ्यूचर को सेफ एंड सिक्योर नहीं रख सकते। लेबर मार्केट में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि एकेडमिक डिग्री के साथ साथ डिजिटल या टेक्निकल स्किल होना बहुत ज़रूरी हो गया है। यही रीज़न है कि स्टूडेंट्स अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि क्या वो ग्रेजुएशन के साथ साथ टेक्निकल डिप्लोमा भी कर सकते हैं। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स को जॉब मार्केट्स में दूसरों से आगे खड़ा कर देता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने इसमें क्लियर गाइडलाइंस जारी किए हैं। यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट अब दो एकेडमिक प्रोग्राम एक साथ कर सकता है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें हैं कि जैसे अगर दोनों कोर्स फुल टाइम और रेगुलर अटेंडेंस वाले हैं तो उनके क्लास का टाइम एक दूसरे से क्लैश नहीं होना चाहिए। सबसे इजी और सही तरीका यह है कि एक कोर्स को रेगुलर मतलब फिजिकल मोड रखा जाए और दूसरे को ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू पूरा किया जाए। बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स एक ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत 3 से 4 साल का हो सकता है। दूसरी ओर ITI एक स्किल बेस्ड टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ITI कोर्स की ड्यूरेशन ट्रेड के बेसिस पर अलग अलग होती है जो 6 महीने से लेकर 2 साल तक हो सकती है। जैसे इलेक्ट्रीशियन और फीटर जैसे पॉपुलर ट्रेड आमतौर पर 2 साल के होते हैं। दोस्तों, अब जानेंगे कि ITI के कौन से ट्रेड करियर के लिए बेहतर हैं। ITI में कई ऐसे ट्रेड हैं जिनकी इंडस्ट्रीज में यूज डिमांड है। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, टर्नर और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जैसे ट्रेड्स स्टूडेंट्स के बीच बहुत फेमस हैं। इन कोर्स का मेन पर्पज स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना है ताकि वो सीधे इंडस्ट्रीज में काम करने के योग्य बन सके। कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स के अंडर स्टूडेंट ITI करते हुए हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम देकर 12th इंटरमीडिएट की इक्वलिटी भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आगे जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स में इस जुगलबंदी का क्या बेनिफिट है। BA और ITI को एक साथ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट गवर्नमेंट जॉब्स में मिलता है। जैसे कई भर्तियों में बैचलर्स डिग्री मैंडेटरी होती है जबकि टेक्निकल पोस्ट के लिए ITI की क्वालिफिकेशंस मांगी जाती है। भारतीय रेलवे, रक्षा क्षेत्र, बिजली विभाग और सार्वजनिक उपक्रमों PSUs में ITI पास स्टूडेंट्स के लिए हजारों पोस्ट निकलती है। अगर आपके पास दोनों क्वालिफिकेशंस हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल दोनों कैटेगरीज की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिससे सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी डबल हो जाती है। अब आपको बता दें कि एडमिशन लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि रूल्स ने इसे पॉसिबल बना दिया है, फिर भी स्टूडेंट्स को सावधानी बरतनी चाहिए कि किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी और ITI सेंटर रिटर्न फॉर्म में रूल्स की कन्फर्मेशन करना बेहतर रहता है। ये कन्फर्म करे कि आप जिस ऑनलाइन या ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूट से BA कर रहे हैं वो UGC से मान्यता प्राप्त हो। सही प्लान और टाइम मैनेजमेंट के साथ स्टूडेंट इन दोनों कोर्सेज को सक्सेसफुली पूरा कर अपने करियर की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो आइए इसी के साथ एक और छोटा सा म्यूजिक ब्रेक।

तो दोस्तों अब हम आगे जानेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ चार ऐसी स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में जिनका सभी स्टूडेंट्स को पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे मेडिकल से लेकर इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई के लिए मिलती है मदद। दोस्तों ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई स्कॉलरशिप स्कीम्स को शुरू की है, जैसे PM विद्या लक्ष्मी योजना, PM USP योजना, PM यशस्वी योजना और लास्ट नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज़। PM विद्या लक्ष्मी योजना में छात्रों को बिना कुछ गिरवी रखे, बिना किसी गारंटी के एडुकेशन लोन मिलता है। इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए फैमिली की एनुअल इनकम 4.5 लाख रुपए तक फुल इंटरेस्ट सब्सिडी लोन दिया जाता है। 8 लाख रुपए तक के एडुकेशन लोन पर 3% की सब्सिडी दी जाती है। 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर आपके द्वारा 75% की क्रेडिट गारंटी दी जाती है, ताकि बैंकों के द्वारा आसानी से लोन दिया जा सके। इस योजना में NIRF रैंकिंग वाले एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए लोन दिया जाता है। विद्या लक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से इस स्कीम के लिए स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी स्कीम के बारे में, PM उच्चर शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इसका ऑब्जेक्टिव गरीब, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट बच्चों को हायर एडुकेशन पाने के लिए फाइनेंशियल हेल्प देना है। ये स्कीम भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाती है। ग्रेजुएशन के दौरान पहले 3 साल के लिए हर साल 12,000 रुपये दिए जाते हैं। अगर स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए स्कॉलरशिप लेते हैं तो उन्हें ईयरली 20,000 रुपये दिए जाते हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए 4th और 5th ईयर तक 20,000 रुपये एनुअली दिए जाते हैं। इस स्कॉलरशिप स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए क्लास 12th में 80% या उससे ज़्यादा मार्क्स आने कंपलसरी हैं। एडमिशन रेगुलर कोर्स में होना चाहिए। फैमिली की एनुअल इनकम 4.50 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं PM यशस्वी योजना की। ये स्कीम OBC, DNT, EBC जैसे प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है। क्लास 9 to 12th और कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को 75,000 रुपये से लेकर 1.25 लाख रुपये तक की फाइनेंशियली हेल्प दी जाती है। इस स्कीम में स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप उनके कोर्स और क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर दी जाती है। इस स्कीम के लिए 1 जून 2026 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 31 अगस्त 2026 तक रहेंगी। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब लास्ट स्कीम है नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से ये स्कॉलरशिप दी जाती है। इसका बेनिफिट मेरिट बेस्ड पर मिलता है। ये पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए दी जाती है। देश के लगभग 10,000 स्टूडेंट्स को मेरिट के बेस पर हर साल इस स्कीम का बेनिफिट मिलता है। इसमें 2 साल के कोर्स के लिए लगभग 30 लाख रुपये तक की सहायता मिल सकती है। स्टूडेंट्स की एज 30 ईयर से कम होनी चाहिए। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से इस स्कीम के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का युववाणी प्रोग्राम। आई होप आपको आज का प्रोग्राम काफ़ी पसंद आया होगा और आपने गानों को भी काफ़ी एंजॉय किया होगा। अब समय आ गया है आप सभी से

अभी आप युवानी कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है FM 103.1 MHz पर। आपसे कुछ ही समय में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ लोग घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इमारत में स्थित एनिमेशन सेंटर में मौजूद 16 से 18 वर्ष की आयु के 14 छात्रों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में छात्रों की तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई भीषण अग्निकांड पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव अभियान जारी है और अधिकारी हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सतेग पटनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय कर्डिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईएडीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज

0: हरियाणा में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत में कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गदीर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया के राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत इथियोपिया रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए मुकाबले में मिस ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है। आइए श्रोताओं, अब आपको बता देते हैं आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

पीपल्स पद ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत श्री अशोक कुमार हल्दर से बातचीत का समय रहेगा शाम 6:10 पर आकाशवाणी दिल्ली से। फिल्म संगीत का समय रहेगा शाम 6:20 और 7:45 का। हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों का समय रहेगा शाम 6:30 और 6:45 का आकाशवाणी जयपुर से। कार्यक्रम ग्राम भारती का समय रहेगा शाम 7:00 का। शाम 7:25 का समय रहेगा आकाशवाणी दिल्ली से पीपल्स पद ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत मोहन नागर से बातचीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। लोक संगीत का समय रहेगा रात 8:15 का। आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या का समय रहेगा रात 8:45 का। विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों का समय रहेगा रात 9:15 का। हिंदी में समाचारों का समय रहेगा रात 11:00 आकाशवाणी दिल्ली से। और इसी के साथ हमारी आज की सभा भी यहीं संपन्न होगी यानी कि रात 11:05 पर। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की। आइए अब आपको बता देते हैं कल के मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। हिंदी में समाचारों का समय रहेगा सवेरे 6:00 आकाशवाणी दिल्ली से। कार्यक्रम वंदन वार का समय रहेगा सवेरे 6:05 पर। 6:35 का समय रहेगा रामचरितमानस गान का संगीत सरिता। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 6:45 पर। सवेरे 7:00 का समय रहेगा कार्यक्रम नमस्कार अलवर का। फिल्म संगीत का समय रहेगा सवेरे 7:30 का। समाचार प्रभात आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समय रहेगा सवेरे 8:00। 8:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सवेरे 8:30 पर। सवेरे 9:00 का समय रहेगा हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का आकाशवाणी जयपुर से। विविध भारती के कार्यक्रमों का समय रहेगा सवेरे 9:10 10:01 10:40 11:01 11:25 12:16 1:05 और 2:30 का। सवेरे 10:30 का समय रहेगा पीपल्स पद ऑन आकाश

0: आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत श्री चिरंजी लाल यादव से बातचीत का आकाशवाणी दिल्ली से। सवेरे 11:10 का समय रहेगा पीपल्स पद ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत श्री ब्रजलाल भट्ट से बातचीत का आकाशवाणी दिल्ली से। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे 1:00 आकाशवाणी जयपुर से। 2:00 का समय रहेगा अंग्रेजी में समाचारों का और साथ ही आप सुनेंगे 2:00 समाचार का समय रहेगा 2:15 का। ये समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। शाम 4:10 का समय रहेगा पीपल्स पद ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत मिस मंगला कपूर से बातचीत आकाशवाणी दिल्ली से। शाम 5:00 का समय रहेगा कार्यक्रम महिला जगत का। 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी, हिंदी में समाचार आप सुनेंगे शाम 6:00 और रात 11:00 आकाशवाणी दिल्ली से। फिल्म संगीत का समय रहेगा शाम 6:10 और 7:30 का। हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:30 और 6:45। शाम 7:00 का समय रहेगा किसान वाणी कार्यक्रम का। 8:45 पर सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से। विविध भारतीय कार्यक्रमों का समय रहेगा 9:15 का। हिंदी में समाचार रात 11:00 और इसी के साथ हमारी कल की सभा भी संपन्न होगी रात 11:05 पर। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। श्रोताओं, अब आपको सुनवा देते हैं पीपल्स पद ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत श्री अशोक कुमार हलधर से बातचीत आकाशवाणी दिल्ली से।
1: पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं लेखक अशोक कुमार हलधर के साथ विशेष बातचीत। सहेली मुखर्जी के सहयोग के साथ इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
2: अशोक जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपनी जीवन यात्रा और अब तक के अनुभवों के बारे में कुछ बताएं। आप अपने जीवन और कार्यों की इस यात्रा को किस प्रकार से देखते हैं?
3: मैं रेलवे नौकरी करता था। उस टाइम में गार्ड का नौकरी में दो स्टेज है। एक स्टेज में गुड्स ट्रेन वर्किंग करना पड़ता है, तो गुड्स ट्रेन बहुत रिस्पॉन्सिबल है, उसमें जिम्मेदारी ज्यादा है और एकाकी का काम है, अकेला ही रहता है। वो झड़ आदि तूफान जो भी है उसको सामना करना पड़ता है। और आधारी रात में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा गाड़ी का, तो भी देखभाल करने होता था।
2: अशोक जी, आपके लेखन की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे आपकी प्रमुख प्रेरणा क्या रही? आपके जीवन में ऐसा कौन सा अनुभव रहा जिसने आपको प्रेरित किया?
3: प्रेरणा मिला काम करते प्रगति का साथ रहते हुए। अंधारी डिब्बा में जब अकेलापन था उस टाइम में चिंतन भावना, और प्रगति में क्या देखा, बाहर जगत में क्या है क्या नहीं है, वो आम अंदर में ले लेता, माने बाहर दर्शन अंतर दर्शन में आ जाता था। उसका बाद जब हमारा माने नौकरी खत्म हो जाता है, ड्यूटी शेष, फेस टाइम में तो रेस्ट मिलता है, घर चला आता है, कभी रानी हूं में चला जाता है। उसके बाद जब घर फेंकता, वही जो भावना मेरा कल्पना जो देखा हम जो फेस किया, वही चीज हम आके पेन पेपर में लिख के, जो मेरा चिंतन क्या है, क्या हम बाहर जगत में टॉपिक में देखा और क्या होना चाहिए। मेरा भी वैसा ही है, एक संसार में फूल खिलती है और फूल भी झड़ जाता है और उसको कोई कीमत नहीं रहता है। जब तक फूल बगीचा में रहता है तब तक उसको कीमत है। मेरा आदमी का जीवन, मनुष्य का जीवन भी ऐसा है, जब तक आपको काम रहेगा तब तक कीमत रहेगा, और काम का अभाव में और कोई इसको कीमत नहीं है। तो एक तो जगह में कीमत है, जहाँ आप ऐसा काम करना है जो काम समाज का हर आदमी को काम में आएगा, चेतना, समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा, क्या हम देखा, आदमी को क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये चीज एक अनुप्रेरणा हम प्रवृत्ति से मिला। उसका बाद मालगाड़ी का बाद जब पैसेंजर में प्रमोशन हुआ तो आदमी का साथ मेरा काम हुआ। आदमी जब जाता है काहे के लिए जाता है, कुछ काम करने के लिए, रोजगार के लिए जाता है। दिन में रात में आदमी का साथ हम था और उससे क्या ज्ञान प्राप्त हुआ।

0: है वही ज्ञान का हम किताब में लिखा है, जो क्या आदमी परिश्रम करता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कैसे होता है, अगेंस्ट द नेचर वी हैव टू परफॉर्म आवर जॉब फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, ये हम देखा और उसी चीज का हम किताब में लिखा है।
1: अशोक जी, आपको इस वर्ष देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री के लिए चुना गया है, तो ये न केवल आपके व्यक्तिगत योगदान का सम्मान है बल्कि आपके क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना भी है, तो इस सम्मान के लिए चुने जाने पर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, कोई अवार्ड मिलने से एक तो इंस्पिरेशन मिलता है और हम जो हमारा काम हमारा रास्ता सही था और मेरा काम भी सफल हुआ जिससे कारण से हमको मिला। 30 साल तक हम ये साधना किया, लेखा परक के साथ जुड़ा हुआ है और वो काम करते चले। हम कभी नहीं सोचा कर्मण्येवाधिकारस्ते के रास्ते में पुरुष पदाचरण, मैंने कभी नहीं सोचा जे हमारा एक पुरस्कार मिलेगा। हम काम के लिए काम करता था, यही हमारा उद्देश्य था, लेकिन जो मिल गया तो उसमें और चेतना हमारा इंस्पिरेशन बढ़ा, समाज को हम और कुछ दे सकता है, यही सोच के अभी मेरा खुशी होता है। हाँ, जो हम धन्यवाद ज्ञापन करता है भारत सरकार को, उसके बाद मोदी जी को हमारा धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, जो सही कर्मों का फल मिला है मेरा मेरा समाज को मिला। हम दलित समाज में बिलोंग करता है उसको भी, और जो शिक्षा साहित्यिक प्रेरणाएं जिसको शिक्षा प्रेमी आदमी है, शिक्षा अनुरोगी मानुष, उसके साथ में जो हमारा विजय आज मिला है उसको साथ मेरा विजय हम बांटने चाहता है।
1: अशोक जी, आपके अनुसार आज के युवाओं को अपने जीवन और करियर में आगे बढ़ने के लिए किन गुणों को विकसित करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए?
0: नेक्स्ट जेनरेशन, देखिए, कोई काम दृष्टि ठीक रख के प्रोचेस्टा जारी रखना है अविराम, उसको डिसकंटिन्यू नहीं करना है। हमारा काम में बाधा आ सकता है, रुकावट आ सकता है, लेकिन जब हमारा प्रोचेस्टा रहेगा, उसका ऊपर डिवोशन रहेगा काम का ऊपर, तब कामयाब हो जाएगा, यही मेरा सोच है। और यही मैंने सोच हम संसार को मानुष आदमी को समाज को देने चाहता है, जे शिक्षा चेतना आदमी को होता है तब उसको सही दिशा सही काम में वो काम करेगा। देखिए, मुंह का तो जैसा वर्षा का पानी नदी में बह जाता है तो बह ही जाता है, तो समाज में पैसा बहुत के आदमी आता है, भीड़ करता है, अपना काम हो जाता है, चला जाता है, लेकिन वास्तविक में जो है एक लय है। सुनने से कोई चीज आविष्कार होता है और सुनने से विलीन हो जाता है, यही मेरा सिद्धांत है, तो इसमें कोई आवेश नहीं है, यही हमारा जीरो सिद्धांत है।
1: अशोक जी, आपका शैक्षणिक जीवन कैसा रहा और आपकी शिक्षा ने आपके व्यक्तित्व या फिर आपके कार्य क्षेत्र को किस प्रकार से प्रभावित किया, और जब आप एक छात्र थे तो किन अनुभवों ने आपको सबसे अधिक प्रेरित किया था?
0: शिक्षा तो चेतना देता ही है। देखिए, आज का जो समाज व्यवस्था है, आज का जो शिक्षा है, हमारा पीरियड में वैसा नहीं था, इतना फैसिलिटी भी नहीं था और इतना मोबाइल फोन भी नहीं था और टेलीफोन भी बहुत आदमी के पास नहीं था, बड़ा बड़ा आदमी जो था उसके पास टेलीफोन का मुनिया व्यवस्था था, और जो सामान्य आदमी था उसके लिए एक ही काम था, जो हमको कुछ करना है तो क्या करेगा, हमको लेखा पढ़ा सीख के समाज को परिवार को बचाना है, रोजगार करना है, और उसके साथ हमारा जो चिंतन है उसको विकास करना है। जब मेरा विकास नहीं होगा तो हमारा परिवार का विकास भी नहीं होगा, समाज का विकास नहीं होगा, तो पहले अपना विकास करो, उसका बाद दूसरा विकास करने जाओ, चिंता करो, तब विकास होगा। तो वो सोच हम लोग मेरा को मिला इनिशियल स्टेज पे, इस चीज हम अपना से सोचा। उस टाइम में कोई विनोदन का व्यवस्था नहीं था और शिक्षा चेतना छोड़ के दूसरा कोई रास्ता नहीं था, पोस्ट कार्ड का व्यवहार था, एक तो जोगाजोग व्यवस्था भी अच्छा नहीं था, पोस्ट कार्ड में सब कुछ वो तो टाइम में फैक्टर था, जिससे कारण से एक ही चीज आनंद मिलता था, किताब मिला, किताब पढ़ने से एक तो आनंद मिलता था और चेतना भी उसको साथ हो जाता है, शिक्षा भी उसमें ही जाता है, यही मेरा।

0: विचार था। तो हम शिक्षा के साथ में जुड़ा हुआ था, अभी तक जब तक जिंदा रहेंगे उसको समझ रहेगा।
1: अशोक जी, हमसे बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए और इन तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी लेखक अशोक कुमार हल्दर के साथ विशेष बातचीत। सहेली मुखर्जी के सहयोग के साथ इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल पता है podcast.airnews@gmail.com।

FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी अलवर का ये सरस का चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म राज रिबूट के इस गीत के साथ। गीतकार हैं कासूर मुनीर और संगीत है जीत गांगुली का।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: अरिजीत सिंह की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म क्रेचर 3 से ये गीत। गीतकार थे टोनी कक्कर और संगीत भी था टोनी कक्कर का। और इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM बैंड 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। अब से कुछ ही समय में आप सुनेंगे हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से।
1: और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या,
1: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: RBI कहता है
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने हर नागरिक तक न्याय की पहुंच अधिक सुलभ और मजबूत करने के लिए दिशा 2.0 को मंजूरी दी। इस योजना को 5 साल के लिए लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीति आयोग के सदस्य KV राजू के साथ बैठक कर जिला आधारित विकास मॉडल पर चर्चा की। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC पर विधेयक बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कहा कोटा बीकानेर और जोधपुर प्रसूता मामले अलग अलग हैं, इन्हें एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने दिशा 2.0 योजना को मंजूरी दे दी है। ये कार्यक्रम इस साल पहली अप्रैल से 31 मार्च 2031 तक 5 साल तक की अवधि के लिए नए रूप में लागू किया जाएगा। 255 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य हर नागरिक तक न्याय की पहुंच सुलभ और मजबूत बनाना है। ये देश के 16 सतत विकास लक्ष्यों की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाती है। इसे विकसित भारत 2047 के विजन से भी जोड़ा गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अनुसार दिशा 2.0 में प्रौद्योगिकी सक्षम न्याय वितरण के लिए विधि संजीवनी नाम का नया घटक पेश किया गया है। टेली लॉ के जरिए ग्राम पंचायत स्तर पर VLE की ओर से 2.5 लाख सामान्य सेवा केंद्रों के नेटवर्क से सभी लोगों को मुकदमों से पहले मुफ्त कानूनी सलाह दी जाएगी। साथ ही कानूनी जागरूकता और साक्षरता के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन अभियान चलाए जाएंगे। नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की आज बैठक हो रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं। इसमें समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग ले रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां बैठक का मुख्य विषय है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीक की भूमिका पर चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर KV राजू की मौजूदगी में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए जिला आधारित विकास मॉडल पर चर्चा की गई। इसके तहत हर जिले में आकांक्षी उपखंडों को जोड़ते हुए स्थानीय

0: आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुरूप विकास योजनाएं बनाने की बात कही गई। इससे आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार बढ़ सकेगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और निवेश के अवसर मिलेंगे। वन मंत्री संजय शर्मा ने सीएसआर निवेश से संरक्षित वन क्षेत्रों में विकास पर जोर दिया है। श्री शर्मा आज सवाईमाधोपुर में राज्य स्तरीय सीएसआर कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वन विभाग और कॉरपोरेट क्षेत्र की साझेदारी से वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता और इको टूरिज्म पर अच्छा काम किया जा सकता है। दो दिन के इस कॉन्क्लेव में राज्य के संरक्षित वन क्षेत्रों में सीएसआर के माध्यम से किए जाने वाले कामों पर चर्चा की जा रही है। राजस्थान एटीएस ने जयपुर से जैश ए मोहम्मद से कथित रूप से जुड़ी एक महिला को गिरफ्तार किया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर पकड़ी गई बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा नाम की ये महिला सवाईमाधोपुर जिले की मूल निवासी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार ये लंबे समय से देश विरोधी नेटवर्क के लिए काम कर रही थी। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि UAPA एक्ट के तहत गिरफ्तार कर आरोपी महिला को अदालत में पेश किया गया, जहां उसे 27 जून तक रिमांड पर भेज दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने आज जयपुर में समान नागरिक संहिता UCC को लेकर प्रेस वार्ता की। श्री पटेल ने कहा कि इससे समानता की भावना को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही भेदभाव को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने UCC लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए विधेयक लाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है।
1: राजस्थान सरकार नागरिक संहिता कानून बनाने हेतु एक विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किया। उसमें माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय की न्यायाधिपति रही है, वो हमारी इस कमेटी की अध्यक्ष रहेगी। और इस कमेटी का गठन विधिवत पूर्व में ही किया जा चुका है और उनसे अपेक्षा की गई बहुत जल्दी से जल्दी इस कानून पर सभी तरह का मंथन कर ये राजस्थान समान नागरिक संहिता बना करके पेश करें।
0: वहीं श्री बेढम ने कहा कि UCC संविधान के अनुरूप है, ये लैंगिक समानता की दिशा में भी अहम है।
2: भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति, वो महिला हो या पुरुष हो, उनको समान नागरिक संहिता लागू हो, जिससे सभी वर्गों, सभी धर्मों और सभी लोगों को एक कानून मिलेगा तो एक जैसी सुविधाएं, व्यवस्थाएं, उनके अधिकार सुनिश्चित हो। समान नागरिक संहिता UCC राजस्थान के लिए लागू हो, इसके लिए विधेयक बनाने के लिए कमेटी का गठन किया है।
0: चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कहा है कि जोधपुर के पावटा सैटेलाइट अस्पताल में प्रसूताओं के उपचार में पूरी गंभीरता बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञों की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा है। मीडिया से बातचीत में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कोटा, बीकानेर और जोधपुर के मामले अलग अलग हैं, इन्हें एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।
3: इंजेक्टेबल जो अभी जोधपुर के अंदर मार्केट से जो ये ला रहे हैं, जो 25% अलाउड है, उसकी जांच करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसका जो है हम उसपे कड़ी निगरानी रख रहे हैं, क्योंकि ब्लीडिंग और इंजेक्टेबल और थोड़ा डिहाइड्रेशन, जो गर्मी पड़ रही है, और जो ये दो तीन चीजें ही हैं। तो हमारी डॉक्टर्स की टीम, मैंने जयपुर में भी गायनेकोलॉजिस्ट को और इनको बुलाया, डॉक्टर्स को बुला के हमने बैठ के बात करी, तो सब पॉइंटर्स जिन्हीं पे आ रहे हैं, ये बहुत गंभीर विषय है जिसका एम्स की टीम ने भी जांच कर ली और हम भी जांच।
0: प्रसूताओं के स्वास्थ्य को लेकर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर BS जोधा और अन्य डॉक्टरों के साथ बैठक की। मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज अपने आवास पर जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने लोगों की परिवेदनाएं सुनी और उचित समाधान का आश्वासन दिया। मीडिया से बातचीत में श्री दिलावर ने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जुलाई के पहले सप्ताह तक सभी विद्यालयों में शिक्षक लगाने के प्रयास किए जाएंगे।
4: 1 जुलाई को ही कोशिश करेंगे कि हम सबको शिक्षक मिल जाएं, और 1 जुलाई को नहीं तो कम से कम 10 जुलाई तक तो सबको शिक्षक मिल जाएंगे और किसी प्रकार की समस्या न होगी। हमारा प्रयास ये रहेगा कि सभी विद्यालयों में समान रूप से शिक्षक हो जाएं।
0: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष हनुमान सिंह राठौर ने आज अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने बोर्ड के 41वें मुखिया के रूप में कमान संभाली। बोर्ड प्रशासक शक्ति सिंह राठौर ने उन्हें चार्ज सौंपा। श्री राठौर ने मीडिया से बातचीत में विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए नई शिक्षा नीति के समुचित

0: क्रियान्वयन पर जोर देने की बात कही।
1: इस समय दो प्रकार की योजनाएं हैं, एक हमारे राजस्थान के परिवेश के अनुसार विद्यार्थियों का शैक्षिक उन्नयन किस प्रकार से हो, दूसरा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा ये विद्यार्थी काल से किस प्रकार उनके अंदर और प्रेषित की जाए कि वो विद्यार्थी आगे चलकर अपने देश के लिए अपने समाज के लिए हितकारक नागरिक के रूप में वो निकल कर आए, तो केवल परीक्षा परिणाम नहीं तो साथ में उनका भौतिक शैक्षिक आध्यात्मिक ये सब प्रकार का उन्नयन कैसा हो, इस प्रकार का प्रयत्न सबके सहयोग से करेंगे।
0: राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्य पद पर नियुक्त हुए डॉक्टर संतोष आनंद ने निष्पक्ष परीक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। श्री आनंद वर्तमान में भीलवाड़ा के माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में काम कर रहे हैं। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि वे जल्दी ही आरपीएससी सदस्य के रूप में पदभार संभालेंगे।
2: प्राथमिकता यही कि राजस्थान भर के जितने बच्चे मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उनको अपनी मेहनत के अनुरूप और उनकी योग्यता के अनुरूप उनका स्थान मिले, ये हमारी सबसे प्राथमिकता रहेगी। समय पर कैलेंडर हमने जारी कर चुकी है, आरपीएससी कैलेंडर के अनुसार सारे काम हो रहे हैं, इसमें कोई इफ और बट और कोई प्रश्न चिन्ह नहीं।
0: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिकाएं ऑनलाइन देखने और डाउनलोड करने का मौका दिया है। आयोग सचिव ने बताया कि इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 6 जुलाई से 27 जुलाई तक आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक एमएल गर्ग ने आज राज्य के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास से भेंट की। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए सावंत भी मौजूद रहे। भेंट में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। सीकर जिले के रामगढ़ सेठान क्षेत्र में आज सुबह एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। रामगढ़ सेठान थानाधिकारी प्रकाश चंद्र ने बताया कि दुर्घटना सड़क किनारे खड़े ट्रोली और तेज रफ्तार ट्रेलर के बीच टक्कर से हुई। घायल व्यक्ति को चूरू रेफर किया गया है। उधर श्रीगंगानगर के सत्यम नगर में एक निर्माणाधीन भवन में करंट लगने से आज 2 श्रमिकों की मृत्यु हो गई। आज विश्व ऊंट दिवस है। ये दिन दुनिया के कई हिस्सों में आजीविका के लिए ऊंटों के महत्व को बताता है। रेगिस्तान का जहाज कहा जाने वाला ये जीव शुष्क क्षेत्रों का महत्वपूर्ण पशुधन है और भारत का गर्व माना जाता है। सहन शक्ति और सेवा का प्रतीक ऊंट लाखों लोगों के जीवन का सहारा है। ये कई दिनों और हफ्तों तक बहुत ही कम पानी के साथ जीवित रह सकता है और इसीलिए इसे रेगिस्तानी यात्रा के लिए आदर्श माना जाता है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ऊंट को संस्कृति और परंपराओं का वाहक बताते हुए लोगों से इसे अपना आदर्श साथी मानने का आग्रह किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने हर नागरिक तक न्याय की पहुंच अधिक सुलभ और मजबूत करने के लिए दिशा 2.0 को मंजूरी दी। इस योजना को 5 साल के लिए लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीति आयोग के सदस्य केवी राजू के साथ बैठक कर जिला आधारित विकास मॉडल पर चर्चा की। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी पर विधेयक बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कहा, कोटा बीकानेर और जोधपुर प्रसूता मामले अलग अलग हैं, इन्हें एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से भरतपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख शिव कुमार वशिष्ठ ने तैयार किया है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भरतपुर में जिला स्तरीय समारोह विश्वप्रिय शास्त्री पार्क में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत मुख्य अतिथि रहे। इसके अलावा ब्लॉक और पंचायत स्तर पर भी योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान विभिन्न योगासन और प्राणायाम कराए गए। कार्यक्रम में विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ आम जन ने भाग लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर के बंद बारेठा पहुंचकर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने बंद बारेठा की पाल का निरीक्षण किया और परियोजना के विस्तार कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बरसात के दौरान जल भराव की समस्या से निपटने के लिए बेहतर योजना बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के निर्देश दिए। सहकारिता

0: विभाग की शासन सचिव और जिला प्रभारी सचिव आनंदी ने भरतपुर का दौरा कर अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बजट घोषणाओं के कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागों के बीच समन्वय के साथ गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने को कहा। संभागीय आयुक्त नलिनी काठोतिया ने संभाग स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक आयोजित की। बैठक में बरसात से पहले सड़कों की मरम्मत, विभागीय समन्वय और उद्योगों तथा आमजन से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई। उन्होंने विद्युत संबंधी शिकायतों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। विश्व पर्यावरण दिवस पर निर्वाचन विभाग की ओर से एक पेड़ लोकतंत्र के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत सरकारी और निजी संस्थानों, कार्यालयों तथा सार्वजनिक स्थानों पर पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में भरतपुर को पायलट परियोजना में शामिल किया गया है। स्किल डेवलपमेंट फॉर यू कार्यक्रम के तहत युवाओं की क्षमता और स्थानीय जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय के सलाहकार डॉक्टर आई बी सुब्बा राव ने अधिकारियों के साथ बैठक कर वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने युवाओं का डाटा तैयार कर उनकी रुचि और स्थानीय रोजगार की संभावनाओं के अनुसार प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से ब्लॉक स्तर पर नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्राम पंचायतों में विकास और जन कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में सैन्य और प्रशासनिक अधिकारियों की समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आपदा प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय पर चर्चा की गई। आमजन को राहत देने के लिए जिले में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में पट्टे, नामांतरण, निर्माण स्वीकृति, उपयोग परिवर्तन, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सहित अनेक कार्य किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर और शहर में वार्ड स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। जल संसाधन मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने वैर उपखंड के सरसेना गांव और भरतपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। सूचना और जनसंपर्क कार्यालय में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तथा उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। प्रदर्शनी में किसान कल्याण, आयुष्मान भारत, पक्के आवास, सैन्य सुविधाओं और अन्य योजनाओं से संबंधित जानकारी चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित की गई। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग की ओर से जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। महात्मा गांधी वेटनरी कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 500 युवाओं, विद्यार्थियों और किसानों ने भाग लिया। कृषि वैज्ञानिकों ने मिट्टी स्वास्थ्य, जैविक खाद, जल संरक्षण और फसल विविधीकरण से संबंधित जानकारी दी तथा किसानों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने शहर में जल निकासी व्यवस्था से जुड़े कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्य ड्रेन के निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा की तथा बरसात से पहले जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने भरतपुर अचनेरा फोरलेन सड़क चौड़ी करने के काम का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। इसी के साथ भरतपुर जिले की चिट्ठी समाप्त होती है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है सिंझा भगतरा प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार, केंद्र सरकार हर नागरिक तई न्याय रिपूक बत्ती बत्ती सुलभ करावन सारू 2.0 ने मंजूरी दी। योजना ने 5 साल माए लागू करी जायला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नीति आयोग रा सदस्य केवी राजू रे साथे बैठक करने जिला आधारित विकास मॉडल माथे चर्चा करी। राज्य सरकार समान नागरिक संहिता यूसीसी माथे विधेयक बनावण ने उच्च स्तरीय समिति बनाई और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कयो कोटा बीकानेर और जोधपुर प्रसूता मामला न्यारा न्यारा है आने एक दूजाऊ जोड़ने नहीं देखा जावना चाहिए।

समाचार साथ है मैं शंभू सिंह और अब समाचार विगतवार। केंद्र सरकार दिशा 2.0 योजना ने मंजूरी दे दी है। वो कार्यक्रम इन साल पहली अप्रैल और 31 मार्च 2031 ताई 5 साल तैयारी अवधि रह सारू नुआ रूप में लागू करो जाएगा। 255

0: करोड़ रुपया वित्तीय परिवहन वाली ई योजना रो मकसद हर रहवासी ताई न्याय री पहुंच सुलभ और मजबूत बनावनो है। आ देश रा 16 सतत विकास लक्ष्यों री प्रतिबद्धता ने आगे बढ़ावे है। इनने विकसित भारत 2047 रा विजन जोड़ी जा है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुजब दिशा 2.0 माई प्रौद्योगिकी सक्षम न्याय वितरण सारू विधि संजीवनी नाम रो नुओ घटक पेश करी जो है। टेली लोरी मार्फत ग्राम पंचायत थर माथे वीएलई कानियो 2.5 लाख सामान्य सेवा केंद्र रा नेटवर्क रू सगड़ा लोगों ने मुकदमा माए पहला मुफ्त कानूनी सलाह दी जायला। साथ ही कानूनी जागरूकता और साक्षरता सारू ऑनलाइन और ऑफलाइन अभियान चलाया जायला। नई दिल्ली में ब्रिक्स रा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए री आज बैठक हुई। दो दिन री ई बैठक री सदारत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रिया है। इनमाए समूरा 11 सदस्य देशा रा सुरक्षा प्रमुख हिस्सो ले रिया है। आ देशा माए भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात भेड़ा है। अबार माए गैर पारंपरिक हिफाजती चुनौतियां बैठक रो खास मुद्दों है। इनमाए राष्ट्रीय हिफाजत रा खतरा ने तेजी बदलता स्वरूप और उभरता सुरक्षा जोखिमा माए नई तकनीक री भूमिका माथे चर्चा करी जावे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज नीति आयोग रा सदस्य प्रोफेसर केवी राजूरी मौजूदगी माए एहलकारा रे साथ मीटिंग करी। मुख्यमंत्री रेवास माते हुई ई बैठक में विकसित राजस्थान रा संकल्प ने पूरो करण सारू जिला आधारित विकास मॉडल माथे चर्चा करी जी। इन रे तहत हर जिला में आकांक्षी उपखंडा ने जोड़ता स्थानीय जरूरता और संसाधना मुजब विकास योजना बनाने की बात कही जी। आमाए माली गतिविधियां री रफ्तार बढ़ सकेला साथ ही स्थानीय थर माथे रोजगार और निवेश रा मौका मिलेला। जंगलात महकमारा मंत्री संजय शर्मा सीएसआर निवेश संरक्षित वन हल्का माए विकास माथे जोड़ दियो है। श्री शर्मा आज सवाई माधोपुर माए राज्य थर रा सीएसआर कॉन्क्लेव रा उद्घाटन सत्र माए बोल रिया हा। वना कयो के जंगलात महकमो और कॉरपोरेट हलकारी साझेदारियों वन्य जीव संरक्षण जैव विविधता और इको टूरिज्म माथे चोखो काम करियो जा सके है। दो दिन रा ई कॉन्क्लेव माए राज्य द्वारा संरक्षित वन हल्का माए सीएसआर री मार्फत करिया जावन वाला काम माथे चर्चा करी जावे। राजस्थान ईटीएस जयपुर जैसे मोहम्मद री कथित रूप जुड़ी एक महिला ने गिरफ्तार किया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस री सूचना माथे पकड़ी जी बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा नामरी आ महिला सवाई माधपुर जिला री मूल रहवासी है। शुरुआती जानकारी मुजब आ लांबा बगतू देश विरोधी नेटवर्क साथे काम कर रही। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी बतायो के यूएपीए एक्ट तहत गिरफ्तार करी जी आरोपी महिला ने अदालत में पेश करी जा जठे उन्हें 27 जून तक रिमांड सारू भेज दी जा है। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम आज जयपुर में समान नागरिक संहिता यूसीसी ने लेर प्रेस वार्ता करी। श्री पटेल कहो कि इन माए समानतारी भावना ने बढ़ावा मिलेला और साथ ही भेदभाव ने कम करण माए मदद मिलेला। राज्य सरकार यूसीसी लागू करण री दिशा माए कदम बढ़ावता विधेयक लावण सारू ऊंचा थर्री कमेटी बनाई है।
1: राजस्थान सरकार नागरिक संहिता कानून बनाने हेतु एक विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किया। उसमें माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई सेवा निवृत्त उच्चतम न्यायालय की न्यायाधिपति रही है, वो हमारी इस कमेटी की अध्यक्ष रहेगी। और इस कमेटी का गठन विधिवत पूर्व में किया जा चुका है और उनसे अपेक्षा की गई बहुत जल्दी से जल्दी इस कानून पर सभी तरह का मंथन कर ये राजस्थान समान नागरिक संहिता बना करके पेश करें।
0: श्री बेढम कहो कि यूसीसी संविधान मुजब है और लैंगिक समानता री दिशा में अहम है।
2: भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति हो, महिला हो या पुरुष हो, उनको समान नागरिक संहिता लागू हो जिससे सभी वर्गों, सभी धर्मों और सभी लोगों को एक कानून मिलेगा तो एक जैसी सुविधाएं, व्यवस्थाएं, उनके अधिकार सुनिश्चित हो। समान नागरिक संहिता यूसीसी राजस्थान के लिए लागू हो, इसके लिए विधेयक बनाने के लिए कमेटी का गठन किया।
0: चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कहो है कि जोधपुर रा पावटा सैटेलाइट अस्पताल में प्रसूतमारा इलाज में पूरी गंभीरता बढ़ती जा रही है।

0: जिला कलेक्टर अशोक रंजन मेडिकल कॉलेज रा प्राचार्य डॉक्टर बी एस जोधा और दूजा डॉक्टरों रे साथ है मीटिंग करी मामलारी जांचारू कमेटी बनाई जी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज आपरा रहवास माते जन सुनवाई करी। ई दौरान वना लोगा री फरियादा सुनी और वाजिब निपटारा रा आश्वासन दिया। मीडिया साथे बतलमाए श्री दिलावर कयो के नुआ शैक्षणिक सत्र सारू जरूरी तैयारियां करी जा रही है। वना कयो के जुलाई रा पहला हफ्ता ताई सगली स्कूला माए शिक्षक लगावन री कोशिश ही करी जावे।
1: एक जुलाई को ही कोशिश करेंगे कि हम सबको शिक्षक मिल जाएं और एक जुलाई को नहीं तो कम से कम 10 जुलाई तक तो सबको शिक्षक मिल जाएंगे और किसी प्रकार की समस्या न होगी। हमारा प्रयास ये रहेगा कि सभी विद्यालयों में समान रूप से शिक्षक हो जाएं।
0: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रा नुआ अध्यक्ष हनुमान सिंह राठौड़ आज अध्यक्ष रा ओधो संभाल लियो। वना बोर्ड रा 41वां मुखिया रा रूप में कमान संभाली। बोर्ड रा प्रशासक शक्ति सिंह राठौड़ वाने कामकाज सौंपियो। श्री राठौड़ मीडिया साथे बतलमाए पढ़ेसरान रा समग्र विकास सारू नवी शिक्षा नीति रा वाजिब क्रियान्वयन माथे जोर देवन री बात कही।
2: इस समय दो प्रकार की योजनाएं हैं, एक हमारे राजस्थान के परिवेश के अनुसार विद्यार्थियों का शैक्षिक उन्नयन किस प्रकार से हो, दूसरा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा ये विद्यार्थी काल से किस प्रकार उनके अंदर और प्रेषित की जाए कि वो विद्यार्थी आगे चलकर अपने देश के लिए अपने समाज के लिए हितकारक नागरिक के रूप में वो निकल कर आए, तो केवल परीक्षा परिणाम नहीं तो साथ में उनका भौतिक शैक्षिक आध्यात्मिक ये सब प्रकार का उन्नयन कैसा हो, इस प्रकार का प्रयत्न सबके सहयोग से करेंगे।
0: राजस्थान लोक सेवा आयोग माय सदस्य ओदा माते नियुक्त व्यार डॉक्टर संतोष आनंद निष्पक्ष परीक्षा ने पहली प्राथमिकता बताया है। श्री आनंद अबार माय भीलवाड़ा रा माणिकी लाल वर्मा राजकीय कॉलेज रा प्राचार्य रूप में काम कर रहा है। खबर नवीसा साथे बतलमाए वना कयो के वे बेगाई आरपीएससी सदस्य रा रूप में ओ दो संभाल लेवेला।
3: प्राथमिकता ये ही कि राजस्थान भर के जितने बच्चे मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उनको अपनी मेहनत के अनुरूप और उनकी योग्यता के अनुरूप उनका स्थान मिले, ये हमारी सबसे प्राथमिकता रहेगी। समय पर कैलेंडर हमने जारी कर चुकी है, आरपीएससी कैलेंडर के अनुसार सारे काम हो रहे हैं, इसमें कोई ई फॉर बट और कोई प्रश्न चिन्ह नहीं।
0: बीएसएफ रा महानिरीक्षक एमएल गर्ग आज राज्य रा मुख्य सचिव वी श्रीनिवास रे साथे मिलिया। ई दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर सामंती मौजूद रिया। ई मुलाकात में न्यारा न्यारा मुद्दा माथे चर्चा करी जी। सीकर जिला रा रामगढ़ सेठान हल्का में आज सवारा एक सड़क हादसा में दो लोगों की मौत वेगी वठे एक दूजो घायल वेगियो। रामगढ़ सेठान थाना अधिकारी प्रकाश चंद्र बतायो के हादसों सड़क रे किनारे खड़ा ट्रोला रे तेज रफ्तार ट्रेलर बीच टक्कर भी हो, घायल ने चूरू रेफर करी जा है। उठने श्री गंगानगर रा सत्यम नगर माए एक नुआ बन रहा भवन माए करंट लागणु दो लोगों की मौत वेगी। अरबे मौसम राज्य में लाडला कुछ दिनों चल रही प्री मानसून गतिविधियों लोगों ने हीट वेव और करड़ी गर्मियों आराम मिल रही है। एक रे पछे एक लगातार सक्रिय वेरिया पश्चिमी विक्षोभों के जिला में आंधी बिरखारो दौर बनियोड़ो है। आज ही प्रदेश रा कई हल्का में मौसम रो मिजाज बदलो रियो। मौसम महकमा मुजब आंधी बिरखारी गतिविधियां जयपुर अजमेर और भरतपुर संभाग में 26 जून तक बनी रहने की आस है। इस दौरान कठे कठे धूल भरी आंधी ही चल सके है। दूजी कानी बीकानेर और जोधपुर संभाग में मौसम साफ रहने की आस है, फिर वहीं कुछ थोड़ा बादल छाए जा रह सके है। न अब आखिर में खास समाचार आप एक कर फिर सुन ले रहो। केंद्र सरकार हर रहवासी ताई न्यायरी पूग बत्तियों बत्ती सरल और मजबूत करण सारू दिशा 2.0 ने मंजूरी दी। योजना ने 5 साल सारू लागू करी जायला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नीति आयोग रा सदस्य केवी राजू रे साथे मीटिंग करने जिला आधारित विकास मॉडल माथे चर्चा करी। राज्य सरकार समान नागरिक संहिता यूसीसी माथे विधेयक बनावन सारू ऊंचा तरी समिति बनाई। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कहो है के कोटा बीकानेर और जोधपुर प्रसूता मामला न्यारा न्यारा है अने एक दूजा जोड़ने नी देखा जावना चाहिए। एंड रे साथ ही प्रादेशिक समाचारों ओ बुलेटिन अठे पूरो व्यो। नमस्कार।

0: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: PLI है ना?
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।
3: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
4: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
5: बन गया बजट?
4: हाँ,
5: 5,000 बच गए।
4: तू नई साड़ी ले ली?
5: ना, पिछले महीने तो ली थी।
4: एक और
5: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
4: बढ़िया,
5: हाँ जाओ भाई।
6: RBI कहता है,
7: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
8: FM 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है। शाम के 7 बजने हैं, आइए सुनते हैं ग्राम भारती कार्यक्रम।

0: ग्राम भारती कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को शिम्बू भाई की ओर से घनी घनी राम राम। किसान भाइयों, आज हम अपनी चर्चा में लेके आए हैं एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाएं और किसानों को खुशहाल बनाएं। देखिए किसान भाइयों, भविष्य की मांग एवं वर्तमान कृषि परिवेश को देखते हुए उचित एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाने की अत्यंत आवश्यकता है। एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल छोटे से छोटे जोत धारक को भी घर में पौष्टिक भोजन के रूप में अनाज, दलहन, फल, सब्जी, दूध एवं चारा नियमित रूप से उपलब्ध कराता है। इस पद्धति द्वारा संतुलित आहार और पोषण के साथ साथ में अन्य घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जा सकती है, जिससे हमारे किसान भाई एवं उसके परिवार को खनिज तत्व एवं विटामिन से भरपूर भोज्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों एवं उसका परिवार स्वस्थ रहे। इस पद्धति द्वारा 5 से 6 सदस्यों के परिवार की अधिकतम आवश्यकता पूरी करते हुए बाजार पर उसकी निर्भरता कम की जा सकती है। और देखिए किसान भाइयों, एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाने से हमारे किसान भाइयों को वर्ष भर रोजगार एवं आय के साधन उपलब्ध रहते हैं। इस प्रणाली द्वारा परंपरागत खेती में होने वाले जोखिमों को कम किया जा सकता है। एकीकृत कृषि प्रणाली में परंपरागत कृषि जो कृषि प्रणाली है इसकी अपेक्षा अधिक लागत आती है, परंतु अनेक प्रकार के घटकों के उच्च उत्पादन, उत्कृष्ट पुनः चक्रण एवं पौधों के संतुलित पोषण के कारण अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एकीकृत कृषि प्रणाली में 3 से 4 उद्यम रखें। कुछ उद्यम ऐसे रखने चाहिए जो लगातार आय सुनिश्चित कर सकें, जैसे पशुपालन, फल एवं सब्जी उत्पादन। कुछ अन्य उद्यम ऐसे होने चाहिए जो कि एक निश्चित समय के बाद में अच्छी आय प्रदान कर सकें, जैसे खेत के चारों तरफ यूकेलिप्टस और सुबबोल का रोपण करें। संसाधनों का बहुउद्देशीय उपयोग एवं विभिन्न घटकों के अवशिष्ट का पुनः चक्रण सुनिश्चित करें, जिससे बाहर की निर्भरता को कम किया जा सके। इसके लिए केंचुआ खाद इकाई और मशरूम उत्पादन, ये सब उद्यम किए जा सकते हैं। बाजार एवं सामाजिक बातों को ध्यान में रखकर ही उद्यम का चुनाव करें। आय व्यय का लेखा जोखा रखें और इस प्रणाली द्वारा अधिक लाभ हेतु परिवार के सदस्यों का श्रमिक योगदान सुनिश्चित करें। पशु एवं फसल बीमा अवश्य कराएं। तो आइए किसान भाइयों, अब हम आपको ले चलते हैं खरीफ फसलों के लिए खेत की तैयारी एवं अन्य शस्य क्रियाएं। श्री पंकज वर्मा, कृषि पर्यवेक्षक शाहपुर से ये भेंट वार्ता, तो लीजिए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: किसान वाणी कार्यक्रम सुन बड़ा सभी भाई बहनों को हमारे राम राम। किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं पंकज कुमार वर्मा, कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय कृषि पर्यवेक्षक शाहपुर अलवर। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि हमारी खरीफ फसलों के लिए खेत की तैयारी कैसे करें एवं अन्य जो शस्य क्रियाएं हैं उनके बारे में। तो पंकज कुमार जी, राम राम साहब।
2: राम राम साहब किसान भाइयों, राम राम।
1: तो

0: पंकज कुमार जी, सबसे पहले हम चाहें कि अब जो समय आ रहा है वो हमारे खरीफ फसलों की बुआई का है, तो सबसे पहले बताएं कि हमारे किसान भाई खरीफ फसलों की बुआई से पहले अपने खेतों की तैयारी किस प्रकार से करें, उसके बारे में जानकारी दें।
1: जी साहब, सबसे पहले तो किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, इस टाइम गर्मी के समय में गहरी जुताई करनी चाहिए खेत की। गहरी जुताई करने से क्या होगा किसान भाइयों, दो फायदे होंगे अपने पास। एक तो जो मिट्टी के ऊपर पपड़ी पड़ जाती है, कठोर पपड़ी, जिससे क्या होता है पानी अंदर नहीं जा पाता, तो एक तो वो पानी अंदर जाएगा, जड़ों तक पहुँचेगा। दूसरा क्या है, जितने भी मिट्टी में रोग है, फफूंद है, कीट है, इनके स्पोर रह जाते हैं, तो जब गहरी जुताई करेंगे तो मिट्टी पलटती है और तेज धूप से ये जितने भी फंगस वगैरह है वो खत्म हो जाते हैं। तो ये गहरी जुताई करने का सबसे पहला काम करना है किसान भाइयों को, दो तीन गहरी जुताई करके खेत को एक दो दिन खुला छोड़ें, उसके बाद बुआई आदि करें।
0: अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं उनको बताएं कि जैसे मिट्टी है उसकी जांच वो कैसे करवाएं और कहाँ पर करवाएं, उसके बारे में भी मिट्टी जांच के बारे में जानकारी बताएं।
1: जी किसान भाइयों, सब मिट्टी की जांच अपने किस प्रकार से करवा सकते हैं, कहाँ करवा सकते हैं, इसके लिए अपने पास जो खेत की मिट्टी है उसमें सैंपल हम खुद भी ले सकते हैं। उसके लिए खेत में पांच जगह से, यानी चारों कोणों से और बीच से सैंपल ले सकते हैं मिट्टी का। सैंपल लेने के लिए अपने को वी शेप में सैंपल लेना है, खड़ा कटान वी शेप का। उसमें क्या करना है, 15 सेंटीमीटर तक की गहराई की मिट्टी लेनी है अपने को पांच जगह से, और फिर उसको इकट्ठा करके उसको मिला लेंगे, और फिर मिलाने के बाद आधी मिट्टी हटाते जाएंगे। जब सैंपल 500 ग्राम का हो जाए, यानी आधी किलो का हो जाए, तो उसकी जांच करा सकते हैं नज़दीकी किसान सेवा केंद्र, जहां पर कृषि पर्यवेक्षक में बैठते हैं अपने, वो हर पंचायत में होता है किसान सेवा केंद्र। उसके अलावा जो कृषि विज्ञान केंद्र है अपने आसपास, वहां भी अपने मिट्टी की जाँच करवा सकते हैं। अब मिट्टी की जाँच करवाने के लिए जो सैंपल लिया है उसमें कुछ चीज़ें लिख के देनी पड़ती है अपने को, जैसे मिट्टी की जांच किस खेत के लिए है, खसरा नंबर, किसान का नाम, पिताजी का नाम, और जिस दिनांक को लिया गया है ये दिनांक। उसके अलावा कागजों में अपने को चाहिए जनाधार नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर। ये सारी जानकारियाँ लिखकर जो सैंपल लिया है उसके साथ टैग करके किसान भाई जो किसान सेवा केंद्र है वहाँ पर जमा करा सकते हैं।
0: अच्छा, यानी कि इस तरह से हमारे जो किसान भाई हैं वो अपने मिट्टी की जांच करवा सकें और वहाँ पे जमा कर कृषि पर्यवेक्षक जो भी हैं वो अपने मिट्टी की जांच करवा के और पूरी जो जांच होगी उसकी रिपोर्ट अपने किसान भाई को मिल जाएगी। अब बात करें कि खरीफ की फसल का जो बुआई का समय है वो लगभग तैयार है, अच्छी बरसात होते ही हमारे किसान भाई बुआई के लिए तैयार रहेंगे और फसलों की बुआई भी करेंगे, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे अलवर ज़िले में खरीफ में जो बोई जाने वाली मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं उनके बारे में हमारे भाइयों को बताएं।
1: जी किसान भाइयों, अलवर क्षेत्र में जो मुख्य फसल है अपने, जो मेन फसल है, पहली तो बाजरा है। बाजरा जो अपनी खरीफ की मुख्य फसलों में आती है, उसके साथ साथ ज्वार आ गई, मक्का आ गई, उसके अलावा मूंगफली कुछ क्षेत्रों में होती है। ज्यादातर अलवर में जो मिट्टी है, मिट्टी में क्या है कि कीटों की वजह से मूंगफली की फसल अपने यहाँ कम सक्सेस है, लेकिन ज्वार, बाजरा, मक्का ये फसलें हैं। उसके अलावा कुछ क्षेत्रों में कपास की फसल भी बोई जाती है। ये फसलें मुख्य फसलें हैं अपने अलवर क्षेत्र में।
0: अच्छा जी, अब बात करते हैं कि ये जो फसलें हैं खरीफ में बोई जाने वाली उनकी उन्नत किस्मों के बारे में, क्योंकि किसान भाई बोते तो सभी हैं पर अगर अच्छी और उन्नत किस्म की अगर हम फसलों को बोएंगे तो निश्चित रूप से अच्छी पैदावार हमारे किसान भाई ले सकें, तो उन उन्नत किस्मों के बारे में हमारे किसान भाइयों को जानकारी दें।
1: जी सर, उन्नत किस्मों में अपने दो प्रकार की किस्में हैं, एक तो वाणिज्यिक किस्में जो कंपनियां तैयार करती है, एक गवर्नमेंट द्वारा तैयार की गई किस्में। तो गवर्नमेंट द्वारा तैयार की गई किस्में भी उतना ही उत्पादन दे रही है जितना जो बाजार से हम लेते हैं। किसान भाई जो फसलों के बीज है वो लेते समय इस बात का ध्यान रखे कि बीज प्रमाणित हो, और जो बीज विश्वसनीय स्रोत है वहाँ से ही लें। अन्य अलग अलग जगह से बीजों में क्या होता है कि नकली भी बीज आजकल बाजार में आ रहे हैं, तो इसका किसान भाई विशेष ध्यान रखे, प्रमाणित बीज बोए, और प्रमाणित बीज की जो थैली होती है उस पर नीला टैग लगा हुआ होता है, ये उसकी पहचान होती है। उसके अलावा किसान भाई खुद भी जांच कर सकता है कि जो पॉलीथीन होती है बीज की उस पर बार कोड लगा होता है, बार कोड मोबाइल से, एंड्रॉयड मोबाइल से स्कैन करते हैं तो उसकी पूरी जानकारी आ जाती है, कब बीज तैयार हुआ है, कौन से लॉट नंबर है, और बीज के बारे में जितनी भी उसकी अंकुरण क्षमता है सारी चीज़ें आ जाती है। तो किसान भाई नकली बीजों से सावधान रहें, बीज ले हमेशा प्रमाणित बीज ही लें और उसकी जांच अवश्य कर लें।
0: अच्छा बिल्कुल, तो हमारे जो किसान भाई हैं प्रमाणित जो बीज हैं उनको लेके और

0: अपनी फसलों की बुआई कर सकें। अब बात करें कि हमारे जो खरीफ फसलों में बीज उपचार, वो हमारे किसान भाई किस तरह से करें और बीज दर जो है वो कितनी होनी चाहिए हर फसल में, तो उसके बारे में भी हमारे भाइयों को जानकारी दें बीज उपचार के बारे में।
1: जी सर, बीज उपचार सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। बीज उपचार अगर किसान भाई करता है तो आधे रोग अपने आप ही फसल से ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि कुछ बीज जनित रोग होते हैं, कुछ मृदा जनित रोग होते हैं। और जब हम बीज की बुआई करते हैं तो बीज के साथ साथ कई फंगस वगैरह होती है, वो खेत में चली जाती है, तो बीज उपचार करने से ये सभी खत्म हो जाते हैं। अब बीज उपचार करने का एक तरीका होता है, कृषि विज्ञान की भाषा में उसको बोलते हैं FIR। FIR तरीका होता है, यानी सबसे पहले फंजीसाइड काम में लेंगे, यानी कवकनाशी, उसके बाद इंसेक्टिसाइड, आई का मतलब होता है इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशी, उसके बाद राइजोबियम, राइजोबियम कल्चर होता है जैविक उपचार करने के लिए। तो ये इन तीनों तरीकों से FIR की विधि से बीज उपचार करें, उसके बाद अपने बुआई करेंगे तो आधे कीट और रोग अपने आप नष्ट हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, सबसे ज़रूरी कार्य है बीज उपचार अपने को करना चाहिए। उसके अलावा बात करें कि बीजों की बीज दर कितनी रखें फसलों के लिए, तो बीज दर अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग रहती है। जैसे बात करें बाजरे के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज दर पर्याप्त रहती है। कुछ मात्रा जैसे खेत में लवणीय मिट्टी है या और समस्याग्रस्त मिट्टी है तो उसमें थोड़ी बहुत 0.5 किलो या 500 ग्राम उसमें पड़ा सकते हैं।
0: यानी कि वो जो 4 से 5 किलो जो बीज है वो कितने बीघा के लिए प्रति हेक्टेयर?
1: हाँ जी सर, ये प्रति हेक्टेयर होता है,
0: यानी कि 4 बीघा के लिए
1: 4 बीघा के लिए 4 बीघा के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज काम में ले सकता है किसान। और जो समस्याग्रस्त मिट्टी है उसमें इसकी मात्रा अपने हिसाब से बढ़ा सकता है।
0: अच्छा बिल्कुल, तो इस तरह से हमारे किसान भाई, और मुख्य बात तो आपने बहुत अच्छी बताई कि भाई जो बीज उपचार है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ रोग हैं जो कि बीज उपचार करने से हमारी फसलों में नहीं लगेंगे। अब हम बात करते हैं कि खरीफ की जो फसलों का बुआई का जो समय है, उचित समय वो कौन सा है, यानी कि कब हमारे किसान भाई बुआई करें, उसके बारे में भी जानकारी दें, क्योंकि कई बार खरीफ की जो फसल है पूरी तरह से बरसात नहीं हो पाती और किसान भाई उसको बोने लग जाते हैं, उसके बारे में बताएं कब बुआई करें।
1: जी सर, जो खरीफ की फसलों का जो मेन सीजन माना जाता है खरीफ का, वो जून जुलाई में शुरू हो जाता है, लेकिन अपने क्या है बरसात पर आधारित फसलें होती है। तो पहली जो बरसात है उस बरसात, जैसे बरसात 3-4 इंच हो जाए उस बरसात पे बुआई कर देनी चाहिए, उससे क्या होता है अपनी फसल सही समय पर पक जाएगी। और उसमें अगर लेट करते हैं तो फिर बाद में क्या होता है, बाद में बरसात होती है वो अपनी फसलों को नुकसान देती है। तो फर्स्ट बुआई करते हैं बरसात पे, और अगर सिंचाई की व्यवस्था है अपने पास तो फिर सीजन के अनुसार बुआई करेंगे जून जुलाई के माह में।
0: अच्छा जी बिल्कुल, अब हम बात करें कि जो खरीफ में अपन जो किसान भाई फसल बोने हैं उनके लिए, फसलों के लिए खाद और उर्वरक कब और कितनी मात्रा में हमारे किसान भाई डालें, और सिंचाई की जो व्यवस्था है वो भी इसमें ज़रूरी है क्या, अगर है तो किस प्रकार से वो करें, उसके बारे में भी जानकारी दें।
1: जी सर, खाद और उर्वरक की बात करें तो दो प्रकार के अपने कैटेगरी करते हैं इनमें। खाद जैसे होता है गोबर की खाद हो गई, और उर्वरक होते हैं जैसे नाइट्रोजन का स्रोत हो गया, जैसे यूरिया काम में लेते हैं, फास्फोरस काम में लेते हैं, DAP हो गया अपने, तो इनके अलग अलग होते हैं। जो खाद होती है वो हमेशा बुआई से पहले के तैयारी के साथ देते हैं, और उसके अलावा उर्वरक में भी दो कैटेगरी होती है। जैसे नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन अपने खड़ी फसल में भी दे सकते हैं, यूरिया खड़ी फसल में भी दे सकते हैं, बाकी DAP और पोटास है वो बुआई के साथ देते हैं या बुआई से पहले खेत में देते हैं। ये स्लो रिलीज उर्वरक होते हैं, जो पौधा है वो धीरे धीरे अवशोषित करता है, इसलिए पहले देते हैं। नाइट्रोजन है वो पौधा जल्दी अवशोषित कर लेता है, इसलिए नाइट्रोजन बरसात के साथ भी बाद में भी दे सकते हैं।
0: अच्छा बिल्कुल, तो और बात सिंचाई की करें तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं।
1: जी सर, सिंचाई की जो ये जो फसलें हैं बरसात वाली फसलें, उनमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है गर्मियों के समय में वाली फसलों में, इसलिए ज़्यादातर फसलें होती है वर्षा आधारित रहती है। लेकिन अगर कई बार सिंचाई की कमी पड़ जाए, पानी की कमी पड़ जाए, तो पौधे में देखते हैं कि अगर पौधे की पत्तियां मुरझा रही है उस समय अपने को सिंचाई ज़रूर करनी चाहिए। और सिंचाई करने के लिए अपने पास अगर जो ड्रिप इरीगेशन है या स्प्रिंकलर फवारा विधि है, बूंद बूंद सिंचाई विधि है, ये सबसे बेस्ट रहती है इस समय में, क्योंकि इस समय में तापमान नियंत्रण भी करती है। उसके अलावा अगर पानी की और आवक है, अपने पास पानी अच्छा है, तो सिंचाई प्लावन विधि से भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो इस तरह से यानी कि जो हमारे खरीफ की जो

0: स्थल है वो वर्षा पे आधारित है और लगभग बहुत कम जरूरत पड़ेगी, बरसात नहीं होने की स्थिति में ही जरूरत पड़ेगी। तो किसान भाई अगर जरूरत पड़े तो स्प्रिंगलर सिस्टम से अपने फसलों की सिंचाई कर सकें। अब बात करें हमारे जो विभिन्न बहुत सारे खरीफ की फसलें बोते हैं तो उनमें जो खरपतवार है वो कौन कौन से हैं और उनका नियंत्रण हमारे किसान भाई खरपतवारों को किस प्रकार से करें उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दें।
1: जी सर, जो खरीफ की फसलें होते हैं उनमें खरपतवार नियंत्रण दो प्रकार से किया जाता है। एक तो जैसे खाली खेत है, खाली खेत में जो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं, ऐसे हर्बिसाइड जो जिन पौधों पर डालते हैं उन्हीं पौधों को ख़त्म कर देते हैं, उन खरपतवार नाशियों का छिड़काव फसल बुआई से पहले करते हैं।
0: लगभग कितने दिन पहले किया जाए?
1: लगभग 10-15 दिन पहले कर देते हैं, जिससे क्या होता है जो भी पौधे होते हैं वो सब जल जाते हैं। उसके बाद जुताई करके और फिर फसल बोनी चाहिए, उससे एक तो अपना खेत साफ हो जाएगा
0: जी।
1: और जो भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है वो किसान भाइयों बिल्कुल कम मेहनत में अपना काम हो जाएगा।
0: जी बिल्कुल। और इसके अलावा?
1: इसके अलावा जो खेत खड़ी फसल है उसमें एक तो अपने हाथ से निराई गुड़ाई करके कर सकते हैं, या फिर कुछ सेलेक्टिव हर्बिसाइड आते हैं जो मुख्य फसल को बचा देते हैं और खरपतवार को नष्ट कर देते हैं। जैसे मक्के की फसल है, बाजरे की फसल है, इनमें लंबी पत्तियां होती है और कुछ खरपतवार नाशी ऐसे होते हैं जो चौड़ी पत्ती वाली या ज़्यादा फैलने वाली फसलें हैं उनको नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे खरपतवार नाशियों का प्रयोग खड़ी फसल में भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। तो और देखो, खरपतवार तो निश्चित रूप से काफ़ी नुकसान हमारे फसलों को पहुंचाए। अब हम बात करें कि जो खरीफ की जो फसलें हैं उसमें जो लगने वाले मुख्य कीट और रोग कौन कौन से हैं, उनका नियंत्रण हमारे किसान भाई किस प्रकार से करें उनके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी देवें।
1: जी सर, कुछ रोग तो होते हैं जो बीज से लगते हैं या मिट्टी से लगते हैं, ज़्यादातर रोग होते हैं फंगस से। जो फंगस से होते हैं उनका नियंत्रण कर सकते हैं मृदा उपचार द्वारा। मृदा उपचार अपने को जरूरी सबसे पहले करना चाहिए, और उसके अलावा जो बीज उपचार बताया मैंने आपको, बीज उपचार द्वारा नियंत्रण करते हैं। उसके अलावा जो भी जैसे कीट लग रहे हैं कीटों का नियंत्रण करते हैं। जैसे कोई कीट लग रहा है रस चूसक कीट है, रस चूसक कीटों के लिए जैसे एसीटोन आ गया। उसके अलावा जो जितने भी छेदक भेदक कीट आते हैं, बड़े इंसेक्ट आते हैं, उनके लिए मिथाइल पैराथियन काम में लेते हैं, और मिट्टी में लगने वाले कीटों के लिए कार्बोफ्यूरोन, उसका ट्रेड नेम फ्यूरोडोन भी आता है बाजार में, फ्यूरोडोन के नाम से मिलती है, वो काम में ले लेते हैं। दीमक लगती है, दीमक के लिए क्लोरपाइरीफोस काम में ले लेते हैं, क्यूनालफोस काम में ले लेते हैं, फोरेट भी अब कम मिलने लगी, अब उसके बाद फोरेट भी काम में ले लेते हैं। ये इस प्रकार कीटनाशियों का नियंत्रण और रोगों का नियंत्रण मुख्य मुख्य रूप से किया जा सकता है।
0: बिल्कुल। तो पंकज कुमार जी, आपने हमारी जो खरीफ फसलों के लिए खेत की तैयारी और अन्य जो शस्य क्रियाएं उनके बारे में बहुत बढ़िया जानकारी दी, पर हम चाहें कि अंत में हमारे किसान भाइयों को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहें जिससे कि वो कम लागत में अच्छी पैदावार किसान भाई ले सके, उसके बारे में अंत में क्या संदेश है?
1: सबसे मेन बात तो ये होती है कि किसान भाई मिट्टी की जाँच अवश्य कराएं। मिट्टी की जाँच कराने से क्या फायदा होगा कि जैसे किसी खेत में फास्फोरस अच्छी मात्रा में है और किसान भाई उसमें भी DAP डाल रहा है तो किसान भाई का आर्थिक नुकसान होता है, पैसे की हानि होती है और खेत और ख़राब होता है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा भी नुकसानदायक होती है फसलों के लिए। और मिट्टी की जांच के अनुसार ही खाद और उर्वरकों का प्रयोग करें। उसके अलावा गोबर की खाद अवश्य काम में ले। गोबर की खाद काम में लेने का क्या उद्देश्य होता है कि जैसे अपने रासायनिक खाद काम में ले रहे हैं, जैसे यूरिया काम में ले रहे हैं, DAP काम में ले रहे हैं, पोटास काम में ले रहे हैं, तो उनसे मुख्य पोषक तत्व ही मिलते हैं। जैसे यूरिया काम में ले नाइट्रोजन मिल जाएगा, DAP काम में ले रहे हैं तो उससे नाइट्रोजन और फास्फोरस मिल जाता है, पोटास से पोटास मिल जाता है। लेकिन अपनी जो फसलों में पोषक तत्व होते हैं वो 17 आवश्यक पोषक तत्व माने गए हैं, तो पूरे पोषक तत्व नहीं मिल पाते। अब उसमें कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं वो अपने को मिलते हैं, जैसे गोबर की खाद खेत में काम में लेंगे तो उनमें अनेक प्रकार के 17 से भी ज़्यादा पोषक तत्व मिलते हैं, तो उनकी पूर्ति जैसे गोबर की खाद हो गई, कार्बनिक खाद हो गई, हरी खाद हो गई, इनसे होती है। तो किसान भाइयों ये जरूरी है अपने को रासायनिक खादें हैं उनके साथ साथ जैविक खादें भी काम में लेनी चाहिए, इससे मिट्टी भी अपनी अच्छी बनी रहेगी।
0: बिल्कुल। तो पंकज कुमार जी, आपने हमारे जो किसान भाई हैं उनको बहुत बढ़िया जानकारी दी, बहुत बढ़िया संदेश दिया, और निश्चित रूप से हमारे किसान भाई इस तरह से अगर अपनी खेती करेंगे तो निश्चित लाभ उठाएंगे। तो आपने जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने।

0: अपने गरीबों के सिर पर 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: तो किसान भाइयों, अभी आपने सुनी ये भेंट वार्ता। लीजिए अब सुनते हैं ये लोकगीत।

तो किशन भाई, अभी आपने सुना ये लोकगीत, आइए अब चलते हैं जानकारी की ओर। जैविक खेती अपनाएं किसान भाइयों, सघन कृषि और अधिक लाभ कमाने के लिए खेती में अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक रसायनों, खरपतवार नाशियों, वृद्धि कारकों का उपयोग करने से हमारी जो मिट्टी है वो मानव स्वास्थ्य में गिरावट आई है। पर्यावरण का निरंतर ह्रास हो रहा है और रासायनिक खेती एवं मशीनीकरण से खेती की लागत बढ़ रही है, तो किसान भाइयों को भी अपनी मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए स्वस्थ जीवन के लिए जैविक खेती है वो अपनाएं, यही एकमात्र विकल्प है। जैविक खेती उत्पादन का वह तरीका है जिसमें जैविक अवशेषों का अधिकतम उपयोग किया जाए और रासायनिक कृषि आदानों के बढ़ावे को रोका जा सके, ताकि मृदा की उत्पादकता एवं उर्वरता टिकाऊपन की दृष्टि से बनी रहे। और देखिए किसान भाइयों, खेत बचाओ अभियान को देखते हुए खेत बचाओ अभियान किसानों को अपनी खेती, मिट्टी, पानी और फसलों की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का एक प्रयास है। इसका उद्देश्य खेती की लागत कम करना, उत्पादनता बढ़ाना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है। खेत बचाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य जागरूकता कार्यक्रम, खेत और प्रदर्शन, किसान संवाद और स्थानीय अभियानों के माध्यम से उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग, प्राकृतिक खेती और अन्य सतत कृषि उपाय जो उपाय हैं उनके प्रति हमारे किसान भाइयों नागरिकों में जागरूकता और जन भागीदारी बढ़ाना है। तो किसान भाइयों, अब बाजार भाव की ओर चलें तो गेहूं के भाव 2014

450 से 2500 रुपये, बाजरा है वो 1950 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों के भाव 7200 से 7700 रुपये प्रति क्विंटल। आज का मौसम की बात करें तो अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ ले लेते हैं इजाज़त। जय जवान जय किसान।

0: FM 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का यह सरस का चैनल है। आइए सुनते हैं पीपल्स पद और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत श्री मोहन नागर जी से बातचीत आकाशवाणी दिल्ली से।
1: आकाशवाणी है प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं मध्य प्रदेश में जल संरक्षण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री मोहन नागर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं दीपा सिंह।
2: बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप दशकों से काम कर रहे हैं पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में। जिस वक्त आपको पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई, उस वक्त आपके मन में क्या भाव थे?
3: बहुत आनंद की अनुभूति हुई कि बहुत छोटे छोटे काम करके भी इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। देश के हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, भारत सरकार का ध्यान छोटे छोटे कामों की तरफ भी है, लेकिन जो परिणामकारी काम समाज के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए जो हम जन भागीदारी के माध्यम से कर रहे हैं, बैतूल जिले में पिछले 3 दशक से समाज ने उस काम को स्वीकार किया है, उसके परिणाम आए हैं और उसको संज्ञान में लेकर के और जब ये घोषणा हुई तब बहुत प्रसन्नता हुई। उस दिन भी मैं माँ नर्मदा जयंती थी, माँ नर्मदा जी की सेवा में, स्वच्छता में हम सब हमारी टीम के साथ लगे हुए थे और इसलिए बहुत प्रसन्नता हुई सुनकर के।
2: आपको समाज सेवा की सीख कहाँ से मिली?
3: मैं एक ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हूँ, मेरे जन्म जो है वो राजगढ़ जिले के छोटे से गाँव में हुआ है और इसलिए ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण और साथ में ही जो पारिवारिक हमारा बैकग्राउंड है वो किसान परिवार का होने के कारण हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारे सभी परिवार के लोग ये उसी कार्य में लगे हुए हैं, खेती में, जल सुरक्षा में, पौधे लगाने में। मैं देखता था मेरे दादाजी जब गाय चराने के लिए जाते थे तो कोई भी ऐसा छोटा पौधा दिखता था तो उसमें कांटे लगा देते थे, कुएं में जाते थे, तालाब में जाते थे तो पहले उसमें से कोई कचरा निकाल करके बाहर करते थे और उसके बाद फिर उसके पानी का उपयोग करते थे। तो बचपन से ही अपने पूर्वजों की सीख जो मिली थी, बाद में फिर समाज कार्य के लिए गए तो समाज ने फिर सारी बातें अपने आप ही सीखने को मिली, तो स्वाभाविक रूप से फिर जो बचपन से सारी बातें थी वो आगे चल करके काम आई और पर्यावरण की सुरक्षा, जल की सुरक्षा और समाज सेवा के लिए, शिक्षा को लेकर के, ग्राम विकास को लेकर के फिर बैतूल जिले को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और उसी में फिर अभी तक लगे हुए हैं।
2: बहुत ही अच्छी बात कही कि आपने ये सीख जो है अपने घर से ही ली है। सर, जल संरक्षण एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी, लेकिन आपने सामाजिक जिम्मेदारी से कैसे बनाया?
3: बिल्कुल, मैं जब बैतूल जिले में 91-92 में गया तो वहाँ का जो जिले में जब भ्रमण किया तो ये ध्यान में आया कि बैतूल जिले में वर्षा तो पर्याप्त मात्रा में होती है, 60 इंच के लगभग वहाँ बारिश होती है, लेकिन उसके बाद भी और वहाँ का जो समाज है, विशेषकर जो जनजातीय आदिवासी समाज है, वो दीपावली के बाद, खरीफ की फसल के बाद में ज्वार मक्का लेकर के उसके बाद फिर पलायन कर जाता था क्योंकि उसके बाद कोई काम था नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या थी, जब लोगों से बात की हमने फिर पूरे जिले में और 2-3 वर्ष लगातार अलग अलग महा में पदयात्रा की गाँव की वहां पर, और उसके बाद लोगों से चर्चा में ध्यान में आया कि पानी गिरता तो पर्याप्त लेकिन रुकता नहीं है और इसलिए पानी को रोकने के छोटे छोटे प्रबंध किए जाए। बड़े बड़े काम तो सरकार करती है, डैम बनाने का, बड़े तालाब बनाने का, तो ग्राम स्तर पर क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां बहुत बड़ी संरचना बनाना ये संभव नहीं है और जो छोटे छोटे काम हमने प्रारंभ किए, वहाँ के जो बरसात के बाद जो नदी नाले बहते थे उसमें बोरी बंधान के माध्यम से छोटे छोटे स्टाफ डैम बना करके, और वो हमने लोगों के सहयोग से काम किया। जब हमने हम एकल विद्यालय भी वहाँ पर 400-500 गाँव में चलाते थे बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, उन बच्चों को लेकर के, अभिभावकों को लेकर जब हमने काम किया और जब ध्यान में आया कि एक छोटे से बोरी बंधान बनाने से 15-20 एकड़ की फसल सिंचित हो सकती है, खेती और की जा सकती है, तो लोग फिर उस अभियान में जुटे और हमने पूरा एक अभियान महोत्सव के रूप में पूरे जिले में प्रारंभ किया। आज बैतूल जिले के 500-600 से ज्यादा गांव में लोग स्वतः होकर के उस काम को करते हैं क्योंकि हमने 2 दशक तक लगातार उस काम को किया है और उसके कारण फिर जो लोग पलायन कर जाते थे उनकी 1-1, 2-2 एकड़ की जब खेती होने लगी तो फिर पलायन भी कम हुआ और उसके साथ में लोगों को उसके माध्यम से रोजगार भी मिला, गाँव में जल स्तर भी बढ़ा। जिन गाँव में फरवरी में, मार्च में ही पानी समाप्त हो जाता था, हैंडपंप सूख जाते थे, वो फिर मई जून तक भी और उस गाँव में पानी ठहरने लगा।

0: और इसलिए रोग भी रुकने लगे।
1: मोहन सर, आपने एकल विद्यालय की बात कही है, कैसे आपने बच्चों को एजुकेट किया है, जो वहाँ के पेरेंट्स थे वो अभिभावक कैसे आपके साथ जुड़े?
0: जब मैं बैतूल जिले में गया उस समय अनेक गांवों में स्कूल नहीं थे, बाद में करके सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सब जगह हो गए विद्यालय, लेकिन उस समय नहीं थे। तो हम गांव में जाते थे तो बच्चे अशिक्षित थे, निरक्षर थे। पूछते थे कि सबसे बड़ी आपके गांव की समस्या क्या, एक बार हमको बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था कीजिए। तो हमने फिर विद्या भारती की जनजाति शिक्षा के माध्यम से, भारत भारती संस्था जो हमारी है उसके माध्यम से, उसी गाँव के कम पढ़े लिखे या जितना भी पढ़ा लिखा था उसका चयन किया। उसको हम ट्रेनिंग देते थे 10 दिन की। ट्रेनिंग में उसको अक्षर ज्ञान, भाषा ज्ञान, अंक ज्ञान, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाना है, उस ट्रेनिंग के माध्यम से फिर गांव में सिंगल टीचर स्कूल, उसको एकल विद्यालय इसलिए कहते हैं कि एक शिक्षक रहता है और वो गांव के बच्चों को पढ़ाता है। तो उसके माध्यम से फिर गांव में ये विद्यालय प्रारंभ किया। और छोटे छोटे बच्चे जो बकरी चराने जाते थे या काम करने जाते थे, उनको सुबह 7 बजे से 10 बजे तक भाषा ज्ञान, अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान करना, उनको संस्कार की कुछ बातें बताना, उनको उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसलिए योगासन व्यायाम कुछ बताना, देशभक्ति के गीत है, परंपरागत जो हमारे गोंडी संस्कृति, कोरकू संस्कृति के जो गीत है उसी भाषा में उनको बताना। और धीरे धीरे फिर बच्चों का शिक्षा के में विकास हुआ, फिर स्कूल में उनका एडमिशन हुआ। उनमें से कई बच्चे जो है उच्च शिक्षा की ओर गए हैं। हमने उसके लिए फिर 2-3 छात्रावास भी प्रारंभ किए, क्योंकि दूर के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। तो फिर हमने 3 जनजाति बच्चों के अलग अलग छात्रावास भी प्रारंभ किए, उसमें भी बच्चे रहकर के पढ़ाई कर रहे हैं। आज उच्च शिक्षा को लेकर के स्वावलंबी भी हुए हैं और सरकारी जॉब में भी गए हैं, कुछ अपना स्वयं का भी काम कर रहे हैं।
1: सर, आदिवासी और जनजातीय समाज को सशक्त बनाने में भी आप काफी सहयोग कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो क्या मुख्य धारा से जुड़ गए या हमें और प्रयास करने की जरूरत?
0: हमारा जो जनजाति आदिवासी समाज है, प्रकृति से जुड़ा हुआ समाज है, और इसलिए उनको कोई चीज बताना कि प्रकृति की रक्षा कैसे करना, ये सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। तो हमने तो उनसे ही जाकर के सीखा कि कैसे प्रकृति का संरक्षण किया, क्योंकि वो तो हजारों वर्षों से प्रकृति के बीच में रह रहे हैं और जो जंगल सुरक्षित है वो उन्हीं के कारण सुरक्षित है। हमने शहर में रहकर के तो जंगल खत्म कर दिए, गाँव में जंगल खत्म कर दिया, वो प्रकृति प्रेमी होने के कारण, प्रकृति पूजक होने के कारण, और इसलिए उन्होंने नदियों को और सारी जो सुरक्षा करके रखी हमारे जीव जंतुओं को। तो लेकिन उनमें शिक्षा का अभाव था, आधुनिकता जो थी वो उसका अभाव था, उसको लेकर के हम उनके बीच में गए। जैविक खेती को लेकर के, ग्राम स्वावलंबन को लेकर के कुछ गांव में हमने होम स्टे प्रारंभ किए, जिसके माध्यम से लोग वहां आकर के रुकने लगे, उनकी आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ। हमने एक अन्नपूर्णम मंडपम योजना बनाई कि घर का जो पानी हम उपयोग करते हैं वो जो बहके जाता है उसमें ही हम सब्जी भाजी लगाए, हमने कुछ बीज उनको दिए, और ऐसे घर घर में पीछे जो है वो इस प्रकार की सब्जियां लगा करके एक स्वावलंबन की दिशा में वो आगे बढ़े। जैविक खेती के माध्यम से कैसे, क्योंकि गोपालन और पशुपालन बड़ी मात्रा में वहां होता है, तो जैविक खेती कैसे कर सकते हैं ताकि बाजार से जो हम रासायनिक खाद और कीटनाशक जो महंगा खरीदते हैं उससे हमको छुटकारा मिले, इस दिशा में प्रयास किया। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास किए जिससे उनको एक आर्थिक स्वावलंबन की दृष्टि से और एक सशक्त उनको एक काम मिला गांव में। और जो पलायन था, फिर सरकार के बीच बीच में अनेक प्रकार की योजनाएं आई जिससे बिजली को लेकर के, पानी, सड़क सब गाँव गाँव तक पहुंची। उसमें हमारा भी काम छोटा छोटा एक गिलहरी की तरह हमने भी उसमें किया, जिससे समाज को और एक स्वावलंबी समाज बनने में उनके माध्यम से उनको एक लाभ मिला।
1: जल गंगा अवतरण आपका अभियान है जिसे जन आंदोलन बनाया है, आप इस अभियान की सोच और प्रभाव के बारे में बताइए हमारे श्रोताओं।
0: बिल्कुल, जब हम उन लोगों के बीच में गए तो उन्होंने कहा कि भाई आपके गांव की समस्या क्या है, तो हमारे गांव की समस्या पानी है। तो ये समस्या कब से है, तो ये 20-25-30 साल से हुई है। इसके पहले क्या था, बोले पहाड़ों पर जंगल था घना, जब जंगल समाप्त हुआ धीरे धीरे तो फिर वो पहाड़ जो है वृक्षहीन हो गए, तो जो नदी नाले बहते थे वो भी धीरे धीरे बंद हो गए, और इसलिए पहाड़ों पर पानी नहीं रुकता है। और इसलिए पहाड़ों पर पानी रोकना है उसके लिए कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। तो फिर हमारे ध्यान में आया कि गंगा जी का अवतरण हुआ था, कैसे हुआ था, तो भगीरथ गंगा लेकर के आए, इसी कंसेप्ट को लेकर के फिर हमने गंगा अवतरण अभियान बैतूल जिले में प्रारंभ किया। सबसे पहले वहाँ की जो सोना घाटी उस पहाड़ी को हमने एक मॉडल के रूप में बनाया, वर्षा का जल कैसे रुके उसके लिए हमने फिर खंतियां खोदना प्रारंभ की, जहाँ जैसी भौगोलिक संरचना थी, कहीं 6x2x2 की, कहीं 10x2x2 की। और उसके लिए हमने समाज को आह्वान किया कि हम सब, क्योंकि ये हमारी धरोहर है और अगर ये पहाड़ी पर पेड़ नहीं है तो हमारे यहाँ जल भी नहीं बचेगा, क्योंकि पहाड़ियां हमारे यहाँ पर जितने ही है ये सब हमारे ओवरहेड टैंक के पानी की टंकियां हैं, जैसे पानी की टंकियां शहरों में होती है उसमें पानी भर देते हैं फिर बाद में सप्लाई करते हैं। हाँ। तो ये पहाड़ हमारे पानी की टंकियां हैं, वर्षा का जल भर जाता है बाद में फिर हमको मिलता है, तो इसलिए इसको जल से भरना है। तो धीरे धीरे हमने खंतियां खोद करके उसमें वर्षा का जल रोका, वहां पर पौधारोपण किया, और उसके माध्यम से धीरे धीरे अपने आप 3-4 वर्षों में जहां 1000 फुट पर भी पानी नहीं था वहां 100 फुट के नीचे 60 फुट पर भी पानी उस जगह पर आ गया। तो एक परिणाम था उसका, ये गंगा अवतरण था कि उसके गंगा जी को रोको और उसके बाद धीरे धीरे फिर नदी नाले के माध्यम से कुएं बावड़ी से उसका पानी हम सबको मिलेगा। और फिर ये काम पूरा हमने 75 पहाड़ियों पर बैतूल जिले में ये काम किया। मोदी जी का जो आह्वान था केस द रेन, ये महामंत्र है मोदी जी का, जो उन्होंने कहा कि वर्षा के पानी को जहाँ गिर रहा है वहाँ पकड़ लो, 10 मीटर से ज्यादा अगर वर्षा का जल बह गया तो फिर वो अपना रास्ता बना लेता है, और इसलिए 10 मीटर के पहले ही कोई संरचना बना दो, कोई पेड़ लगा दो, कोई खंती खोद दो, कोई घास लगा दो, कोई पत्थर से

0: उसको रोक दो, तो फिर वर्षा का जल धीरे धीरे जमीन में जाने लगता है, उसकी गति कम होती है, तो तेज हो जाएगी तो फिर वो आगे बढ़ता जाएगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि वर्षा की पहली बूंद जहां गिरे वहां उसका प्रबंधन करना, यही जल प्रबंधन का अनाराम है। और हमने वहां के स्थानीय जनजाति समाज, आदिवासी समाज के साथ मिलकर के यही काम बैतूल जिले की पहाड़ियों पर किया, यही गंगा अवतरण अभियान है।
1: आपसे चाहेंगे कि कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स आप हमारे श्रोताओं को दें, जैसे वो भी इस बार बारिश आने वाली है, गर्मी आएंगी फिर बारिश आएगी, तो वो भी जल का संचयन कर सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए तीन उपाय हमको करना पड़ेंगे। एक तो वर्षा के जल का संरक्षण करना पड़ेगा कि वर्षा का जल कैसे अधिक से अधिक जमीन के अंदर जाए। फिर जो संरक्षित जल है उसका समुचित उपयोग करना पड़ेगा, और जो उपयोग किए हुए जल का पुनर्उपयोग करना पड़ेगा, कितना हम रीयूज कर सकते हैं पानी का। ये तीन बातें समाज को आज सिखाने की आवश्यकता है। केवल एक काम करेंगे तो जल संरक्षण नहीं होगा, जल प्रबंधन नहीं होगा। ये तीनों बातें, सबसे पहले हमारे यहाँ क्या है कि बारिश मुश्किल से 100 दिन होती है, और उसमें भी 10 दिन में ही 90-80% बारिश हो जाती है। बारिश का जो पीरियड है तेज बारिश का बहुत कम है, 8-10 दिन 12 दिन ही हमारे यहाँ पर है, और इसलिए उतने में ही हमको जल प्रबंधन करना है। इसलिए हमको उपाय करना पड़ेगा कि पानी जहाँ गिरता है हमारे घर का पानी घर में रुके, उसके लिए हमारे घर पे की छत 1000 फुट की भी है तो उसमें 1.25 लाख लीटर पानी उसमें गिरता है, तो कैसे हम उसको कोई सोक पिट बना करके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना करके हमारे घर में ही कहीं पर, आज हम घर बनाते तो इतनी सारी चीजें बनाते हैं, तो अपने आंगन में या घर के पीछे कहीं भी एक ऐसा स्थान बनाए जिसमें हमारी छत का पानी हम जमीन के अंदर उतार दें, तो पानी की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। फिर जिस पानी का उपयोग कर रहे हैं उसका उचित रूप से उपयोग करें, कि पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो जितना चाहे उतना मन चाहे उपयोग करें, ऐसा नहीं, अनुशासन पूर्वक आज जल का उपयोग करने की आवश्यकता है। फिर आपने जिस पानी का उपयोग किया उसको सिंचाई के रूप में, गमलों के रूप में, अन्य अन्य रूप से उसको कैसे उपयोग कर सकते हैं, उसका पुनर्भरण कैसे कर सकते हैं। कुल मिलाकर के हमको आज आवश्यकता इस बात की है कि युवा समाज जो है इस दिशा में आगे आए, और छोटे छोटे काम अपने गांव के, कोई पास की पहाड़ी होगी, कोई पास का क्षेत्र होगा, किसान अपने खेत में मेड़ बंधन करें, गांव का पानी गांव में रुके, इसलिए तालाबों का हमारी जो जल शक्ति मंत्रालय है, मोदी जी ने एक बड़ा काम किया है उसको बना करके, गांव गांव में तालाब बन रहे हैं, अमृत सरोवर बन रहे हैं, उसके माध्यम से अपना रोके, फिर पहाड़ का पानी पहाड़ में रोके, खेत का पानी खेत में रोके, नदी का पानी नाले का पानी उसमें रोके, तो ये छोटे छोटे उपाय अगर हम समाज के साथ मिलकर के करते हैं और व्यक्तिगत स्तर पर करते हैं तो उसका बहुत लाभ मिलता है। एक आपने 6x2x2 की खंती भी अगर खोद दी है कहीं पर और उसमें वर्षा का जल जा रहा है तो 30,000 से 35,000 लीटर पानी केवल उसके माध्यम से जमीन के अंदर चला जाएगा। हम छोटा सा काम करेंगे तो उसका एक परिणाम जो है बड़ा होगा। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जैसे मैंने आपको कहा कि सोनाघाटी की पहाड़ी है, वो पहाड़ी वो है, कभी आपने भवानी प्रसाद मिश्री जी का नाम सुना होगा, उन्होंने कविता लिखी थी, सतपुड़ा के घने जंगल ऊंगते अनबने जंगल, वो उसी पहाड़ी पर उन्होंने 1939 में बैठ करके लिखी थी। और जब 2014 में उनका जन्म शताब्दी वर्ष आया तो हमने उनका जन्म शताब्दी मनाया, तो जब उनके बारे में पढ़ा और उस पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वो वृक्षविहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियां कुछ बची थी। तो हमने उसी पहाड़ी को पहले कहा कि भवानी प्रसाद मिश्र जी को अगर सही श्रद्धांजलि देना है जन्म शताब्दी वर्ष में तो इस पहाड़ी को फिर से हरा भरा करेंगे। और इसलिए बैतूल के लोगों को, आसपास के गांवों को आह्वान किया कि ये सोनाघाटी की पहाड़ी हमारी धरोहर है, इसको हम बचाएंगे। और उसी पहाड़ी पर गंगा अवतरण अभियान प्रारंभ किया और वहां पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई, और उसके बाद फिर 32,000 से ज्यादा उसमें पौधे लगाए, जो परंपरागत पौधे थे उनका संरक्षण किया। आज लाखों की संख्या में उस पहाड़ी पर पौधे फिर से हरे भरे हो रहे हैं। 2-4 साल में फिर से कह सकते हैं सतपुड़ा के घने जंगल ऊंगते अनबने जंगल। तो ये काम हम छोटे छोटे समाज के माध्यम से कर सकते हैं, और ये पूरा हजारों लोगों ने अभियान में पूरा अपना योगदान दिया।
1: बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि आप साहित्य से भी जुड़े हुए हैं, तो आपकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति चतुर्मास, मैं चाहूंगी कि उसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं।
0: जी बिल्कुल, चतुर्मास जो है प्रकृति को समर्पित, गांव को समर्पित, हमारी नदियों को लेकर के, परंपरागत जो हमारी पद्धति थी उसको लेकर के, कि नदियां कैसे बनती है, लोग पानी का संरक्षण कैसे करते थे और हमारे पूर्वजों की क्या परंपरा थी, उसको लेकर के ही उसमें कुछ कविताएं लिखी है। उस कृति को मध्यप्रदेश की साहित्य अकादमी ने और दुष्यंत कुमार पुरस्कार से भी सम्मानित किया है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। एक प्रकार का एक काव्य संग्रह है जो प्रकृति को समर्पित है।
1: आप जन अभियान परिषद में भी उपाध्यक्ष हैं, भारत भारती शिक्षा संस्थान से भी जुड़े हैं, शासन, शिक्षा और समाज सेवा, इन तीनों भूमिकाओं को आप कैसे देखते हैं?
0: जी बिल्कुल, ये एक ही काम है, ये एक प्रकार से सेवा की त्रिवेणी है। जब मैं बैतूल जिले में यह काम कर रहा था, मध्य प्रदेश सरकार को ध्यान में आया होगा कि यह काम पूरे प्रदेश में होना चाहिए, और इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का उपाध्यक्ष बना करके पूरे प्रदेश में काम करने का अवसर दिया है। और पिछली बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जो अभियान है जल गंगा संवर्धन अभियान, उसको लेकर के हमने पूरे प्रदेश में हजारों गांवों में जाकर के इस अभियान को लिया, और उनके नेतृत्व में हमने 40 लाख लोगों को जनभागीदारी से इस नेटवर्क से लोगों को जोड़ा। हमने पुरानी 2200 बावड़ियों को स्वच्छ किया, 7,000 कुओं को साफ किया, नदियों के तट स्वच्छ किए, और पुरानी जल संरचनाओं को हमने साफ करके समाज के माध्यम से नई जल संरचनाओं का निर्माण किया। अभी पूरे प्रदेश में हमने उसी के माध्यम से 7,000 से ज्यादा बोरी बंधन बना करके वर्षा के जल को रोकने

0: का काम किया है, शिक्षा के माध्यम से और पर्यावरण के माध्यम से और समाज सेवा ग्राम विकास को लेकर के, और ये जो तीनों बातें हुई है, मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार का काम करने का अवसर दिया है। पहले एक जिला हमारे कार्यक्षेत्र में था, पूरे 55 जिलों का काम उन्होंने दिया।
1: बिल्कुल सर, आपके लिए परिवार और गाँव आपके जीवन में क्या महत्व रखते हैं?
0: परिवार तो हमारा मूल आधार है हमारे समाज का। जब तक कुटुंब व्यवस्था हमारे समाज में है, तब तक ही हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति का है, हिंदू संस्कृति का है, वो अक्षुण है। क्योंकि हमको जितने संस्कार मिलते हैं सब प्रकार के, वो हमारे परिवार में मिलते हैं। चाहे जैसे मैंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण का, जल का जो मुझे संस्कार मिला, वो अपने परिवार के माध्यम से मिला। कि घर में शाम के समय, आज भी आप देखेंगे तो बड़े बूढ़े जो है, वो बच्चा कोई अगर पेड़ को हाथ लगाता है तो पेड़ को हाथ नहीं लगाना, इस प्रकार का वो करते हैं रात को। तो ये परिवार से ही सारी चीजें सीखने को मिलती है, कैसे बड़ों का आदर करना है, कैसे अपनी परंपराओं का निर्वहन करना है। ये कुटुंब व्यवस्था और ये ग्राम में आधारित जो भारत की व्यवस्था थी कि कैसे एक परिवार की तरह पूरे गांव रहता है। आप देखेंगे प्रत्येक गांव स्वावलंबी था, किसी गांव को केवल नमक खरीदने के लिए गांव के लोग जाते थे, बाकी सारी चीजें गांव में पैदा होती थी, सारे कारीगर गांव में थे। 4 महीने भी अगर गांव के बाहर नहीं जाता तो उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। भारत कृषि प्रधान होने के साथ साथ उद्योग प्रधान देश था। गांव गांव में किसी न किसी प्रकार के कोई न कोई उद्योग होता था, कहीं पर कोई सामान बनता था, कहीं पर कोई सामान बनता था, और उसका विदेशों में जाकर के व्यापार होता था। और इसलिए अंग्रेजों के आने के पहले हमारी जो परिवार व्यवस्था और ग्राम व्यवस्था, ये बहुत सुदृढ़ थी सारी दुनिया में। आज फिर से हमको उसी व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, और इसके लिए जो एक अभियान चला है कि कुटुंब कैसे फिर से सुदृढ़ बने, कैसे संयुक्त परिवार हमारे हो, ताकि ये सारी बातें जो सहज हमको सीखने को मिल जाती थी परिवार में, वो आज उसके लिए हमको अलग से प्रशिक्षण देना पड़ रहा है हमारे बच्चों को। पहले सारी चीजें परिवार में सीखने को मिल जाती थी, इसलिए उन गांवों को फिर से सशक्त बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए हमने बैतूल जिले का एक बाचा गांव को हमने उस रूप में लिया है, वो जनजाति गांव है। तो एक अच्छा गांव कैसे बन सकता है अपने गांव के लोगों के माध्यम से, तो बाचा गांव को सोलर ग्राम, जल ग्राम, आज पर्यटन गांव के रूप में, गांव के लोगों के सहयोग से एक आदर्श गांव के रूप में उसकी ख्याति हुई है। तो ऐसे गांव हम फिर से बनाए ताकि देश दुनिया हमारे गांव को देखने के लिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, प्राथमिक पाठशाला कहा जाता है परिवार को, तो वाकई घर परिवार से ही सीखे तो बहुत अच्छी बात रहती है। साथ ही सर, जो युवा वर्ग है वो कैसे इस जल संरक्षण पर्यावरण की दिशा में, काफी युवा कुछ बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो और जुड़ना चाहते हैं, छोटे छोटे प्रयास क्या कर सकते हैं?
0: बिल्कुल, युवा इस दिशा में अभी पिछले एक दशक से, जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया है, एक तो केस दर इनको लेकर के, फिर एक पेड़ माँ के नाम को लेकर, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे युवाओं का और महिलाओं का, मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। अभी हमने नवांकुर सखी जो अभियान चलाया था, उसमें हजारों महिलाओं ने इसमें योगदान किया था। और अभी हमने युवा जन अभियान परिषद के माध्यम से जब काम प्रारंभ किया, तो उसमें हजारों की संख्या में युवा जुड़ रहे हैं। मैं देखता हूँ कि पहले युवा जो है वो अपना जन्मदिन मनाते थे तो कहीं केक काटते थे, कहीं अल्ला गुल्ला कर रहे हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया में देखता हूँ कि अधिकांश युवा अपने जन्मदिन पर कोई पौधा लगाते हैं, कोई वृद्धाश्रम में जाकर के भोजन कराते हैं, या कोई गौशाला में जाकर के गोग्रास देते हैं। तो ये प्रकृति के प्रति हमारे युवा आगे आ रहे हैं, और युवा जो है वो भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, मोदी जी बार बार कहते हैं। और इसलिए युवा जिस दिशा में जाएंगे, उधर पूरा समाज जाएगा। और आज हमारा युवा अपनी प्रकृति को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, अपने समाज को लेकर के जागरूक हुआ निश्चित रूप से, और इस दिशा में वो आगे बढ़ रहा है। हमारे हर अभियान में सबसे ज्यादा अगर योगदान किसी का रहता था तो वो युवाओं का और महिलाओं का ही बड़ी मात्रा में रहा है, और आगे भी युवा इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने स्वरोजगार को लेकर के आगे बढ़े, उद्यमी को लेकर के आगे बढ़े, लेकिन साथ में प्रकृति, पर्यावरण, जल संरक्षण, इसको लेकर के भी अपने जीवन का एक भाग इसमें रखें, और जीवन व्यवहार में हमारे प्रकृति और जल संरक्षण ये रहे। छोटे छोटे काम करके हम इस अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने घर में हम पानी का कैसे उपयोग कर सकते हैं, जितना भी बजट हम अपने घर का बनाते हैं, तो पानी का भी बजट बनाए कि हमारे एक व्यक्ति को 60 लीटर पानी लग रहा चाहिए, 60 से 100 लीटर, उससे ज्यादा उपयोग नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आज समाज को, प्रशासन को, सबको जागरूक होने की आवश्यकता है कि हम कैसे अपने भूगर्भ जल को बचा सकते हैं और वर्षा जल को बचा सकते हैं। इसके लिए छोटे छोटे उपाय हम सब लोग मिलकर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल मोहन जी, आपने बहुत ही सुंदर बात कही कि पानी का बजट बनाना पड़ेगा, पानी का सदुपयोग बहुत जरूरी है। मोहन जी, आपके अनुभव और विचार निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को जल संरक्षण और उनके प्रति सोचने के लिए, जरूर कुछ करने के लिए प्रेरित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
0: जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी मध्य प्रदेश में जल संरक्षण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री मोहन नागर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी दीपा सिंह। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है पॉडकास्ट

103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज में फिल्म दामिनी के इस गीत के साथ।

कुमार शानू की आवाज़ में अगला गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म है साजन की बाहों में, गीतकार हैं समीर और संगीत है नदीम श्रवण का।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: अगला गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म महबूब की मेहंदी से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इश्कर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाए हुए फिल्म महबूब की मेहंदी के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है, आइए सुनते हैं लोक संगीत।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

और इसी के साथ लोक संगीत का हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही समय में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से।

0: कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्र ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के KGMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
1: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य के DGP और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
2: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए। प्रमुख सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसकी कड़ी कार्रवाई करें।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
3: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
1: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
4: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बैंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ बैंबू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे। चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे, देखने के लिए भी नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए। मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है, दुनिया में नई चीज़।

0: भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
1: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
3: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक हरिदासपुर पारादीप खुर्दा रोड बलंगीर नौपाड़ा गुनुपुर लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़ भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
4: वित्त मंत्री डॉक्टर ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काश्मीर नहार आकाशवाणी समाचार कोलकाता।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं क्षमता निर्माण संस्कृति शिक्षा सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बाराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बाराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही।

संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोले की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NIFED के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल

0: और विपुल एम पंचोले की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ निफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken.
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूँ। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूँ। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रसलाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है तकदीर।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज में, फिल्म दो बदन से। गीत है शकील बदायूनी का, संगीत है रवि का।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है मोहम्मद रफी की आवाज में। नगमा निगार हैं असद भोपाली, संगीतकार हैं रवि और फिल्म का नाम है उस्तादों के उस्ताद।

कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। हमें दीजिए आज्ञा और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आनियो आनियो शाम सवेरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को हुआ था। वे अपने जमाने के जाने माने चरित्र अभिनेता मदन पुरी के छोटे भाई थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमरीश पुरी ने केंद्रीय श्रम मंत्रालय में नौकरी कर ली थी, लेकिन सन 1961 से उन्होंने शौकिया तौर पर रंगमंच शुरू किया था। यहाँ से शुरू हुआ अमरीश पुरी का अभिनय की दुनिया का सफर।

0: दया ना जोश है नहीं शोर है।
1: अमरीश पुरी बहुत देर से फिल्मों में आए। श्याम बेनेगल की फिल्म निशांत से उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ सन 1973 में।

इसके बाद मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों में उन्होंने प्रभावशाली अभिनय के जरिए खूब नाम कमाया। सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा ने व्यावसायिक फिल्म जगत में अमरीश पुरी को पहचान दी।

0: इस बीच अभिनय के अच्छे ऑफर्स उन्हें मिलने लगे और उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी में बाकायदा एक बड़ी भूमिका के साथ वे फिल्म संसार में आए। छोटी बड़ी भूमिकाएं करने के बाद अमरीश पुरी को सबसे ज्यादा नाम अगर किसी फिल्म से मिला तो वो थी मिस्टर इंडिया।
1: उई उई उई उई उई उई उई।

प्रभावशाली खलनायक मोगेम्बो की भूमिका को आज भी सभी याद करते हैं। सन 1982 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

सन 1987 में आई इस फिल्म में अमरीश पुरी ने मोगैम्बो की भूमिका की थी। यहाँ से हिंदी फिल्म संसार को मिला एक

सन 1984 में अमरीश पुरी ने हॉलीवुड की एक फिल्म में काम किया। इस फिल्म का नाम था इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डूम। अमेरिका अमेरिका अमेरिका अमेरिका। इस फिल्म के निर्देशक थे स्टीवन स्पीलबर्ग। इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डूम में अमरीश पुरी ने मूला राम की भूमिका निभाई थी।

0: बहुत बरस पहले अमरीश पुरी विविध भारती के स्टूडियोज में आए थे और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जय माला कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने मन की बहुत सारी बातें हमें बताई थी।
1: मेरी आवाज तो कई बार आप रेडियो पर, टीवी पर और सिनेमा हॉल में सुनते ही होंगे। वो सब तो फिल्मी डायलॉग होते हैं, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता हूं। फिल्मों में मैं ज्यादातर एक खलनायक की, या यूं कहिए कि एक विलन की भूमिका निभाता हूं। किसी का मर्डर, कहीं डाका, किसी का रेप या ऐसी खराब हरकतें। लेकिन साहब, मैं भी एक इंसान हूं और आप सबकी तरह सीने में दिल रखता हूं, जो कभी हंसता है, कभी रोता है, आप सबकी तरह।

मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं। मैं जानता हूं और महसूस करता हूं कि कितना मुश्किल होता है अपने प्यारों से दूर रहना।

मैं अगर आज फिल्मों में नहीं होता तो शर्तिया आपकी तरह एक फौजी होता। बहुत तमन्ना थी बचपन से ऐसा करने की। मैट्रिकुलेशन का इम्तिहान पास करने के बाद मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में अप्लाई किया, लेकिन भाग्य में कुछ और ही था। इंटरव्यू की कॉल मुझे 3 रोज लेट मिली और उसके बाद फिर एज लिमिट होने के कारण मैं दोबारा अप्लाई नहीं कर सका, वरना आज मैं भी आपकी तरह अपने देश की रक्षा कर रहा होता। लेकिन आज मैं कर क्या रहा हूं ये तो आप बखूबी जानते हैं। जी चाहता है अपने देश की मोहब्बत और याद में दूर सरहदों पर बैठा हुआ मैं कुछ इस तरह से गुनगुना उठूं।

सन 1995 में आई यश चोपड़ा की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म में अमरीश पुरी की भूमिका को आज भी लोग याद करते हैं।

कमल हासन की फिल्म चाची 420 सन 1998 में आई। इस फिल्म में भी अमरीश पुरी ने प्रभावशाली अभिनय किया था। गोविंद नेहलानी की फिल्म देव अमरीश पुरी की एक महत्वपूर्ण फिल्म है। सुभाष घई की कई फिल्मों में अमरीश पुरी नजर आए। सुभाष घई के साथ उन्होंने जो आखिरी फिल्म की वो थी किसना।

0: डेविड धवन की हास्य फिल्म मुझसे शादी करोगी में वे एक रिटायर्ड कर्नल बने थे। फिल्म शरारत में भी उन्होंने एक वरिष्ठ नागरिक की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के सितारे थे अभिषेक बच्चन, ऋषिता भट्ट, ओम पुरी और अमरीश पुरी।
1: आती जाती है मुश्किलें बड़ी, हार हम कभी मानते नहीं, जान जाओगे मान जाओगे, तुम अभी हमें जानते नहीं, ये बताएंगे बेटा कल तुझे फूल पेड़ की देंगे फल, तुझे बुजुर्गों की जो ना सुने बोलो ये बात है।

0: अमरीश पुरी हिंदी फिल्म संसार के एक निराले अभिनेता के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे। चाहे फिल्में हों या रंगमंच, उनकी स्मृतियां हमेशा हमारे मन में ताजा बनी रहेंगी।
1: मस्ताना, अल्लेना, सिर्फ एक तू है लाखों में।

0: फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता अमरीश पुरी पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

देखते हैं जिधर भी उधर तुम ही दिखाई देते हो ओ हमदम। ये दामन मोहब्बत का है, ये दुनिया हमारी, इसे छोड़कर कहां जाएं हम।

गुम हुए हैं नजारे, भला ये क्या है बात, तेरे काजल का असर देख, ये दिन अब हुआ है रात। नैनों का नैनों से मिलना, दिल का दिल को पुकारना, हाँ यही है वो मुलाकात।

0: जमाने के ताने जज्ब करते हैं रोज, रहते हैं कांटों के संग ये, इनकी हिमाकत को समझो। मासूम है और इसलिए बहक जाते हैं ये, इन फूलों की नजाकत को समझो।
1: कहा आपका ये बजा ही सही के हम बेकदर बेवफा ही सही।

पायल की छन छन, बिजली की चमकन, लोच कमरिया का संभाले न संभलता है, चुनरी की ढलकन, नजरों की अटकन, जरा सोच ये दिल बहलाए न बह।

0: FM 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सरस का चैनल है। आपसे कुछ ही समय में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली
1: से। साथ में रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्रों सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के KGMC में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं। इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया।

0: सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शेष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। रात्रि के 11:05 हुए हैं और इसी के साथ हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। सवेरे 5:52 पर फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।